आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है आशा भोसले और दिलराज कौर ने। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

दोस्तों, यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म 100 डेज के इस गीत को आवाज दी है SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि यानी 17 जून 2026। सुबह के इस समय 5:53 और 38 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा में कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण होगा।

श्री रामचरित मानस का बालकांड भाग 94 का प्रसारण होगा सुबह 6:44 पर। योग पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:10 पर, जिसके तहत आज का आसन में आपको जानकारी दी जाएगी भद्र आसन पर, जिसके पश्चात आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात।

आज सवेरे कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह 7:30 पर म्यूजिकल दिल लगी। इस प्रोग्राम को श्रोता आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर।

तस्वीर कार्यक्रम के अंतर्गत गैंगटॉक पर जानकारी दी जाएगी सुबह 11:10 पर। 12:10 पर आप सुनेंगे घर आंगन। कलाकार बेमिसाल, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 1:10 पर और आज के कलाकार होंगे मिथुन चक्रवर्ती। उन्नत किसान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 2:30 पर

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने को है, आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल

0: G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनियाभर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom and UAE yesterday. He also met and interacted with the leaders of several other countries on the sidelines of the G7 meeting. The Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. The two sides called for continued free, safe and unimpeded navigation, trade and commerce through the Strait of Hormuz. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France yesterday. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Makinam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance and community engagement. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Kishau multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding MOU for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishau project will be placed before the Union Cabinet for approval. National Testing Agency NTA has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. In football, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group 1 of FIFA World Cup 2026 at New Jersey Stadium last night. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथों में सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह को भक्तिमय बनाएं एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। जय श्री गणेश।

यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हों, सफलता पाने के लिए सपने देखने बहुत जरूरी हैं, लेकिन जानते हैं उन सपनों को पूरा करने का साहस और मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हमें सफलता हासिल हो, तो हमें डटकर पूरे साहस के साथ मेहनत करनी होगी अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए।

और हमारे आपके जीवन में, प्रत्येक के जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ होता है वो इन चार पंक्तियों में उतार दिया है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सलाह हारे हुए की, अनुभव जीते हुए का और दिमाग खुद का, इंसान को कभी हारने नहीं देता। ये आकाशवाणी का दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, और आज अर्पण में आपका साथ दे रही हूं मैं सुरती।

सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको किसी के बारे में बताना है कि उसने ये गलती की है, तो कोशिश करें कि अकेले में जाके बताएं, ताकि वो व्यक्ति आपकी बात को सलाह के रूप में अपनाए, न कि आलोचना के रूप में।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने

वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस और इसी के साथ अब वक्त हो गया है समाचारों का। सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलिएगा हमारी योग पर आधारित विशेष श्रृंखला आज का आसन भद्रासन और उसके बाद गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अब संस्कृत में समाचार FM गोल्ड पर।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडादेशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह

0: धृत्वा प्रधानमन्त्री श्रीमोदी पञ्चत्रिंशोत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य दूरदृष्ट्यान्तर्गतं भारत यूके सम्बन्धानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी G7 शिखरसम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्। तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायि शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रिय विधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्यादेशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापानदेशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांसदेशस्य एवियन नगरम् अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागिदेशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखरसम्मेलनावधौ भविष्यति। पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अन्तिमवारं मेलनानन्तरं उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविधक्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्परहितानां क्षेत्रीयवैश्विकविषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री EU परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोष्टा इत्यनेन सह EU अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः फ्रांसदेशस्य एवियन नगरे G7 शिखरसम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्ताराष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडांगणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांसदेशेन सेनेगलदेशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे।

0: आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्वार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाए ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला आज का आसन भद्रासन।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन, मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, प्रेगनेंसी के दौरान आती है, तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को पास ले आएं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।
0: तो आप सभी सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आज का आसन। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आप सभी के मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। और आज आपके साथ हूं मैं सुरति। एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ आइए करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी शुरुआत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे।

0: की बात।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 MHz पर। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गोल्ड सुप्रभात, मेरे यानी सुरती के साथ। सुबह सुबह यदि आपकी आदत चाय या कॉफी पीने की है तो उसे छोड़कर कुछ अच्छे एनर्जेटिक ड्रिंक्स लीजिए और फायदा उठाइए। और अगर हम बात करें इन इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एनर्जेटिक ड्रिंक्स की, तो ये है नारियल पानी। नारियल पानी में भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम होते हैं, जो कि दिन भर आपको फ्रेश रखते हैं, एनर्जेटिक हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी ठीक करते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं चिया सीड्स वाटर, ग्रीन टी, हर्बल टी और हल्दी वाला दूध। ये कुछ ऐसे पेय पदार्थ हैं जिन्हें लेने से न सिर्फ हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर ये ड्रिंक्स जो हैं हमें फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी बॉडी को इनमें से किसी पदार्थ से एलर्जी है तो आप ये ड्रिंक्स न लें। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सुबह की शुरुआत अगर हम हेल्दी और पौष्टिक चीज से करते हैं, जैसे कि आप अच्छा नाश्ता लेते हैं तो वो फायदा करता है, ऐसी कोई अच्छी ड्रिंक अगर सुबह सुबह पीते हैं तो वो पूरे दिन भर आपको रिफ्रेशिंग रखेगी, आपको हेल्दी रखेगी और आपको फिट रखने के लिए गजब सा बदलाव आपकी बॉडी में लेकर आएगी। तो ये ड्रिंक्स पीजिए और गजब की चेंजेस, तंदुरुस्ती देखिए बॉडी के अंदर।

0: लेकिन हमें डर के हसीन नहीं लगना, हमें तो अच्छी अच्छी चीजें खा पी कर हसीन लगना है। कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं तो थकान और आलस भरी होती है और उसके बाद पूरा दिन उनका ऐसे ही जाता है थकान और आलस के साथ। ऐसे थके थके रहना क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता ना, किसी को भी नहीं लगता। तो बस क्या करना है, थोड़ा सा खुद की आदतों में सुधार करना है, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। सुबह जल्दी उठकर जो है सूर्योदय होते हुए देखना है, अगर मुमकिन हो तो सुबह सुबह जल्दी उठें और सूर्य की आती हुई हल्की प्यारी सी किरणों के आगे नमन करना है। अगर आप जो है सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इसके अलावा सुबह सुबह उठकर गुनगुना पानी पीजिए, वो भी फायदा करता है। और सुबह की खिली खिली धूप में थोड़ी देर के लिए बैठें ताकि विटामिन डी जो है आपको मिल सके। ये जानते हैं हमारे मूड को बेहतर बनाता है और साथ ही हमें फुल डे एनर्जेटिक रखता है। प्लस इसके साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, योग या फिर हल्का व्यायाम, ये भी करने की आदत डालें जिससे कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके। हेल्दी खान पान और मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल, बस ये छोटी छोटी आदतें हैं। यदि इन आदतों को हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी में ढाल लें तो हमारी जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और काफी हद तक हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकेंगे। तो कोशिश कीजिए इन्हें अपनाने की और फिर देखिए कि क्या गजब का चमत्कार होता है और क्या बेहतर आप महसूस करते हैं। दिन ब दिन बदलता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी और आपकी चमक आकर्षण भी बढ़ता जाएगा। चलिए गोल्ड सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ अब आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे, उसके बाद हिंदी में समाचार, फिर अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद सुनेंगे उर्दू में समाचार। और ठीक 8:45 पर सुनना ना भूलिएगा म्यूजिकल दिल लगी मेरे यानी सुरती के साथ। लेकिन अभी आपने कहीं नहीं जाना है, अभी आप सुनेंगे FM गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे। तो आइए सुनते हैं आप इस कार्यक्रम को FM गोल्ड पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और हर सुबह हमारे जीवन में लेकर आती है एक नई आशा और उम्मीद की किरण। इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आइए शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जो रोज सुबह ताजा तरीन खबरों के साथ आपको देता है वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
1: नमस्कार सरफिरोजी। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम।

0: afternoon to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. Well, now you know that this is our daily news magazine program, Aaj Savere, and till 8 a.m. we have a lot in store for all of you. Every day is special, and today is 17th of June, even more special. It's a Wednesday, the middle of the week. Just want to wish you a very happy Wednesday, and keep on going to the work. Do not be demotivated. Just carry a great smile and your day will be amazing. So with this, let's begin with our news headlines. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade.
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर शामिल है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday, during which consensus was reached among six states on the long-pending Keshav multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding, MOU, for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for the approval. The ministry said that this decision will prove to be a significant step towards a clean and pure Yamuna, as it will increase the flow of clean water in the river.
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है।
0: उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू इंश्योर स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द नीट एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 21st ऑफ जून अक्रॉस 59 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। द चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड दैट कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द एग्जाम शुड बी प्रोवाइडेड अ 50% कंसेशन इन द फेयर ऑन उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेस ऑन शोइंग देयर एडमिट कार्ड्स। He also directed authorities to make necessary temporary accommodation arrangements for the candidates travelling to other districts for the examination and facing difficulties in finding a place to stay. And in view of the rising temperatures and ongoing heat wave conditions across Uttar Pradesh, the state government has extended the summer vacation in schools until under the control of the Basic Education Council and recognized schools till 24th of June. According to an order issued by Additional Chief Secretary, Basic Education and Secondary Education Department, Partha Sarthi Sen Sharma, the summer vacation will now be observed every year from 20th of May

0: India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. According to the Met Department, a thunder squall is likely today in parts of Rajasthan. Places over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and parts of northeast India are expected to experience thunderstorms and lightning today.
1: और भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है. कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया. भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर है. भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा.
0: And after hockey, let's talk about cricket. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of 3-match series in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In the series opener played on 13th of June in Dharamshala, hosts India won by 7 wickets in a rain-affected match.
1: श्रोताओं अब आपको देंगे महानगरों का हाल. तो कहां से शुरुआत कर रहे हैं तन्वी?
0: लेट्स बिगिन विद चेन्नई. तमिलनाडु स्टेट स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर राजमोहन सेड दैट प्राइवेट स्कूल्स सीकिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फॉर ओपनिंग एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट्स फॉर द अपग्रेडेशन कैन ओनली अप्लाई ऑनलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of July. ही सेड दैट सेवरल प्राइवेट स्कूल हेड्स हैव फ्लैग्ड एक्सेस चार्जेस कलेक्शन फॉर द रिन्यूअल एंड एनओसी. द मिनिस्टर अपील to private schools not to charge exorbitant fees per child and called upon them to publicize their fee details. Now, what do we have from Delhi, Sir Firozi?
1: जी तन्वी, गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा. श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए. दिल्ली सरकार वस्तु और सेवा कर जीएसटी प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 सप्ताह का जीएसटी डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण में जीएसटी नेटवर्क पर व्यवहारिक अभ्यास कराया जाएगा जिसमें रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, बैंक ऑफिस संचालन, हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी दी जाएगी. इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों के ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करना है.
0: Now moving towards Bangalore, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar urged newly graduated doctors to uphold the trust people place in them and serve with dedication. Speaking at the 28th annual convocation of Rajiv Gandhi University of Health Sciences in Bangalore yesterday, he encouraged doctors to work in rural areas where healthcare services are most needed. He said Karnataka has 72 medical colleges and produces nearly 13,940 doctors every year, making it one of the leading states in medical education. And Karnataka received the highest wind capacity pipeline award at the Global Wind Day event in Goa. The award was presented by the Union Minister Prahlad Joshi to the Managing Director of KREDL. The state currently has about 9 gigawatts of wind power projects in the pipeline.
1: और अब रुख कर रहे हैं शहरे मुंबई की ओर. भिंड मुंबई नगर निगम ने एक ही स्थान पर शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए गड्ढों की शिकायत करने वाली अपनी एप्लीकेशन को माई बीएमसी मार्ग प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है. ये प्लेटफॉर्म गड्ढों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग सहित 114 श्रेणियों की नागरिक शिकायतों को कवर करता है. नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, उनकी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, शिकायतों की स्थिति का पता लगा सकते हैं और समस्याओं के समाधान होने तक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.
0: and about Hyderabad, the Telangana activists' idea.

0: Identification Committee will hold consultations with various groups from 23rd of June at the Telangana Martyrs Memorial, Amar Jyoti, to identify genuine Telangana statehood activists. Led by Chairman K. Keshav Rao, the committee will seek feedback from student leaders, artists, writers, public organizations, advocates, and also doctors. Suggestions can be submitted both online through a dedicated website and offline through appointed special officers. The initiative aims to transparently recognize the individuals who actively participated in the Telangana statehood movement between 2001 and 2014, regardless of political affiliation.
1: और अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी महानगर की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिला के लिए आरक्षित होंगी। श्रोताओं, महानगरों की जानकारी के बाद अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
0: And Chennai is likely to witness a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorms. The temperatures are expected to range between minimum of 29 degrees and the maximum of 39 degrees Celsius. Bangalore is forecast to experience a partly cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. The minimum temperature is expected to be 21 degrees and the maximum may reach 31 degrees. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with the possibility of thunder and even lightning activity. Temperatures are expected to range from 27 degrees to 38 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। तो बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे तन्वी, लेकिन उससे पहले एक ऐसे दिन की बात कर लेते हैं जो आज के टाइम में बहुत रिलेटेबल हो गया है। आज यानी 17 जून को हर साल विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये दिन वैश्विक स्तर पर लोगों में मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इनसे निपटने के लिए उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1994 में की थी। ये दिन पहली बार मनाया गया 1995 में और तब से हर साल इसका आयोजन हो रहा है।
0: Absolutely. Today is the World Day to Combat Desertification and Drought. It is being observed globally and today the theme of this particular day is Rangelands. Recognize, respect, restore. Rangelands cover more than half of the Earth's land surface and support nearly 2 billion people by providing food, water, biodiversity and climate resilience. Despite their importance, nearly half of these ecosystems are already degraded or at risk. And if we talk about particularly India, India has taken significant steps in this direction through long-term land restoration and environmental programs. The country has committed to restoring 226 million hectares of degraded land by 2030 as part of its broader climate and land restoration goals. It has also advanced efforts under the National Action Program to combat desertification, which focuses on sustainable land management practices. Large-scale afforestation and ecosystem restoration conservation efforts, including those under the Green India Mission, have helped improve green cover and ecological balance in several regions. And in addition, community-led watershed development and drought resilience initiatives in arid and semi

0: arid areas have strengthened water security and improved livelihoods. These efforts are further supported by wider climate actions promoting sustainable agriculture, soil conservation and responsible land use. And now, of course, we are talking about this particular day, 17th of June. So let's talk about those particular days in different years that made this day special. If we go back to 1673, French explorers Jacques Marquette and Louis Joliet reached the Mississippi River, becoming the first Europeans to systematically map and document its course.
1: और इस अवधि के लगभग 200 साल बाद 1885 में फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दी गई विशाल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के एक लंबे समुद्री सफर के बाद सुरक्षित न्यूयॉर्क हार्बर पहुंची थी।
0: In 1917, Mahatma Gandhi and his wife Kasturba Gandhi officially shifted their residence to Hriday Kunj within the newly established साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद।
1: और 1928 में अमेरिकी विमान चालक एमिलिया एयरहार्ट अटलांटिक महासागर को हवाई जहाज से पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी।
0: In 1944, Iceland officially dissolved its constitutional ties with the Danish monarchy and formally declared itself an independent republic.
1: आज ही के दिन 1956 में भारत की संसद द्वारा महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने वाला ऐतिहासिक और क्रांतिकारी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित किया गया था।
0: In 2008, India successfully test-fired its indigenous supersonic light combat aircraft Tejas during comprehensive structural trials in Bangalore.
1: और 2012 में भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा था। और श्रोताओं, अब याद करेंगे उन महान हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। सबसे पहले बात कर रहे हैं गोपाल बंधु दास की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। गोपाल बंधु दास महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार थे, जिनका नाम उड़ीसा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दी। उनका जन्म हुआ 9 अक्टूबर 1877 को उड़ीसा के पुरी जिले में। उत्कलमणि यानी उड़ीसा का रत्न कहे जाने वाले गोपाल बंधु ने वकालत छोड़कर समाज सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए।
0: Today is the death anniversary of Kate Smith, an American contralto. Referred to as the first lady of radio, Kate Smith became well known for her renditions of God Bless America and When the Moon Comes Over the Mountain. She began to use the descriptor, the songbird of the South, in the late 1920s while performing on the stage. And songbird of the South was used when she appeared on the NBC radio network in that year in April. And then in the summer of that year, she starred in a short feature titled Songbird of the South, in which she sang two of her super hit songs, Bless You Sister and Carolina Moon. Let's hear a song by her that she sung on the Ed Sullivan Show titled Moon River.

अभिनेता मोतीलाल राजवंश की आज पुण्यतिथि है। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला नेचुरल एक्टर माना गया है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नेवी ज्वाइन करने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में रहते हुए एक दिन मोतीलाल सागर स्टूडियो में शूट हो रही फिल्म की शूटिंग देखने गए। इसके निर्देशक थे केपी घोष। वे मोतीलाल के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि सीधे फिल्म का प्रस्ताव दे दिया। इस तरह महज 24 साल की उम्र में मोतीलाल ने शहर का जादू फिल्म साइन की। इसके बाद कई फिल्मों में वो नजर आए। साल 1940 में आई फिल्म अछूत में

0: मोतीलाल ने इतना शानदार अभिनय किया कि महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल तक ने उनकी तारीफ की। मोतीलाल राजवंश, सिल्वर किंग, डॉक्टर मधुरिका, दो घड़ी की मौज, लग्न बंधन, जीवन लता, दो दीवाने, दिलावर, कोकिला, कुलवधु, जागीरदार जैसी फिल्मों में नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म मिस्टर संपत का ये डायलॉग।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर, बदमाश, डाकू नजर आते हैं। और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420 बिल्कुल खराब। क्या भाव लाए थे?
2: अठन्नी के बारह।
1: अठन्नी के बारह, ये लीजिए, ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। आठ आने के बारह केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं।
3: And today is the birth anniversary of Vinay Apte, an Indian film and television actor. He acted in several Marathi movies and television shows in his almost 40-year-old career. He also acted in Hindi movies, be it Chandni Bar, It's Breaking News, Satyagraha, Ek Chalis Ki Last Local, Rajneeti and many more. So let's hear a dialogue by him from the film Dhamal.
4: Kitna time lagega Goa pahunchne mein?
5: देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा।
4: योर गुड नेम प्लीज।
5: अय्यर,
4: वेणुगोपाल अय्यर,
5: मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर,
6: चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर,
7: एक परंपील परंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर,
8: त्रिचिपल्ली एक्के परंपील परंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर,
9: राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली एक्के परंपील परंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर,
10: ಶಿವ ವೆಂಕಟ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಯಕ್ಕಪರಂಪೀಲ ಪರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್,
11: ಶ್ರೀಬಲವರ್ಧನ ಅಟ್ಟಪಟ್ಟು ಜಯ ಸೂರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ವೆಂಕಟ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಯಕ್ಕಪರಂಪೀಲ ಪರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ.
0: असम के महान कवि, गीतकार, नाटककार, संगीतकार, फिल्मकार और स्वतंत्रता सेनानी ज्योति प्रसाद अग्रवाला की भी आज जयंती है। ज्योति प्रसाद अग्रवाला न केवल एक कलाकार थे बल्कि संपूर्ण सांस्कृतिक क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने असम की आत्मा को गीतों, नाटकों और फिल्मों के माध्यम से स्वर और दृश्य दिए। इन्हें असमिया सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 1935 में बनी उनकी फिल्म जॉयमती असम की पहली फीचर फिल्म थी। इनके लिखे गीत, जिन्हें ज्योति संगीत के नाम से जाना जाता है, आज भी असम के जनमानस की आत्मा में जीवित हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सिपाही रहे और उनकी लेखनी ने युवाओं में चेतना जगाने का काम किया।
3: And today is the death anniversary of Daniel Latifi, a prominent senior advocate of the Supreme Court of India and an Oxford-educated barrister known for his advocacy in landmark civil rights and women's maintenance cases, most notably representing Shah Bano and challenging the constitutional validity of the 1986 Muslim Women's Act. He was educated at the University of Oxford and was trained as a barrister at law at Gray's in London. He became the first Indian to practice as a barrister in the Bombay High Court, and he served as the lead counsel for Shah Bano, successfully securing her right to alimony under the general provisions of the Code of Criminal Procedure. And we are also talking about Venus Williams. Today is her birthday, an American professional tennis player. She has been ranked as the world number one in both women's singles and doubles by the Women's Tennis Association. Venus Williams has won 49 WTA Tour level singles titles, including 7 majors, 5 at Wimbledon and 2 at the US Open, as well as a gold medal at the 2000 Sydney Olympics and 2008 WTA Tour Championships. She has also won 22 doubles titles, including 14 majors and 3 Olympic gold medals. Her achievements, the list of her achievements is really long, so let's cut it short and let's hear a small interview of hers where she is talking about empowering women in tennis.
2: What do you feel like that moment meant for women in sports?
12: That was a great moment. We had no idea that was going to

0: happen because you can't tell how the matches are going to finish, if the player will even come to set. So all of a sudden, all three of us there, three Grand Slam champions, girls who grew up watching, women who grew up watching me, and now they're shining on their own, and they're just encouraging and inspiring the next generation. It's like a domino effect, right?
1: Yeah.
0: You do something positive for yourself, great things happen, and other people start doing that. And I just, it was like chills. It was a great moment.
2: We cannot help but mentioning Serena Williams along with Venus Williams. The Williams sisters are credited with ushering in a new era of power and athleticism on the women's professional tennis tour.
3: और आज भारतीय गायिका सोना महापात्रा का भी जन्मदिन है. सोना महापात्रा न सिर्फ एक प्रसिद्ध गायिका है बल्कि गीतकार, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठाने वाली प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी है. सोना महापात्रा की मधुर आवाज में गाए उनके सुपरहिट गानों ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया है. सोना महापात्रा की डॉक्यूमेंट्री शट अप सोना ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खूब तारीफें बटोरी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष, सोच और स्त्री सशक्तिकरण की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया. वे उन चंद कलाकारों में से हैं जो कला को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव का माध्यम मानती हैं. आइए अब आपको सुनाते हैं सोना महापात्रा के गाए कुछ गीत.

0: श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत सरफिरोजी और तन्वी को। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे।
0: नमस्कार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की।

0: पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल

0: मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजाद मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में तीन मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss.

0: Welcome back. You're listening to the Morning News. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
1: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
2: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagara style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashwani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
3: Mera naam Pankaj Jaria hai.
4: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table walks and displays which look very divine.
2: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
5: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
2: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
0: In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led Men in Blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
6: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags, seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem." The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहया के लिए तवील अरसे से जेरे इल्तवा केशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एविया में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तिजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तिजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तिजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम ने बैन अलावामी साझेदारी कायम करने खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावामी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलावामी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अलावामी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अलावामी साझेदारी में मुजाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की जरूरत है। फ्रांस का शहर एवियां इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहां G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई है जिसका काफी इंतजार किया जा रहा था। यह मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वाशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से यह पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
8: ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेशीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती राबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम राबतों की अक्कासी होती है। कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राबता इजलास में वजीर आजम ने बैन अलावामी साझेदारी कायम करने और खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की ज़ेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है जिनमें बैन अलावामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावामी साझेदारी के भारत के नजरिए की बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
7: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजिन जामे और पायदार माशी तरक्की को फाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मुअसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सिफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्ज के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वज़राए आजम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी। जनाब मोदी ने केनिया मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुताल्लिक आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैन अल-अक़वामी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।

0: चाऊ प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात का इनाकात कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने वालिदैन और उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि वो नीट इम्तिहानात से पहले घोटाला साजों से खबरदार रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि टेलीग्राम पर ये घोटाला साज कुछ चैनल चला रहे हैं जिन पर ये दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान के पर्चे फराहम करने के दावे कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग 14,000 से 25,000 रुपए तक मांग रहे हैं। एजेंसी ने वाजे किया है कि इस दोबारा इम्तिहान के लिए कोई पर्चा इफ्शा नहीं हुआ है। उसने कहा है कि इस सिलसिले में फर्जी सबूत के वीडियोज भी गर्दिश कर रहे हैं जिनमें इम्तिहान से पहले की चैट्स दिखाई गई है। एनटीए ने अपने डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की वीडियो भी जारी की है जिसमें वो मुल्क में इस ऐप तक रसाई को ब्लॉक करने की वजह बता रहे हैं। भारत ने पिछले 12 साल में वजीराजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क की विरासत के तहफ्फुज और फरोग के तहत हुकूमत के इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: जनवरी 2024 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुश्शान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीमुश्शान मुजस्मों म्यूरल्स और फन तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामानिकार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
0: भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम मेघालय बिहार केरला माहे तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़ तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश गंगाई मगरबी बंगाल कोंकण गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ओडीआई में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में आईसीसी खवातीन टी20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप 1 के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप

0: में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप एक के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने नीट UG दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत। खांसी के सिरप फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बम्बार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबैन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है आप सभी के अपने मन पसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है म्यूजिकल दिल लगी। और आज म्यूजिकल दिल लगी में आपके साथ हूँ मैं सुरति। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
8: और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता की वजह से उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और गरम चरम की संभावना जो है बढ़ जाएगी, यानी कि गरज के साथ, चमक के साथ बिजली भी नजर आएगी और बारिश भी तेज होगी। और ऐसे में अगर हम बात करें किस किस जगह पर ये होने वाला है, तो दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 21 जून तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें आज के मौसम की, तो आज जो है सामान्य धूप रहने वाली है और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम जो है 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इससे मुझे यानी सुरेति को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अपना मन पसंद आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। म्यूजिकल दिल्ली का ये सफर जारी रहेगा एक बहुत ही प्यारे से गाने के बाद और न्यूज के बाद। सुनते रहिए FM गोल्ड और जाते जाते ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया।

0: भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन ने तीर्थयात्रा से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये यात्रा जुलाई में शुरू होगी। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस साल का विषय है चरागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत आज से झारखंड की राजधानी रांची में हो रही है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion in France, Mr. Modi said conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February last year. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Kishau multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding, MOU, for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishau project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. National Testing Agency NTA has urged parents and candidates to beware of the scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. Talking to media, NTA Director General Abhishek Singh said NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. On World Day to combat desertification and drought, Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav urged all to remember that land is the foundation of all sea ecosystems and the source of our nutrition and energy cycles. In a social media post, Mr. Yadav encouraged everyone to restore degraded lands and build together a more resilient future for the generations to come. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. According to the Met Department, a thunder squall is likely today in parts of Rajasthan. Places over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and parts of northeast India are expected to experience thunderstorms and lightning today. In football, defending champions Argentina began their FIFA World Cup 2026 campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. Messi also pulled level with Germany legend Miroslav Klose for the most World Cup goals with 16. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूँ म्यूजिकल दिल लगी, जहाँ ढेर सारी बातों के बीच एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग। तो कुल मिलाकर माहौल होगा एकदम एनर्जेटिक और साथ में होगा आज का सवाल भी, जिसका जवाब आप देंगे कहाँ और कैसे ये भी सुनते जाइए। FM गोल्ड AIR delhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज, आप भेजेंगे 9868686753 पर। और फिलहाल एंजॉय करेंगे मेरे साथ म्यूजिकल दिल लगी की प्लेलिस्ट से ये पहला धमाका।

हां जी, तो अर्ज किया है कि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, दिल को जैसे ये धक धक जिंदा रखती है। दिन शुरू होते कुछ लोग आ जाते हैं, तो हम जैसों को तो ये बैठक जिंदा रखती है। मंजर को जिंदा रखती है बुनाई, और उस बुनाई को ऐनक जिंदा रखती है। एक मेहंदी में जाकर मालूम हुआ कि कुछ गीतों को तो ये ढोलक जिंदा रखती है, पर फिर जब चुप हो जाते हैं हम मर जाते हैं। कुछ लोगों को ये बक बक जिंदा रखती है। तो शामिल रहिएगा मेरे यानी नाज की इस बक बक में पूरी जिंदा दिली के साथ, और मैं सुनवाऊं आपको प्रोग्राम का अगला गाना। उससे पहले मुझे है आज आपसे एक सवाल पूछना, जिसका सही जवाब भी है आपको बताना। तो जनाब, आपको बताना है आज उस मशहूर शख्सियत का

आम, जिनका आज यानी 17 जून को होता है जन्मदिन और जिन्हें जाना जाता है ओलंपिक के सिकंदर, ग्रैंड स्लैम के सुल्तान और डेविस कप के किंग के रूप में भी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले एशियन पुरुष खिलाड़ी रहे हैं। और भी हिंट्स मिलते रहेंगे आपको प्रोग्राम के बीच बीच में। अभी एक और खूबसूरत ट्रैक प्ले कर रही हूं आप सबके लिए, और आप क्या करेंगे? करेंगे ये कि गाना एंजॉय करते हुए जल्दी से लिख भेजेंगे आज के सवाल का जवाब। याद दिला दूं फिर से कि fmgold@delhi@gmail.com पर करना है ईमेल, या फिर 9868687 पर भेजना है जल्दी से एक व्हाट्सएप मैसेज।

देखिए, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, जैसे चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना जैसे बरसात नहीं होती, ठीक वैसे आपके बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। और चूंकि आप सभी लिसनर्स आ चुके हैं, तो मैं भी आपको नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी बोर। दूंगी उन सभी बातों पर जोर जो आपके लिए जानना है जरूरी, और जो है आज के दिन यानी 17 जून से भी जुड़ी, जिसमें सबसे पहले जिक्र इंडियन आर्मी के उस फाइटर प्लेन का जिसने आज ही के दिन भरी थी अपनी पहली सफल उड़ान, और जो भारत में बनने वाला पहला फाइटर प्लेन भी था। साल था 1961 जब HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक की मदद और लगभग 2 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद इस पहले स्वदेशी फाइटर प्लेन को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। नाम था इस फाइटर प्लेन का HF मारुत। मारुत जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द टेम्पेस्ट यानी तूफान की आत्मा। 17 जून यानी आज ही के दिन साल 1961 में विंग कमांडर सुरंजन दास के नेतृत्व में इस प्लेन ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी, और बाद में 1971 की लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ भारतीय सेना के साथ डटा रहा। फिलहाल डटे रहिए आप भी, क्योंकि देना है आपको आज के सवाल का जवाब भी। बताना है भारतीय मूल के उस महान और सफल टेनिस खिलाड़ी का नाम जिन्होंने 3 दशकों से भी लंबे अपने करियर में कई बार देश का मान बढ़ाया है। लगातार 1992 से लेकर 2016 तक 7 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले जो दुनिया के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं, आज उन्हीं का नाम आपको लिखकर भेजना है। और एक हिंट जो सबसे बड़ा है, 17 जून यानी आज ही है उनका जन्मदिन भी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

दूर तक फैली हुई रेत है, धूप का कड़ा पहरा है। इस मरुस्थल की खामोशी में कोई दर्द बहुत गहरा है। पैर चलते हैं अंगारों की तरह, पर सफर जारी रखना है।

इस बंजर सी दुनिया में दिल को उम्मीद से भारी रखना है। है बादल कभी तो बरस जा इस तपती हुई जमीन पर, सदियों से प्यासा बैठा है कोई इस रेत की आस्तीन पर। देखिए, रेगिस्तान का दर्द क्या है अगर समझना है तो बस एक दिन बिना पानी का इस्तेमाल किए रह लीजिए, और यकीन है मुझे कि उसके बाद आप पानी को बिना वजह बर्बाद तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आज का दिन भी हमें कुछ यही संदेश देता है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, यानी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1994 में एक प्रस्ताव पारित कर इस खास दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को मरुस्थलीकरण यानी उपजाऊ जमीन के बंजर हो जाने यानी सूखे जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करना, और इस समस्या के समाधान के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने को प्रेरित करना। और इस सब के लिए करना कुछ ज्यादा नहीं है, बस अपने आसपास खाली पड़ी जमीन पेड़ पौधों से जितना हो सके भर देनी है, बचाना है पानी। और फिलहाल सुनना है अगला गाना, जो भी हमें पानी और उसकी अहमियत के बारे में बताता है।

0: का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: म्यूजिकल दिल्लगी चल रहा है प्रोग्राम, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, विद मी आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। तो चलिए फिर बातों के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज की तारीख यानी 17 जून की, जो इसलिए भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आज ही के दिन साल 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की शरीक हयात यानी बेगम मुमताज का इंतकाल हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज ने अपने जिंदा रहते शाहजहां से 4 वादे लिए थे, जिनमें से एक ये भी था कि मुमताज के मरने के बाद उनकी याद में एक आलीशान इमारत बनवाई जाए। और वो इमारत कौन सी थी और आज भी है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ठीक 7 महीनों के बाद उस करिश्मे की नींव पड़ी जो आज भी दुनिया के अजूबों में शामिल है, ताजमहल। सफेद संगमरमर से बनी वो इमारत आज भी हिश्किला जवाल की अलामत यानी शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में हम सब के सामने खड़ी है।

आज की तारीख यानी 17 जून किन वजहों से है खास, इस पर हो रही थी हमारी बात। तो जनाब, आज ही के दिन साल 2004 में मंगल ग्रह पर मिले थे हमारे यहाँ यानी पृथ्वी से मिलते जुलते पत्थर। तो वहीं भारत में विकसित लड़ाकू विमान तेजस ने बेंगलुरु में भरी थी अपनी पहली सफल उड़ान। फिर साल 2012 में आई जब 17 जून की तारीख, तो भारत की शान साइना नेहवाल ने दिखाया अपना दम और बनी तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन की चैंपियन। साल 1970 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता रहे निशिकांत कामत का हुआ था जन्म। तो वहीं असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और फिल्म निर्माता रहे ज्योति प्रसाद अग्रवाल भी आज ही के दिन साल 1903 में जन्मे थे। ऐसी कुछ हस्तियां जिनका स्मृति दिवस है आज, शाहजी भोसले की पत्नी और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, जिन्हें राजमाता जीजाबाई या जीजाई के नाम से जाना जाता है, आज ही के दिन साल 1674 में उनका निधन हो गया था। इनके साथ ही पंडित गोप बंधु दास जी का साथ भी हमसे आज ही के दिन साल 1928 में छूट गया था, जो भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, कवि और पत्रकार थे, और जिन्हें उत्कलमणि यानी ओडिशा के रत्न के नाम से देश जानता और पहचानता है। बातों का सिलसिला थमेगा नहीं, आगे भी रहेगा जारी, लेकिन उससे पहले आ गई है अगले ट्रैक को सुनने और एंजॉय करने की बारी।

जो जहरे हलाहल है अमृत भी है वही, जो जहरे हलाहल है अमृत भी है वही, लेकिन मालूम नहीं तुझको अलग अंदाज है बस पीने का। फिराक गोरखपुरी साहब के इस शेर के बाद बात एक और अमृत की ही करेंगे, जो भी कई जिंदगियों को बचाने और उन्हें खुशहाल रखने का काम कर रहा है। यहाँ बात हो रही है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अचल पुनर्जीवन एवं शहरी परिवर्तन मिशन की, जिसे शॉर्ट में अमृत यानी अमृत के नाम से भी जाना जाता है। देश के शहरों को आधुनिक, स्वच्छ और जल सुरक्षित बनाना इस मिशन का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत हुई थी जून के महीने में ही साल 2015 में। हर घर को चालू नल कनेक्शन मिले, शत प्रतिशत सीवरेज की सुविधा रहे, हर तरफ हरियाली फले फूले और इसके जरिए प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके, इस ओर ये मिशन काम करता है। और सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हमें अपने स्तर पर क्या क्या करना चाहिए ये भी ये मिशन हमें बताता है। पानी बचाना है और हरियाली फैलानी है, ये ही कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। मिलूंगी आपसे इस अगले गाने के बाद और तब बताऊंगी कि आज के सवाल का सही जवाब क्या है और आप में से किस किस ने वो सही जवाब लिखकर भेजा है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी आई है कि प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई कुडंट लिसन। तो सतप्रकाश जी, आज का सवाल ये है कि आपको बताना है उस भारतीय मूल के टेनिस प्लेयर का नाम जिनका आज है जन्मदिन।

और अब आज के सवाल का सही जवाब क्या है? वैसे तो आप सभी लिखकर भेज चुके हैं, लेकिन जैसी है रवायत, थोड़ी सी जानकारी के साथ बताऊंगी कि आपको लिएंडर पेस लिखकर भेजना था वो नाम, जो भारतीय मूल के महान टेनिस खिलाड़ी हैं और जिन्होंने 3 दशकों से भी लंबे अपने सफल करियर में वैश्विक स्तर पर देश का नाम बढ़ाया है। जुलाई 2024 में इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और इस लिस्ट में शामिल होने वाले वो पहले एशियन पुरुष खिलाड़ी बने। आज ही के दिन साल 1973 में जन्मे लिएंडर पेस कोलकाता से ताल्लुक रखते हैं। अपने पूरे करियर में लिएंडर पेस ने कुल 18 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए। नेट पर बिजली जैसी फुर्ती और वॉली शॉट्स के लिए मशहूर लिएंडर पेस डेविस कप के किंग भी कहे जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि डेविस कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 45 डबल्स मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। और अब फिलहाल हम देते हैं लिएंडर पेस जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही शामिल कर लेते हैं उन सभी लिसनर्स के नाम जिन्होंने दिया बिल्कुल यही और सही जवाब। तो मधु बालाजी कोटला दिल्ली से, संतोष सक्सेना मुंबई से, आशीष गायकर मुंबई से, अनु बरजातिया मुंबई से ही, कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा यूपी से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, हेमंत साखर दांडे जबलपुर एमपी से, रमेश कुमार सिंह नई दिल्ली से, नवीन भाटिया मोतीनगर नई दिल्ली से, अशोक कुमार अलवर राजस्थान से, एस के खन्ना विकासपुरी से, उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, राजेश कुमार उत्तम नगर नई दिल्ली से, शेर सिंह राजौरा शकरपुर दिल्ली से, महावीर खत्री गुरुग्राम से, उषा जटोलिया नागलोई दिल्ली से, राजार नई दिल्ली से ही, पंचानन सामल भी दिल्ली से ही, कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, राज लक्ष्मी मुरलीधरन दिल्ली से, और देखिए सतप्रकाश गोयल जी ने भी लास्ट मिनट पर सवाल सुना और भेज दिया बिल्कुल सही जवाब रेणु गोयल के साथ रोहिणी से। और एक और जवाब आ गया है बिल्कुल अभी अभी, प्रकाश गोगिया जी ने भी जी भेज दिया है आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम को पूरा सुनने के लिए और आज के सवाल का सही जवाब भी देने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे अब ठीक 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर। उससे पहले आप जानिएगा हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर, और उससे भी पहले सुनिए ये लास्ट बट नेवर द लीस्ट सॉन्ग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति

0: बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Prime Minister Narendra Modi has said that affectionate respect and acceptance instill a sense of pride and contentment in a person. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that this not only boosts self-confidence but also infuses a new sense of energy and enthusiasm. Defence Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defence production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial financial year 2020-21 when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in the financial year 2013-14. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of the scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with the claims of sharing the re-exam paper. Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the third Sarsangh Chalak of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, Balasaheb Dioras, on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that Balasaheb Dioras dedicated his life to the national service, social harmony and the character building of the youth and considered untouchability to be the greatest curse. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Ranged Lands, Recognize, Respect, Restore, which calls for greater recognition of the economic, ecological and cultural value of range lands, respect for their traditional stewards and stronger investment in restoring degraded range lands. Domestic equity benchmarks traded flat in morning session today after a three-day rally driven by lower crude oil prices and optimism over a US-Iran peace deal. Sensex was trading at 76,817.58, up 8.58 points or 0.01%, while Nifty was at 23,988, down 1 point in early trade. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। पहले सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। G7 देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की। इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया का किया आह्वान। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड की वैश्विक कीमतें 5.4% गिरकर लगभग $79 प्रति बैरल हो गई हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक बनाई और अर्जेंटीना ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा सुनिए हमारे संवाददाता से।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेयन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या

0: और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है, जिसमें संक्रमितों का पता लगाना, सीमा पर निगरानी और सामुदायिक सहयोग लेना शामिल है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी एक बार फिर दोहराई है। G7 देशों ने कमजोर देशों की मदद करने और मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए विकास और निवेश वित्त में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष से वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है और जान माल को नुकसान पहुंचा है। समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से लगातार आपस में जुड़ती दुनिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहल में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान, तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान न करना अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता में सबसे बड़ी बाधा है। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 तक पहुंच गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक हस्तियों, कार्यकारी अधिकारियों, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को भारत के साथ नवाचार से संचालित एक उज्ज्वल और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 3 दिन की उपलब्धियां भारत और फ्रांस की नवाचार साझेदारी की अपार क्षमता को दर्शाती हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आइसलैंड की विदेश मंत्री थोरगेरदुर कैटरिन गुन्नास डॉटर और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत और आइसलैंड के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए 16वां वर्ल्ड कप गोल किया और इतिहास रच दिया। मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने के रिकॉर्ड में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज की बराबरी की। इससे पहले आज सुबह अमरीका के बॉस्टन स्टेडियम में ग्रुप आई के अपने पहले

0: मैच में नॉर्वे ने ईरान को 4-1 से हराया। कल रात न्यूजर्सी में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से पराजित किया। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर है। भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 होगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 2:30 से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुजर्न शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वह दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान शांति समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड की वैश्विक कीमतें 5.4% गिरकर लगभग $79 प्रति बैरल हो गई। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक बनाई और अर्जेंटीना ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराया। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashvani. I'm Sarabjit Kaur with the world news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France today. G7 nations announced series of initiatives to strengthen global health, call for coordinated response for Ebola outbreak. Global prices of Brent crude fell 5.4% to around $79 per barrel amid US-Iran peace deal. World Day to combat desertification and drought being observed today. And in FIFA World Cup, Lionel Messi scores hat-trick as Argentina defeat Algeria 3-0 in opening encounter. And now the news in detail. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
2: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashvani News, Avignon, France.
1: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all. And the

अपना नाम, कहाँ से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये लिखेंगे, और शेर व शायरी या अच्छे विचारों की देखिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ में एक और सरप्राइज है आपके लिए, एक सवाल भी लाई हूँ आपके लिए जिसका जवाब आप देंगे। तो गौर से सुनिएगा जनाब, आपको बताने हैं आज उस गीत के बोल जिसमें पंचमदा यानी R.D. बर्मन साहब ने कर दिखाया था एक कमाल का कारनामा। गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए उन्होंने किया था एक झाड़ू और एक कॉम्ब यानी कंघी का इस्तेमाल। तो देर ना कीजिएगा, जल्दी से लिख भेजिएगा उस आइकॉनिक गाने का मुखड़ा, और फिलहाल मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम का पहला सॉन्ग जिसकी फरमाइश हमें भेजी है कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही ने, सीधा सतना मध्य प्रदेश से।

हवा में खुली है एक प्यारी सी आवाज। ये आवाज है डियर नाज की, जो दिलों को छू जाती है हर बार। शब्दों में जादू, बातों में अपनापन, बस यही है नाज का अंदाज। माइक खुलते ही जैसे हवा में मीठा पन घुल जाता है, आवाज में वो जादू है। हाँ, वही नाज है। शब्दों को सजाकर दिल तक पहुंचाना, ये हुनर सिर्फ उसमें है। हर लफ्ज की नजाकत, हर बात में अपनापन। फ्रीक्वेंसी पर बजती है एक ऐसी धुन, जिसे सुनते ही चेहरा

लोटे है, बातें आम है पर अंदाज नाज का खास है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए अनु बरजात्या जी। सीधा मुंबई से आ रहा है ये मैसेज, और अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं सीधा चंडीगढ़ से। लिखा है कि पूछा जो एक दिन मैंने खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे, रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहत हैं तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने में तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के तू अनेजा, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। बहुत ही अच्छी कविता लिखकर भेजी है सतीश अनेजा जी ने, बिमला अनेजा जी के साथ, सीधा चंडीगढ़ सिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज आया है हमारे पास होली चौक

मुरझा गए तो इनका इलाज पता नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास, जल ही जीवन है। और इस ज्ञान भरे मैसेज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी है अपने मैसेज में। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, उत्तम नगर दिल्ली से ही है। क्या ये इन्हीं का मैसेज है? चीटिंग। व्हाट्सएप पे अलग मैसेज, ईमेल पर अलग मैसेज, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं। आज के सवाल के जवाब मुझे दिखाई दे रहे हैं हर मैसेज में, लेकिन मैं ढूंढ रही हूं कोई ऐसा मैसेज जिसमें लिखी हो कोई अच्छी सी शायरी या कोई अच्छी सी बात जिसे पढ़कर मेरा भी दिल खुश हो जाए, है ना? तो चलिए, मिल गया है मुझे एक ऐसा ही मैसेज। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उसके मकान की। सभी मजहब के लोग रहते यहाँ खुलूस व अखलाक से, यही तो खासियत है हमारे प्यारे हिंदुस्तान की। क्या बात है! भारत भूषण जी ने ये मैसेज भेजा है, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ, व्हाइट फील्ड, बेंगलुरु से। बहुत ही प्यारा मैसेज और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगला मैसेज मैं ढूंढ रही हूं जिसमें लिखी हो कुछ ऐसी ही बात। मधु किरण जी का मैसेज आया है, फरमाइशी गीत लिखकर भेजा है और लिखा है कि हमें आपकी आवाज पर बहुत नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तारीफ के लिए भी। और चलिए फिर, जब तक आप और मैसेजेस भेज रहे हैं तब तक मैं एक और फरमाइश पूरी कर देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाना आने वाला है, पहले ही बता रही हूँ, लता जी की आवाज में है और सच में मेरा तो फेवरेट है। और कमाल की बात यह है कि दो जगह से इस गाने की फरमाइश आई है, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी, गांव टोरोवाल, नवाशहर पंजाब से, और साथ ही मेरठ कैंट दिग्दर्शन जी और कविता गौड़ जी भी इसी गाने को सुनना चाह रहे हैं। तो चलिए हम सब सुनते हैं मिलकर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आ गए हैं वापस। तो स्वागत है आपका दिल का मेल बॉक्स। चल रहा है प्रोग्राम जहां आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूं कि उन मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मैं कार्यक्रम में शामिल कर पाऊं। तो फिर चलिए मैसेज इसी के साथ एक शामिल कर लेते हैं। अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी।

मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी जी ने एक मैसेज भेजा है। कहां से? दाऊद सराय सहारनपुर से आया है ये मैसेज। नमस्कार लिख रहे हैं, आदाब कर रहे हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि किसी भी गीत में शामिल हो जाएं। तो लीजिए, हमने आपको कर लिया प्रोग्राम में शामिल। और जो मैंने आज का सवाल आप लोगों से पूछा है उसके जवाब तो लगातार मुझे नजर आ रहे हैं। और एक खूबसूरत सी बात भी नजर आ गई है कि वो झील, वो नदियां, वो हवाएं, एक तरफ उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ, वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। क्या बात है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब ने भेजा है ये मैसेज, जिसके लिए हम करते हैं आपका शुक्रिया। और अगला मैसेज स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरुलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह भी शामिल हैं इस मैसेज में। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से आया है ये मैसेज और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश भी। और चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं ईमेल का और वहां देख लेते हैं कि किस किस ने भेजा है मैसेज। तो चारू जटोलिया जी का मैसेज आ गया है, लिख रही है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आपका एपिसोड बहुत अच्छा है। और साथ ही अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है, नांगलोई दिल्ली से आया है ये मैसेज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्कुराहट की बात एक मैसेज में लिखी गई है कि जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है मुस्कुराहट, नाज जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है, जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश और जिसे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मैसेज है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है सईद अब्बासी जी ने ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से। और एक बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी कर रहे हैं, जिसे माफ कीजिएगा अभी तो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि घड़ी कमबख्त बहुत तेजी से दौड़ रही है। और कोशिश मैं कर रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस में शामिल कर सकूं। तो जी, शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा ने भी मैसेज भेज दिया है और लिख रहे हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो, प्रस्तुतकर्ता को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाखोद राजस्थान से ये मैसेज भेजने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उस गीत की जिसके बोल आप भेज रहे हैं लिखकर लगातार। जी हाँ, जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर के लिए जिस गाने में पंचमदा यानी आरडी बर्मन साहब ने किया था कमाल का एक्सपेरिमेंट, उसी गाने की आज बात हो रही है। पूरी तरह से सफल इस एक्सपेरिमेंट को कह सकते हैं हम। शुरुआती पिक्चराइजेशन जब आप गाने की देखते हैं तो मशहूर कॉमेडी अभिनेता कश्तो मुखर्जी साहब को देखते हैं आप, जो कि किशोरदा के इशारे पर फुल मस्ती के साथ झाड़ू और कंघी के साथ कुछ म्यूजिक निकाल रहे हैं। और जनाब, वो आवाज सच में झाड़ू और कंघी से ही निकाली गई है। सबसे मशहूर, सदाबहार और मजेदार गाना है ये फिल्म पड़ोसन से, जहां सामने वाली खिड़की पर चांद देखा है राजेंद्र कृष्ण साहब की कलम ने और आवाज का जादू बिखेरा है किशोरदा ने। बाकी गाना और उसका वो खास म्यूजिकल हिस्सा भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले शामिल करेंगे उन सभी लिसनर्स के नाम जिन्होंने इतनी मेहनत से इस सवाल का, इस गीत को ढूंढा उन्होंने और लिखकर भी भेजा हमें मैसेज के जरिए इस गीत का मुखड़ा। तो सबसे पहले जो मैसेज हमारे पास आया वो आज था सतप्रकाश गोयल जी का रोहिणी से, सुनील गायकवाड़ पुणे से, उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, मधुबाला कोटला दिल्ली से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ही, और राजकुमार डूंडी फरासी हिसार से, तुलसी मस्कीन दिल्ली से, सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, कैप्टन ईश्वर चंद शर्मा द्वारिका नई दिल्ली से, एस के खन्ना विकासपुरी से, और प्रकाश गोगिया जी ने भी भेज दिया है अभी कुछ देर पहले ही सही जवाब दिल्ली से। और चलिए
चूंकि वक्त थोड़ी सी मोहलत हमें दे रहा है

0: है तो हम और मैसेजेस शामिल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस किस ने भेजा आज के सवाल का सही जवाब। तो जी अभी मुझे नजर आ रहा है मस्कीन दादा जी का मैसेज। लिख रहे हैं कि एक अच्छा और समझदार इंसान वो है जिसके विचार और कार्य समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं। मनुष्य की असली पहचान उसके व्यवहार और मूल्यों से होती है। बिल्कुल सही बात है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आया है ये मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुशील जी का भी मैसेज आया हुआ है और लिख रहे हैं कि आपने कभी हमारा मैसेज ऐड नहीं किया, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए आज कर लिया, माफी के साथ। चंदा पठानिया, अंजलि पठानिया, सचिन पठानिया के साथ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से भेजा है ये मैसेज। उम्मीद है नाराजगी दूर हो गई होगी। प्रकाश गोगिया जी ने लिखा है कि देखिए शायरी तो मुझे आती नहीं, इसीलिए आपकी तारीफ में क्या लिखूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, नमस्कार। बड़ी ही साफ गोई से बात कही है आपने, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। दिल्ली से भेजा है ये मैसेज। और सवाल के जवाब की जहां तक बात है तो बोधराज खोरवाल जी ने भी भेज दिया है आज के सवाल का सही जवाब। इसके साथ ही लालगिरी साहब का भी मैसेज मुझे दिख रहा है, लिख रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार, आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही भेजा है अपना फरमाइशी गीत। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से भेजा है मैसेज। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इसमें शामिल हैं। और अब सुनना बनता है वो गाना जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हमारी मुलाकात कब होगी ये तो आपको वैसे याद ही होगा। ये गाना आप सुनेंगे, इसके बाद सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद होगी तस्वीर एक खूबसूरत जगह की जिसकी सैर पर निकलेंगे आप मेरे यानी नाज के साथ। फिलहाल इंजॉय कीजिए ये खूबसूरत गीत जो मैंने आपके लिए सेट कर दिया है।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन्डर लाइन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से

Namaskar, suswagatam, assalamu alaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. Tune kiya hua hai aapne Akashwani Delhi ka FM Gold channel 100.1 megahertz par aur jahan ke studio ki ghadi mein is waqt टाइम हुआ है 11:11 और 25 सेकंड्स एंड एज यू नो ऑलरेडी ये समय है सैर सपाटे का क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूँ पूरी तरह से तैयार लेकिन क्या आप तैयार हैं अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पूर्वोत्तर भारत शिवालिक पहाड़ियों पर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे और करेंगे एक खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर जहाँ की सड़कों को छूते हैं बादल और हरे भरे पहाड़ हर मोड़ पर दिखाते हैं एक नया और खूबसूरत नजारा पैराडाइज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत का स्वर्ग जिसे कहा जाता है और नाम क्या है इस जगह का वो मैं नहीं बल्कि आप ही मुझे बताएंगे कहां कैसे ये आप जानते हैं पर फिर भी याद दिला रही हूँ fmgoldairdelhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे 9868687535 पर

0: बस बेटा, ये जगह तो कश्मीर लग रही है कुछ कुछ।
1: नहीं, माफ कीजिएगा गौरी शंकर जी, ये जगह कश्मीर बिल्कुल भी नहीं है।
0: सुदर्शन मुखी जी ने भी नाम गेस करने की कोशिश की है, शिलोंग लिखकर भेजा है। माफ कीजिए जनाब, कुछ कुछ सही है आप। नॉर्थ ईस्ट में है शिलोंग, लेकिन आज की तस्वीर शिलोंग की नहीं है। और साथ ही एक मैसेज और आया है महेश अग्रवाल जी का, लिख रहे हैं कि सवाल का जवाब दिया है लेकिन मेरा ईमेल शामिल नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैं शिकायत नहीं करता, शिलोंग ही गेस कर रहे हैं, माफ कीजिए शिलोंग सही जवाब नहीं है। और एक जवाब आया है अभी अभी, अनु बड़जात्या जी ने लिखा है सिक्किम। बहुत करीब हैं आप, जी हाँ, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक चल रहे हैं आज आप मेरे साथ। और कैसे पहुंचना है वहां तक, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो बाय एयर आप अगर जाएंगे तो लैंड करेंगे बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि यहां से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। और यहां से आप बाय हेलीकॉप्टर सर्विस या फिर बाय रोड टैक्सी या फिर कैब के जरिए भी गैंगटॉक तक पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन आने के लिए आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी, जहां ट्रेन से उतरने के बाद आपको आराम से प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है गैंगटॉक के लिए। और बाय रोड, खूबसूरत रास्तों और नजारों को निहारना है तो भाई पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से NH10 पकड़ लीजिए और सीधा पहुंच जाइए गैंगटॉक, जिसके लिए डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी लगभग 115 किलोमीटर। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना और फिर जब वापस आएंगे तो मुझे है आपको बताना कि किस मौसम में चाहिए आपको गैंगटॉक का प्लान बनाना।

देखिए, वैसे तो साल भर ही गैंगटॉक का मौसम बढ़िया रहता है, लेकिन मार्च से जून के बीच अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मौसम बेहद मस्ताना और सुहाना ही मिलेगा। खिलते हुए फूलों की घाटियां आप इस मौसम में यहाँ देख पाएंगे, और इसके बाद मॉनसून में आप चाहें तो भी गैंगटॉक की सैर कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आसमान साफ रहता है और दूर मौजूद बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां आपको साफ साफ नजर आती हैं। अच्छा, गैंगटॉक, इस जगह को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं। स्थानीय लोग इसे गांगटॉक या गंगटोक कहते हैं। तिब्बती और सिक्किमी भाषा में गंग का मतलब होता है पहाड़ और टोक का मतलब होता है चोटी, तो मतलब हुआ पहाड़ी की चोटी। और बस वहीं तो पहुंच गए हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। बेमिसाल ब्यूटी और बादलों की लुका छुपी के चलते इस शहर को बादलों का शहर भी कहा जाता है। और क्या कुछ खास है यहाँ गैंगटॉक में, जानेंगे इस अगले ट्रैक को सुनने के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स

0: पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी नाज के साथ और ट्यून किया है आपने आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम और उसकी राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है गैंगटॉक, जहां की सैर पर हम निकले हैं। साल 1840 में एंचे मठ के निर्माण के बाद गैंगटॉक एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी मशहूर हुआ और फिर साल 1894 में यहां के शासक चोग्याल थोतोब नामग्याल ने इसे सिक्किम की राजधानी बना दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये तिब्बत के ल्हासा और कोलकाता के बीच व्यापार के लिए एक अच्छा और बेहतर पड़ाव बना रहा और फिर साल 1947 में भारत की आजादी के बाद सिक्किम में गैंगटॉक को अपनी राजधानी बनाए रखा और एक स्वतंत्र राजतंत्र बने रहने का विकल्प चुन लिया।

चारों ओर आपको यहाँ घने वन मिलेंगे जिनमें चिनार, बर्च, ओक और एल्म के पेड़ भरपूर दिखाई देंगे। ऑर्किड फूलों की दुर्लभ किस्में आप यहाँ देखेंगे। सूरजमुखी, गेंदा जैसे फूल भी आपको यहाँ हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे, जो दिल खोलकर आपका स्वागत करेंगे।

देखिए, किशोर दा को सुनने के लिए भले ही आप रुक जाएं, लेकिन गैंगटॉक के सफर पर आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यहाँ यानी गैंगटॉक में आपके लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले आप पहुंचिए इस शहर के दिल यानी एमजी रोड यानी महात्मा गांधी रोड, जो कि यहाँ की सबसे साफ सुथरी जगहों में से एक है। यहाँ तक कि वाहनों का आना जाना भी यहाँ मना है। जी हाँ, सनसेट के बाद इस जगह की बात ही निराली है, क्योंकि चढ़ती शाम के साथ यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी जगमगाने लगती है।

और उस रोशनी में यहाँ की साफ सुथरी सड़कें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद आप आइए समरसा गार्डन, जहाँ रंग बिरंगे फूल आपका दिल खुश कर देंगे। बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से आप यहाँ पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखेंगे। एक तरफ विदेशी पौधे तो दूसरी तरफ देसी पौधों की किस्में आपको नजर आएंगी, और जिन्हें सिर्फ देखने भर से ही आपकी सारी थकान उतर जाएगी।

जी हाँ, हैरान हो जाएंगे आप जब गैंगटॉक की सैर पर निकलेंगे और करेंगे यहाँ होने वाली सारी एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, केबल कार की सवारी या फिर हो बात याक सफारी की। गैंगटॉक में सब कुछ है आपके लिए। और इसके लिए आपको पहुंचना होगा कहाँ? नाथुला पास, जो सिक्किम की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। गैंगटॉक से इसकी दूरी 54 से 56 किलोमीटर के आसपास है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 14,140 फीट। मौसम हमेशा ठंडा ही मिलेगा आपको यहाँ पर। गर्मियों में भी 10 डिग्री से नीचे आप यहाँ का तापमान महसूस करेंगे और सर्दियों में -25 डिग्री -25 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ का चला जाता है। मतलब जबरदस्त स्नोफॉल यहाँ पर होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मेन मोटर मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पहुंचने की इजाजत सिर्फ भारतीय नागरिकों को है और जिनके पास भी सिक्किम पर्यटन विभाग और सेना द्वारा जारी खास परमिट जरूर होना चाहिए।

0: गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
6: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
7: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
6: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
7: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां खूबसूरत गैंगटॉक की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, जहां अब मैं आपको लेकर चल रही हूं सेवन सिस्टर वाटरफॉल। उत्तरी सिक्किम के रास्ते पर और गैंगटॉक से करीब 32 किलोमीटर दूर ये एक बेहतरीन पड़ाव है जहां आप रुक सकते हैं और सुकून से भरे कुछ पल बिता सकते हैं। खासियत इस वाटरफॉल की ये है कि यहाँ पानी की एक बड़ी धारा आप देखते हैं जो ऊंचे पहाड़ों से तीन अलग अलग लेवल्स या कहें कि टीयर्स में नीचे गिरती है। दूर से देखेंगे तो ये धाराएं आपको अलग अलग दिखाई देंगी। फोटोग्राफी के लिए जगह परफेक्ट है, बस पानी ज्यादा है तो थोड़ी सावधानी की जरूरत जरूर है।
1: गूंज उठी छम छम छम छम।

साल के आखिर में अगर आप गैंगटॉक आते हैं तो यहाँ की सोंगमो झील आप जरूर आइएगा, क्योंकि उस समय यहाँ का पानी जम जाता है और तब ये जगह एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस में बदल जाती है, जहाँ आप आइस स्केटिंग, फिशिंग और कई एक्टिविटीज कर सकते हैं। गैंगटॉक से इस जगह की दूरी है लगभग 37 किलोमीटर, जो अपने बदलते रंगों और बर्फीले नजारों के लिए मशहूर है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते और खड़ी चट्टानों से होकर गुजरती घुमावदार सड़कें आपको यहां पर मिलेंगी। सिक्किम के लोगों के लिए ये जगह बहुत ही पवित्र है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षु भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए इस झील के पानी के रंग को पढ़ते थे। और फिर आप जरूर जाइएगा रूमटेक, जो कि गैंगटॉक से 23 किलोमीटर दूर है। एक शांत जगह है और यहीं पर आपको रूमटेक मठ भी नजर आएगा, जो कि कारग्यू संप्रदाय के परम पूज्य ग्यालवा करमापा का निवास स्थान भी है। फिर भगवान गणेश को समर्पित गणेश टोक मंदिर भी आप जा सकते हैं और अपने जीवन के रास्तों के सारे विघ्न उनसे दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं।

और अब चलते चलते अगर आप थक गए हैं तो लीजिए थोड़ी सांस और लुत्फ उठाइए गैंगटॉक के लजीज स्वाद का। यहाँ का खान पान आपको बेसिकली नेपाली, तिब्बतियन और भूटिया कल्चर से इंस्पायर महसूस होगा। पहाड़ी इलाका है और ठंड बहुत ज्यादा है, तो लगभग सब कुछ आपको गर्मा गर्म ही परोसा जाएगा। मोमो यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है, जिसे आप गैंगटॉक की लगभग हर स्ट्रीट पर एंजॉय कर सकते हैं। साथ में तिब्बतियन शैली में बना गर्मा गर्म नूडल सूप थुकपा आप यहां एंजॉय करेंगे। शाफाले जो कि एक डीप फ्राइड तिब्बतियन ब्रेड है और जिसे मीट या फिर सब्जियों से स्टफ्ड किया जाता है, उसे भी आप जरूर टेस्ट कीजिएगा। ड्रिंक्स में बाजरे से बनी चांग या थोंगबा और साथ ही तिब्बतियन स्टाइल में बनी चाय जिसे सुजा कहा जाता है और जो सामान्य से बिल्कुल अलग और थोड़ी सी नमकीन होती है, जरूर आप अपने मेन्यू में शामिल कीजिएगा। और साथ में एंजॉय कीजिएगा तस्वीर की प्लेलिस्ट से आज का ये लास्ट सॉन्ग। साथ ही मुझे यानी नाज को दीजिएगा इजाजत फिलहाल आपसे विदा लेने की, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर और नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक G NH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66

हो गई है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: London.
1: हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है और हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। तो आइए कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और सजाते हैं इस महफिल को प्रेरणा, मुस्कान, जानकारी और मधुर गीतों के रंगों से। मैं हूं आपके साथ इस सफर के रेडियो हम सफर सोनाली और आप सुन रहे हैं, जी हां, कार्यक्रम घर आंगन। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे गीत से जो यकीनन आपके मन को छू जाएगा।

फिल्म मिलन में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और देखिए परदेसी तो हम आपको बिल्कुल होने नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, कहाँ जी हाँ घर आंगन में। और आप हमारे साथ जुड़ते कैसे हैं? आप हमारे साथ जुड़ते हैं एक ईमेल के जरिए जो है fmgoalga@gmail.com। तो बस आप हमारे साथ और दूर ना रहिए, अपनी बातें, अपनी सारी जो भी शिकायतें हैं, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी हमारे लिए प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप जाहिर कर सकते हैं अपने ईमेल के माध्यम से। तो इंतजार रहेगा आपकी ईमेल्स का। दोस्तों आज है 17 जून 2026, दिन है बुधवार। तो ये तो हुआ कैलेंडर के हिसाब की तारीख, लेकिन आज हिंदू पंचांग के अनुसार एक ऐसी तिथि है जिस दिन को हम बहुत ज्यादा फख्र से और गर्व से याद करते हैं। दोस्तों इतिहास केवल बीते समय की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, इतिहास हमें यह भी बताता है कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है, अपने बोलियों की रक्षा कैसे करता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी मिसाल छोड़ता है। जी हाँ, भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप ऐसा ही एक नाम है जिनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हिंदू पंचांग की तिथि अनुसार आज शूरवीर महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है और आज उनकी इस जयंती पर राष्ट्र उन्हें शत शत नमन करता है। और उनके लिए कुछ मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। सूर्य झुका झुक गए कलाधर, सूर्य झुका झुक गए कलाधर, झुके गगन के तारे, निखिल विश्व के शीश झुके न झुके प्रताप तुम प्यारे। जी हाँ, हम यहां से महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और आशा करते हैं उनके कार्यों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की मिट्टी ऐसी है जिसने हमेशा बहुत अलग अलग उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। भले ही शूरवीरों की बात हो तो वहां की जो वीरांगनाएं हैं वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी हमेशा अपने जीवन में ऐसे ऐसे अदम्य, ऐसे ऐसे साहसिक और ऐसे ऐसे काम करती हैं जो समाज के लिए एक प्रेरणा और एक उदाहरण बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महिला की जिनके बारे में मैं आपके साथ अब यहाँ पर कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। क्योंकि कहते हैं कि सपनों को उड़ान देने के लिए बड़े साधनों की नहीं, बड़े हौसलों की जरूरत होती है। राजस्थान की जो रुमा देवी हैं, उन्होंने सुई धागे को सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं बनाया बल्कि उसे हजारों ग्रामीण महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की डोर बना दिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले की रुमा देवी का जीवन भी किसी साधारण ग्रामीण महिला की तरह ही शुरू हुआ था। कम उम्र में विवाह हुआ, सीमित शिक्षा और जीवन की कई चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी अपने हुनर का

नहीं छोड़ा। उन्हें कढ़ाई और हस्तशिल्प का काम आता था और यही हुनर आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। रुमा देवी ने अपने हाथों की कला को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी साथ जोड़ा और उन्हें कढ़ाई व हस्तशिल्प के काम से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका ये जो प्रयास है वो एक कारवा बन गया दोस्तों, और जिन महिलाओं की दुनिया कभी घर की चौखट तक सीमित थी ना, वे अपने हुनर के दम पर नई पहचान बनाने लगी। शायद रुमा देवी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिन हाथों से वे रंग बिरंगी कढ़ाई करती हैं, वही हाथ एक दिन हजारों महिलाओं के सपनों में भी रंग भर देंगे। आज उनके साथ जुड़कर राजस्थान की हजारों महिलाएं अपने हुनर को देश और दुनिया तक पहुंचा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि उन महिलाओं के चेहरे की मुस्कान है जिन्होंने अपने हुनर पर भरोसा करना सीखा। रुमा देवी की कहानी दोस्तों हमें ये भरोसा दिलाती है कि बदलाव हमेशा बड़े मंचों से नहीं शुरू होता, कई बार एक सुई, एक धागा और एक महिला, इनका हौसला ही हजारों जिंदगियों में उम्मीद के नए रंग भरने के लिए काफी होता है।

फिल्म गहरी चाल। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। अब देखिए, हम राजस्थान से तो हो आए, और सबसे ज्यादा जरूरी देखिए, हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और आजकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। हम भले एक्सरसाइज करें, और आजकल लेकिन एक

का सबसे ज्यादा चलन है और वो है योग। दोस्तों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं होता, बल्कि जीवन में संतुलन बनाने की एक सुंदर कला है। खासकर महिलाओं के लिए जो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती हैं, योग उनको खुद से जुड़ने का एक सरल और सहज रास्ता बन सकता है। घर हो या ऑफिस, महिलाएं अक्सर परिवार, काम और रिश्तों के बीच अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाती हैं, लेकिन इस भागदौड़ में कई बार वे अपनी जरूरतों और अपने स्वास्थ्य को सबसे आखिर में रख देती हैं। ऐसे में योग हमें याद दिलाता है कि दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए, योग का जो मतलब होता है वो सिर्फ व्यायाम नहीं होता, ये अपने मन को शांत करने, अपनी सांसों पर ध्यान देने और कुछ पल अपने लिए निकालने की एक प्रक्रिया है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में लोग योग को सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली का हिस्सा मान रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है दोस्तों कि नियमित योग और ध्यान तनाव को कम करने, मन को शांत रखने और जीवन में पॉजिटिविटी लाने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकते हैं। शायद योग की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह हमें कुछ देर के लिए रुकना सिखाता है, अपनी सांसों की आवाज सुनना सिखाता है और ये एहसास दिलाता है कि जीवन के व्यस्त राहों में खुद के लिए कुछ पल निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तो जीवन की चुनौतियां भी थोड़ी आसान लगने लगती हैं। और शायद यही योग का सबसे बड़ा संदेश है, खुद से जुड़िए ताकि जीवन से बेहतर जुड़ सकें।

0: छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो पता है बच्चे बहुत खेलते हैं कूदते हैं, हालांकि आजकल थोड़ा सा बच्चे जो मोबाइल हैं लैपटॉप हैं उनसे ज्यादा जुड़ गए हैं, तो हम चाहेंगे वो जुड़े योग के साथ। और योग से जोड़ने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को, वो आज आपको बताएंगी कि बच्चों को कौन कौन से आसन करने चाहिए, कैसे योग से जुड़ना चाहिए। देविका आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
1: हरिओम, मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है। मैं एक योग शिक्षक और एक योग विद्यार्थी हूँ।
0: तो देविका सबसे पहले ये बताएं, आजकल जो बच्चे हैं, देखिए सवेरे उठे, दूर स्कूल है, तैयार हुए, स्कूल चले गए, आए, थोड़ा बहुत कुछ खाया, नहीं खाया, हाथ में लिया कुछ ना कुछ स्क्रीन, या चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो, तो क्या ये लाइफस्टाइल सही है?
1: स्क्रीन टाइम बच्चों का हो, मैं मना नहीं करती कि स्क्रीन टाइम नहीं दे, बच्चों को वो टाइम दे, लेकिन हाँ कि ये माइंड फ्रेश करने से ज्यादा बेटर है आप उनको गेम्स के लिए मोटिवेट कीजिए। पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम जरूर आएंगे। जैसे अभी बच्चों को बहुत कम एज में उनको बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, कुछ बच्चे अस्थमेटिक हो जाते हैं, कुछ बच्चे लथार्जी की वजह से उनका बॉडी वेट बहुत बढ़
0: बहुत
1: जाता
0: बढ़
1: है,
0: जाता है जी।
1: तो उनका मेंटल कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है।
0: तो
1: तो
0: ये सब चीजें ना हो तो क्या दिनचर्या होनी चाहिए बच्चों की?
1: बच्चों की लाइफ में मैं ये नहीं कहूंगी आप स्पोर्ट्स जोड़िए, क्योंकि बच्चे योगा की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उनका यही सोचना है सांस लेना सांस छोड़ना, इट्स टू बोरिंग। तो नो,
0: लेकिन
1: उनको
0: सांस लेने से ही जिंदगी चलती
1: बिल्कुल
0: है।
1: अभी वो इतने नहीं समझदार, तो आप उनको योगा कराएं, आप उनको उनके तरीके से योगा कराएं,
0: किस
1: पर
0: तरीके
1: योगा
0: से योगा
1: कराएं
0: कराए
1: जरूर, इंटरेस्टिंग बनाइए योगा को,
0: जी?
1: स्पोर्ट्स के नजरिए से कराइए, स्कूल में उनको पार्टिसिपेट दिलवाइए योगा कंपटीशन में, ताकि वो कंपटीशंस के लिए सही पर वो योगा करना शुरू करे, उनका इंटरेस्ट बन जाएगा, वो अपने लाइफ में उसको उतार लेंगे, धीरे धीरे वो समझने लगेंगे कि योग क्या है, वो खुद ब खुद लाइफ में उतार लेंगे। बहुत बच्चों का योग में इंटरेस्ट नहीं होता, आप उनको स्पोर्ट्स करवाइए, आप उनको, मैंने देखा है पेरेंट्स को
0: क्रिकेट खिलवाएं, वॉलीबॉल
1: बिल्कुल
0: खिलवाएं, फुटबॉल
1: एक्सेप्ट
0: खिलवाएं,
1: स्कूल, बाहर
0: टेनिस
1: आप उन्हें
0: खिलवाएं जी।
1: बाहर आप उन्हें जैसे ट्यूशंस के लिए ले जा रहे हैं तो 1 घंटा

0: खाने में कुछ चीजें ऐसी दीजिए जो वो खुशी से खाएं, क्योंकि तोरी और टिंडे देख के हमें भी दिक्कत हो ही जाती है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ पार्ट खाने का ऐसा रखिए, अगर पॉसिबल है तो, कि वो खुश होके खाएं, तो वो फोन भूल जाएंगे उसके आगे।
1: मुझे लगता है जो बच्चे सुन रहे हैं वो बड़े खुश होंगे कि मैम कह रही है तोरी टिंडे में उन्हें भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये बता दूं वो खुद तोरी टिंडे अच्छे से खाती हैं।
0: नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि पनीर जो फायदा नहीं दे सकता वो तोरी टिंडे दे सकते हैं, तो वो बहुत जरूरी है खाने
1: जी। और तोरी टिंडे के जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, यानी कि कद्दू और दूसरी सब्जियां, वो भी खानी है, क्योंकि हरी सब्जियां तो हम सब जानते हैं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। बच्चों, इन्हें अपने खाने का हिस्सा जरूर बनाना है। हाँ, तो देविका जी बता रही थी एकाग्रता के लिए।
0: बिल्कुल, बच्चों को अक्सर होता है कि नहीं पालक नहीं खानी।
1: हाँ,
0: पालक जरूर खाएं क्योंकि उसमें आयरन है।
1: पालक पनीर खा लें।
0: हाँ, पालक पनीर खा लीजिए, पालक के पकौड़े खा लीजिए, वो ज्यादा नहीं खाने, थोड़े थोड़े खाने।
1: हाँ, और पालक हम जैसे कई बार हम ये भी करते हैं, पालक उबाल के आटे में गूंद देते हैं, उसके पर आटे बना के
0: किसी भी
1: बच्चे बहुत पसंद करते हैं, पालक पूरी बच्चे खाते हैं।
0: पालक खिलाइए, आंवला आपको बच्चों को किसी भी तरह से खिलाना है, अचार

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए योग, इस विषय पर देविका श्रीवास्तव से रश्मि कुकरेती की बातचीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम घर आंगन में। और देखिए हमारे साथ हमारे कुछ बेहद प्रिय श्रोता जुड़ चुके हैं। खैर हमारे सारे श्रोता बहुत प्रिय हैं हमें और ये हमारे बहुत नियमित श्रोता भी हैं। तो ये हैं हमारे साथ गौरी शंकर जी, नांगलोई से दिखते हैं। सोनाली बेटा राम राम, अभी तक तो बेटा प्रोग्राम में कोई शिकायत नहीं है जो करेंगे। अच्छा, तो आप मेरी उस बारे में बोल रहे हैं जिसमें मैंने कहा था आप अपनी शिकायतें भी हमारे साथ साझा जरूर करें। तो चलिए, जानकर अच्छा लगा कि आपको अभी तक कार्यक्रम से कोई शिकायत नहीं है और आशा करते हैं आगे भी नहीं होगी। और फिर आप आगे लिखते हैं कि प्रोग्राम सुनकर तबीयत खुश हो जाती है, आपकी आवाज भी जानदार है। अरे जी शुक्रिया। और फिर आप लिखते हैं कि योग तो शरीर में अमृत का काम करता है। तो बिल्कुल, और अगर आपने अगर अभी तक योग को अपना जीवन का एक हिस्सा नहीं बनाया है तो आपसे हमारी गुजारिश है उसे अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। फिर इसके बाद हमारे साथ है हमारे एक और नियमित श्रोता सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। और ये भी लिख रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा पाता। धन्यवाद आपके इस विचार के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए भी। फिर हमारे साथ है नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, लिख रहे हैं सोनाली जी नमस्कार। हमारा उनका आज का विचार है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। बिल्कुल, हमेशा अपने आप को एक टाइम टेबल में बांध कर चलिए। कभी भी व्यस्तता अपने जीवन में

रखिए लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। बहुत सही बात आपने की, तो आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों आइए अब आपको लिए चलती हूँ ऊंचे देवदार के पेड़ों के पास, जहां पर पार्वती नदी की कलकल और पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत सा गांव कसोल है ना। यहाँ पर बैठे बैठे मन एकदम खुश हो गया ना, एकदम ठंडक पहुंच गई। तो प्रकृति प्रेमियों और सुकून की तलाश करने वालों के लिए ये जगह ना किसी जन्नत से कम नहीं है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के इस मनमोहक पर्यटन स्थल की सैर पर। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं तो कसोल आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा ये छोटा सा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां पहुंचते ही ना देवदार के ऊंचे पेड़, पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा और पार्वती नदी का मधुर संगीत आपका स्वागत करते हैं, और यही वजह है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। अगर आप भी कसोल घूमने का मन बना रहे हैं ना, तो कुछ बातें आपके काम आ सकती हैं। मसलन कसोल जो है वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। फिर ना सबसे नजदीक इसका जो हवाई अड्डा है वह भुंतर एयरपोर्ट, जो यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और चंडीगढ़ से बस या निजी वाहन द्वारा आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो मार्च से जून, मतलब जून बस खत्म होने वाला है, तो अभी भी आपके पास वक्त है, तो जरूर अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो एक तो मार्च से जून का समय बहुत अच्छा है, और फिर है सितंबर से नवंबर के बीच का समय। फिर यहाँ पर खीर गंगा, तोश और मलाना जैसी लोकप्रिय जगहों की यात्रा भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहीं से शुरू होती है। और अगर आप वहां पर जाए ना तो प्रकृति का सम्मान जरूर करें दोस्तों, प्लास्टिक कचरा ना फैलाएं और पहाड़ों की उस शांति को महसूस करने की कोशिश करें जो अक्सर हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो जाती है, क्योंकि कई जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और कसोल ऐसी ही एक जगह है जहां पहाड़, नदी और खामोशी मिलकर आपको कुछ पल खुद के साथ बिताने का अवसर देते हैं। और जब आप पहाड़ों को देखते हैं और जब पहाड़ों पर मेघ उतरते हैं और जब वो ठंडक आपको देते हैं, तो उसको देखकर ही आप

बेमिसाल फिल्म से आप सुन रहे हैं ये गाना जिसे गाया सुरेश वाडकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अब दोस्तों ये घड़ी जो है ये हमें और अनुमति नहीं देती कि आपके साथ बातों का सिलसिला और जारी रखें, तो बस इस कार्यक्रम से आज मुझे यानी आपके रेडियो हमसफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 1:11 और ठीक 2 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर हाजिर है देविका। हमारे आज के कलाकार बेमिसाल हैं वो जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोत्तम अभिनेता के लिए हासिल किया था। इनका जन्म विगत कल यानी कि 16 जून को गौरांगो चक्रवर्ती के नाम से हुआ था, जिन्हें बाद में हम सब ने मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जाना। और जिस फिल्म के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था वो थी मृणाल सेन की फिल्म मृग्या। उसी वर्ष आपने गौरांग गुहा की फिल्म दो अनजाने में भी काम किया जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और प्रेम चोपड़ा थे। आगाज कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल के गीतों का मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म 1985 की गुलामी के एक मशहूर गीत से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत लिए बोल लिखे गुलजार साहब ने, गाया इस गीत को लता जी और शब्बीर कुमार ने।

जी हाँ, जेहाले मस्की मकुम्बर अंजेश, फिल्म गुलामी का गीत आपने सुना। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप, और बात हो रही है मिथुन चक्रवर्ती की। 1976 की आपकी पहली जो फिल्म थी, उसके बाद मिथुन दा ने बंगाली सिनेमा की तरफ भी रुख किया और अरविंदो मुखोपाध्याय की फिल्म लोदी थेके साबोरे में काम किया, और उसी वर्ष अभिनेत्री रामेश्वरी के साथ हिन्दी फिल्म मेरा रक्षक में भी काम किया। लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं 1980 की फिल्म ख्वाब से गीत, जिसका छायांकन मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता पे हुआ। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन, और गाया इस गीत को मोहम्मद रफी ने।

जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब की दिलकश आवाज़। फिल्म थी ख्वाब, कलाकार बेमिसाल, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 350 फिल्मों में काम किया। इन 350 फिल्मों में हिंदी, बंगला, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती को लोग प्यार से मिथुन दा और महागुरु भी पुकारते हैं। थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसने मिथुन दा को स्टारडम हासिल करवाया। थोड़ी सी देर में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।

0: विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: एक बज के 25 मिनट और ठीक 30 सेकेंड। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और बात मिथुन चक्रवर्ती की। देविका है आपके साथ। 1982 में आई सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर तो सबको याद है, और डिस्को डांसर के माध्यम से पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिथुन चक्रवर्ती लोकप्रिय हो गए और उन्हें स्टारडम हासिल हुआ। यह फिल्म एक सांस्कृतिक घटना बन गई और इसने मिथुन चक्रवर्ती को विश्वव्यापी पहचान दिलाई, विशेष रूप से पूर्व सोवियत संघ में, जहां वो एक आइकन के रूप में स्थापित हो गए। और इस फिल्म का सबसे चर्चित गीत, जी हाँ, हम आपको ना सुनवाए ऐसा हो नहीं सकता, जिसे गाया था विजय बेनेडिक्ट ने और लिखा था इसे अनजान ने, संगीतकार रहे बप्पी लहरी।

0: जी हाँ, मालूम है आप भी झूम रहे हैं जैसे कि मैं स्टूडियो में झूम रही हूँ। बता दूं आपको, कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर देविका है आपके साथ और प्रोग्राम है कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, मिथुन चक्रवर्ती के नाम एक अटूट रिकॉर्ड भी है, जानते हैं क्या? उनके नाम एक रिकॉर्ड है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये रिकॉर्ड दर्ज है। वर्ष 1979 में मिथुन दा की प्रमुख अभिनेता के रूप में एक साथ 19 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें ये एक फिल्म तराना भी शामिल है जिसका गीत अब आप सुनेंगे। शैलेन्द्र सिंह के गाए इस गीत की धुन तैयार की राम लक्ष्मण ने और गीतकार हैं रविन्द्र रॉल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कल अगर बेमिसाल

थुंदा 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेता भी रहे। फिल्म मृग्या और ताहेदर कोथा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं 1981 की फिल्म वारदात से। उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए इस नगमे के रचनाकार हैं रमेश पंत और संगीतकार बप्पी लहरी।

1:44 जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है कलाकार बेमिसाल और गीत आपने उषा मंगेशकर और रवि साहब की आवाज में सुना। बात हो रही है मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती साहब को अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। मिथुनदा राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ एक सफल उद्यमिता भी है। मिथुन चक्रवर्ती मोनार्क ग्रुप के एक सफल संस्थापक हैं जो भारत की हॉस्पिटैलिटी और शिक्षा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कलाकार बेमिसाल का आखिरी गीत हम लेकर आए हैं फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से, जो 1979 में आई थी। इस गीत को गाया है आशा भोसले और बप्पी लहरी ने, और गीतकार हैं इंदिवर।

जी हाँ, आप सबका भी प्यार कभी कम नहीं होगा अपने पसंदीदा चैनल की तरफ। फिलहाल कलाकार विमल साल में आज बस इतना ही। देविका आपसे विदा लेती है इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं आपको बताती जाती हूँ 1:50 की खबरें होंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स

बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ओडीआई भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर एवियों में जारी G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए अपने दौरे के दूसरे दिन आज आला सतह के कई आउटरीच प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अलबत्ता सबकी तवज्जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दो तरफा मुलाकात पर है, जो आज शाम मुनक्किद होगी। फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी में इनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त से अब तक ये इन दोनों रहनुमाओं की पहली बिलमुशाफा मीटिंग है। बातचीत के दौरान उम्मीद है कि दोनों रहनुमा बहुत से शोबों में भारत अमरीका दो तरफा तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों और बाहमी मफाद के कलीदी नौयत के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम एक वर्किंग जलसे में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के मफाद के लिए मुतवाजन, सबकी शमूलियत वाली और पायदार इकतसादी तरक्की को फरोग देना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के अलावा जनाब मोदी एक वर्किंग लंच में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है मस्नूई जहानत से महफूज, तेज रफ्तार और मुअस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाना। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अरकान उनकी आमद के मुंतजर हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई साजो सामान की सालाना तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान अभी तक का 1.78 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस अहम हुसूलयाबी से पिछले साल की 1.54 लाख करोड़ रुपए की पैदावार के मुकाबले 15.6% तरक्की का इजहार होता है। ये तरक्की माली साल 2020-21 से अब तक की 110% है, जब ये तरक्की महज 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई साजो सामान की मकदार में माली साल 2013-14 के मुकाबले तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जो महज 4,746 करोड़ रुपए था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों तक से भारत ने एक वाज़े पैगाम भेजा है कि उसकी खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में इसकी कौमी सलामती के ताने बाने में एक तारीखी तब्दीली आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता के लिए मुल्क के अज़्म से मुल्क की सलाहियतों को इस्तेकाम मिला है। मुजल्ला फौजें जदीद बनी हैं और जमीन, समंदर, फजा, साइबर और खला के शोबों की तैयारियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वजीर दिफा ने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल के सफर से एक मजबूत तर, महफूज तर, खुद कफील और मजीद पुरेतमाद भारत की अक्कासी होती है, जो अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए तैयार है और एक कायदाना आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि पिछली दहाई के दौरान भारत की दिफाई सलाहियतों में खातिर खा इजाफा हुआ है। यह इजाफा खुद किफालत के नजरिए की रहनुमाई में हुआ है, जिसे इख्तिरा, टेक्नोलॉजी और साजो सामान को मुल्क ही में तैयार किए जाने से तकवियत मिली है। जनाब मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माइक ऑफ के जरिए पैगाम भेजते हुए वजाहत की है कि मुल्क ने किस तरह फजा, जमीन और समंदर में अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत किया है, मुल्क ही में तैयार की गई टेक्नोलॉजीज को जदीद तरीन बनाया है और खुद इन्हिसारी और कौमी सलामती के लिए एक मजबूत तर बुनियाद की तामीर की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की तरक्की की एक झलक मिलती है, जो उसने पिछले 12 साल में दिफा के शोबे में हासिल की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
زراعتی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمدات میں اضافے سے متعلق تنظیم کے چیئرپرسن ابھیشیک دیو نے بتایا کہ امریکہ، برازیل، چین اور یورپی یونین جیسے بڑے عالمی برآمدکاروں سے مقابلے کے باوجود بھارت کی زرعی برآمدات آج 5000

0: हजार मसनूआत पर मुश्तमिल हैं जो एक दहाई कबल तकरीबन 280 मसनूआत पर मुश्तमिल थी। जनाब देव ने बताया कि मुल्क की ज़राती बरामदात गुज़श्ता साल 53 अरब डॉलर तक पहुंच गई और भारत ज़राती मसनूआत बरामद करने वाले टॉप 10 मुल्कों में शामिल रहा। नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की 8वीं ब्रिक्स मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत वर्चुअल वसीले से मुनक्किद की गई। नशीली अशिया के कंट्रोल के ब्यूरो एनसीबी ने बताया कि भारत, चीन, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के मंदुबीन ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मंदुबीन ने नशीली अशिया की कौमी सूरतेहाल से मुतालिक रिपोर्ट्स एक दूसरे के सुपुर्द की और नशीली अशिया से लाहिक खतरात पर बातचीत की। जमीन के बंजर होने और खुश्कसाली की रोकथाम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जमीन के बंजर होने की रोकथाम और खुश्कसाली के असरात से निमटने के लिए बैनुलअक्वामी तावुन से मुतालिक बेदारी में इजाफे के मकसद से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है सरसब्ज जंगलाती जमीन, तस्लीम कीजिए, एहतराम कीजिए और बहाली कीजिए। इस मौजू के तहत सरसब्ज जंगलाती जमीन की इकतसादी, माहौलियाती और सकाफती कदर को और ज्यादा तस्लीम किए जाने, इसके रिवायत फवायद की बुनियाद पर इसका एहतराम किए जाने और जो जमीन बंजर हो गई है उसकी बहाली में काफी ज्यादा सरमाया लगाए जाने की बात कही गई है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी से ये याद रखने को कहा है कि जमीन तमाम तर माहौलियाती निजाम की बुनियाद और हमारी गिजा नीज तवानाई का असल वसीला है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: भारत ने मजीद 5 टन जरूरी दवाइयां काबुल को भेजी हैं। वजारत खारिजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इंसानी मदद फराहम करने के तई मुल्क के मुस्तकिल अज़्म की दोबारा तस्दीक होती है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिन के दौरान जनूब मगरबी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। क्रिकेट में लखनऊ में भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैनुलअक्वामी मुकाबले में 6 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल की क्यादत में भारतीय टीम मस्कुरा सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है और आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का इरादा रखती है। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ODI भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमरीका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवलीन, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
4: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन

0: निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है उन्नत किसान। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं गौतम।

0: बिल्कुल, मैं हूँ गौतम और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं,
1: स्वीकार कीजिए और साथ ही साथ
0: बिल्कुल हमेशा की तरह हम लोग प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं आपके साथ और नई नई विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे आप उससे लाभान्वित हों और अपनी खेती में उसका प्रयोग कर आप जो है उन्नत और प्रगतिशील बने।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ ये कार्यक्रम हमारा रहता है फोन इन कार्यक्रम, तो अगर आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहेंगे तो आप हमें डायल कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी विषय पर आपको मिलेगी हमारे एक्सपर्ट से, जिसके लिए आपको डायल करना होगा।
0: बिल्कुल, अगर आप दिल्ली से बाहर हैं और आप दिल्ली से बाहर हैं तो एसटीडी कोड लगाना ना भूलें 011, और हमारा जो लाइन है वो है 2342101। दूसरा भी हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं हमें 2342103 पर कॉल करें हमें। और आज का जो विषय है वो भी हम आपको बता दें, आज का जो विषय है हमारा वो है संरक्षित कृषि में इंजीनियरिंग तकनीकों की भूमिका और अनुप्रयोग। उसके लिए हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ भी आमंत्रित किए हुए हैं। अगर इस विषय से आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करके अपना प्रश्न का जो है जवाब पा सकते हैं।
1: और गौतम, साथ ही साथ ये भी बता दो कि आज हमारे स्टूडियो में कौन मौजूद हैं।
0: हाँ बिल्कुल, अभी मैं वहीं आ रहा था। नीरा बख्शी जी हमारे जो गेस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं आज के, वो हैं डॉक्टर सतीश देवराम लांडे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब एक बार पुनः आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत नमस्कार किसान भाइयों
0: जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है इस विषय को लेके कि अभियांत्रिकी होता क्या है।
1: बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब होता क्या है कि जिस भी विषय पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानने की जिज्ञासा यही रहती है कि आखिर वो है क्या। जैसे आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती की, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि संरक्षित खेती है क्या।
2: देखिए, जैसे हम संरक्षित खेती और दूसरा जो शुरुआत जहां से की अभियांत्रिकी, या दो बहुत इम्पोर्टेंट इस तरीके से हमारे क्षेत्र है। एक तो संरक्षित खेती, उसमें ग्रीन हाउसेस आते हैं, पॉली हाउसेस आते हैं, और जो अभियांत्रिकी है, आज के समय में अगर देखा जाए कृषि का कोई भी कार्य हो उसमें मशीन्स या इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान है।
0: जी,
2: भारत जैसे बहुत अच्छा मशीनीकरण है हमारे देश में, काफी बड़े लेवल पे ट्रैक्टर का उत्पादन होता है, काफी मशीनें बनाई जाती है, कृषि यंत्र बनाए जाते हैं, विभिन्न कार्य किए जाते हैं, और इन सब कार्य में जैसे टिलेज से लेके, जुताई से लेके, कटाई से लेके, स्प्रे से लेके, अब ये सब कार्य हमें संरक्षित खेती में भी काफी कार्य मशीनों से किए जाने पड़ते हैं। तो इन सब कार्यों का एक जो विषय है उसमें हमारा एक कृषि अभियांत्रिकी आता है, और इनमें कुछ उन्नत तकनीकें हमने बनाई है जिनसे जो कृषि के कार्य है, और साथ साथ में जो हम आज का जो हमारा विषय है संरक्षित खेती में जो विभिन्न कार्य है उसमें मशीन्स कैसे इस्तेमाल की जा सकती है और कैसे हम कम से कम लोगों का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा फायदा उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही कहा आपने कि क्योंकि अभियांत्रिकी के बिना जो है उन्नतशील खेती नहीं की जा सकती। आप अगर पारंपरिक खेती पे जाएंगे तो आपका जो है उत्पादन
2: स्मार्ट खेती की जैसे हम
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: स्मार्ट कैसे खेती
0: तो
2: कैसे करें।
0: एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जैसे विभिन्न कार्य हमारी खेती में होते हैं तो मशीनरी का क्या योगदान है, कैसे प्रयोग करें किसान भाई।
2: देखिए, शुरुआत जहां से हम कर रहे थे कि संरक्षित खेती एक आधुनिक तकनीक है, और जब हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं तो ठीक है कि कुछ बहुत सारा हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है और अच्छे से हमें ग्रीन हाउस वगैरह बनाने पड़ते हैं।
0: जी जी।
2: लेकिन इसके अंतर्गत जो भी कार्य है, जैसे हम शुरुआत जहां से करें कि जो मिट्टी है या भूमि है उसको कैसे तैयार किया जाए, उसमें जो क्यारिया है वो कैसे बनाई जाए, उसमें मशीनें कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ में जो हमने पौध लगानी है या हमें अगर नर्सरी बनानी है तो जो ट्रेज भरने हैं, ट्रेज में जो छोटे छोटे हमारे बीज है जिसे हम सब्जी के बीज समझिए या हमारे जो फूलों के बीज समझिए, ये बहुत छोटे बीज होते हैं।
0: बिल्कुल,
2: इनमें हाथ से लगाना या जो हमारे कृषि में जो महिलाएं हैं या पुरुष है इनका इस्तेमाल करके एक एक बीज को एक एक सेल में डालना बहुत कठिन होता है और बहुत ज्यादा श्रम लगता है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बहुत सटीक तरीके से एक सेल में एक बीज लगा सके, या हमें जहां पौध लगानी है तो किस तरीके से हम पौध लगा सके, या अगर हमें जैसे हम ग्रीन हाउस में कोई जो पौध

0: जो कल्टीवेशन ले रहे हैं
1: जी
0: उनमें पौधों को कैसे हम देखें और कैसे उनमें कीट प्रबंधन कर सके या कुछ और रोग प्रबंधन कर सके, तो ये सब चीजों में, या जैसे हमें कुछ कटिंग्स करनी है, प्रूनिंग करनी है, तो कैसे, कौन सी ऐसी मशीनें हैं या कौन से ऐसे टूल्स हैं, इन सब के बारे में हम आज जानकारी लेंगे।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहां से बात करें और क्या सवाल है इनका।
1: हेलो
3: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना नाम बताएं। हेलो
3: हेलो
1: सर, आवाज आ रही है आप तक?
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताएं?
3: मेरा नाम राजेंद्र जाटव है, मैं मोदी नगर से बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, सवाल पूछ सकते हैं।
3: देखिए, मेरा किसानों को कहना है कि भाई देसी खाद लगाएं, जैसे कूड़ी के खाद होते थे
1: जी,
3: तो उनसे भाई फसल को भी, और मेरी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है।
1: नमस्कार,
3: तो मेरा तो ये मानना है जी।
1: जी जी राजेंद्र जी,
2: राजेंद्र जी आप कॉल करते समय फोन जो है, टेलीफोन अपना वो दूर रखेंगे रेडियो सेट से, ताकि आपकी आवाज जो है वो क्लियर आ सके। जी धन्यवाद
3: धन्यवाद।
0: जैसे कि आपने कहा राजेंद्र जी के देसी खाद का उपयोग करना चाहिए, हम बिल्कुल सहमत है इस बात से कि आज के दिन में प्राकृतिक खेती करनी है या ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है, तो अगर हमें हमारे मृदा की क्षमता बढ़ानी है तो इन चीजों का इस्तेमाल करना और अच्छे से अच्छा अपने मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो हमें सही में किसान भाइयों, इनका इस्तेमाल करिए और अच्छे से अच्छा फायदा उठाइए।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि विभिन्न मशीनें जो हैं हम खेती में, कृषि में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन से यंत्र हैं जिन्हें इस्तेमाल करके उन्नत कृषि की ओर बढ़ा जा सकता है।
0: शुरुआत से हम अगर बात करें संरक्षित खेती में, जैसे मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार के इसमें जैसे ग्रीन हाउस हुआ या पॉली हाउस हुआ, इनमें शुरुआत जहां से होती है मिट्टी की तैयारी या भूमि की तैयारी से होती है। तो हमें इसमें जो मिट्टी है उसे भुरभुरा बनाना पड़ता है, क्यारियां बनानी पड़ती है, बेड्स बनाने पड़ते हैं, अब क्यारियां पानी निकालने के लिए भी बहुत जरूरी होती है। तो इनमें मिट्टी को तैयार करने के लिए जैसे कुछ मशीनें हैं, पावर टीलर्स होते हैं
2: जी,
0: या आजकल रोटरी टीलर्स आ रहे हैं, इन इन मशीनों का इस्तेमाल करके हम मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से, एक तरीके से उसमें एरिएशन दे सकते हैं, भुरभुरा कर सकते हैं, और साथ साथ में जब हमें बेड बनाना है या हमें जिस भी तरीके, जैसे अगर टमाटर की पौध लगानी है या और भी जैसे हमारे फूलों के वो करने हैं, मेड बनानी है, तो इनमें बेड मेकर्स भी आते हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल करके हम भूमि को या हमारे जो बेड्स है या मेड है उनको हम बना सकते हैं। दूसरा जो कार्य है उसमें, अगर हमें बीज लगाने हैं तो बीज लगाने के लिए कुछ सीडर्स होते हैं और ये बीज बहुत छोटे आकार के होते हैं, तो इसमें एक न्यूमेटिक टाइप का मतलब वायीय तरीका होता है जिसमें बीजों को बिल्कुल सक्शन करके पकड़ा जाता है, नोजल्स होते हैं, एक काफी आधुनिक मशीन आज के डेट में उपलब्ध है, वो उसमें छोटे छोटे बीजों को पकड़ा जाता है और सक्शन के द्वारा, और जहां हमें उसे रखना है उस ट्रे को उस मशीन के नीचे में बेल्ट के ऊपर भेजा जाता है, तो बिल्कुल अपने जितने लाइंस बनी होती है उनमें एक एक बीज को पकड़ के एक एक बीज को डाला जाता है
1: जी।
0: तो ये दूसरा है, और जो तीसरा कार्य है कि पौधों का कैसे, विभिन्न रोगों का कैसे प्रबंधन करें, तो उसके लिए काफी स्प्रेयर्स आते हैं, उन स्प्रेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज के दिन में हम लोग हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, जो जहां हमारा कृषि अभियांत्रिकी की संभाग है, हम लोग कुछ आधुनिक तकनीकें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे प्रचलित तरीका है कि कौन से ऐसे हैंड टूल्स है
2: जी,
0: उनका भी हमें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है या कुछ कटाई करनी, इन सब चीजों के लिए भी हैंड टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ में मिट्टी में भी अगर हमें कुछ छोटे छोटे खरपतवार है या मिट्टी को ढीला करना है, तो कुछ खुरपी वगैरह टाइप के भी नई नई चीजें आई है मार्केट में, और इनको भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम आज देख सकते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण का, तो ये इसमें जैसे ड्रिप सिंचाई की बात

0: एक बहुत जरूरी चीज होती है जो हम ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं, और उनको जब हम इस तरीके से नियंत्रण करते हैं तो पौधों को जितना हम पोषण दे रहे हैं वो पोषण पोषक तत्व उनको मिल जाते हैं, और बड़े अच्छी तरीके से हमें उत्पादन उनसे मिल सकता है। और
1: जी
0: साथ साथ में इनमें अगर कुछ किसान भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे यहाँ जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आके कुछ ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम देते हैं, और उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं किस किस तरीके की सब्जियां उगा सकते हैं, कौन से फूल का उत्पादन आप ले सकते हैं, और बड़े अच्छी तरीके से आधुनिक तरीके से आप कृषि की एक तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करके, और साथ साथ में सोलर का, जैसे
1: जी
0: सौर ऊर्जा का बात
1: जी
0: करें तो ये बहुत आज के समय में हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें कम हो रही है, तो हमें हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना है, तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम काफी, क्योंकि इस ये जो पूरे साल भर बेमौसमी सब्जियां लेना या बेमौसमी हमें फल लेना अगर करना है तो ग्रीन हाउस ही काम आता है, तो इनमें ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है, और
1: जी
0: ये ऊर्जा को हम अगर हम बाकी चीजों में डिपेंडेंट निर्भर रहेंगे तो हमारा मतलब उसमें फायदा नहीं है, तो हम सौर ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आर्द्रता लगाना है, आर्द्रता जो होती है जैसे ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना हुआ, तापमान को मेंटेन करना हुआ, क्योंकि वहाँ फैंस लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, इन सब से बिल्कुल इन सबको चलाने के लिए ऊर्जा की ही जरूरत होती है, तो वो ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो आप इलेक्ट्रिक जो है उसको आप सौर ऊर्जा से अगर आप कर सकते हैं तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं,
1: जी
0: तो इसलिए उसका भी बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी डॉक्टर साहब, आज हम आधुनिक दौर की बात कर रहे हैं, तकनीकों की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम मृदा स्वास्थ्य और संरक्षण की बात करते हैं तो ये कैसे उपयोगी है?
0: देखिए मृदा स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी हो चुका है,
1: जी
0: और मृदा स्वास्थ्य में अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर उसमें पोषक तत्व देते हैं तो हमारा जो उत्पादन है या हमारे पौधों की जो एक तरीके से जो बढ़ने की क्षमता है या उनमें से उत्पादन मिलने की क्षमता है वो अच्छी तरीके से बढ़ सकती है, और कम से कम लागत उसमें आती है, और बहुत कम लेबर या बहुत कम आदमियों की जरूरत पड़ती है, और हम अच्छी तरीके से काम ले सकते हैं उसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मशीनें आती हैं, तो वहीं पे कृषि इंजीनियरिंग की बात करें तो कैसे अलग है?
0: हाँ, कृषि इंजीनियरिंग में शुरुआत में जैसे मैंने कुछ मशीनों के बारे में कहा
1: जी
0: कि पावर टीलर हुआ,
1: बिल्कुल
0: एक छोटी एक तरीके से पेट्रोल वाले मशीन से, पेट्रोल से चलने वाली मशीन से, लेकिन आज के समय में हमें कुछ मशीनें बैटरी ऑपरेटेड भी अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करते तो वो थोड़ा आसान हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: वो इसलिए कि जब ये पेट्रोल जलाते हैं तो क्योंकि ये हमारी एक संरक्षित खेती है, एक हमारा जो अंदर की हवा है वो प्रदूषित ना हो, तो इस तरीके के मशीनों को हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम बैटरी ऑपरेटेड मशीनें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक तो ये हुआ,
1: जी
0: दूसरा कुछ छोटे छोटे टीलर्स आए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आज के समय में कुछ प्रूनर्स मिलते हैं मार्केट में, हस्तचलित भी प्रूनर्स है, आप कटाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में बैटरी ऑपरेटेड भी कुछ चीजें मिल रही है, तो इनका
1: बिल्कुल
0: इस्तेमाल भी करके चार्ज करिए, और बड़े आसानी तरीके से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बड़े आसानी से आप कटिंग वगैरह करके बिना प्रदूषित, क्योंकि जो हवा है अंदर की उसी के ऊपर पूरा निर्भर करता है पौधा, तो उसको हम प्रदूषण से रोके और ग्रीन एनर्जी का एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते
1: जी डॉक्टर साहब, अगर यहीं हम बात करें कृषि इंजीनियरिंग के प्रकारों की, तो क्या इसके
0: हैं।
1: कुछ टाइप्स भी हैं?
0: देखिए एक तरीके से जो हम पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं जिसमें
1: जी
0: मैंने जैसे कुछ मशीनें अभी बताई, एक एक पारंपरिक तरीका है कि इसमें जैसे बात करते हैं कि कुछ हैंड टूल्स है जैसे, या कोई आदमी से चलने वाला जैसे फावड़ा हुआ, खुरपी हुआ, या कोई दांती हुई, कुदाल हुए, इन सब का इस्तेमाल तो किया ही जाता है एक तरीके से, ये कन्वेंशनल तरीका है या पुराने तरीके से हम करते हैं, कुछ कैचिया होती है, टीलर्स होते हैं, कुछ वीडर्स भी मिलते हैं, इन सबका तरीका

0: इस्तेमाल कर सकते, लेकिन साथ साथ में एक आज के समय में आधुनिक तरीके भी आना शुरू हुआ है। इसके ऊपर हमारा जैसे जो रिसर्च का काम है उसमें भी काफी बड़ा अनुसंधान हो रहा है। आज का जो आज कल किसान भाई भी जानते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उनमें पौधों को समझ के, मिट्टी को समझ के, पानी की जरूरत को समझ के पौधों को बहुत अच्छी तरीके से संभाला जाता है और जरूरत के अनुसार उसे चीजों को दिया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से पौधों को बढ़ाया जाता है, उनसे उत्पादन लिया जाता है। तो और इसमें मशीनों का, कृषि अभियांत्रिकी का बहुत बड़ा एक तरीके से जरूरत महसूस की जा रही है और इसके ऊपर काफी बड़ी तरीके से काम आगे बढ़ रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, जानकारी तो हम देते रहेंगे किसान भाइयों को, लेकिन बीच में अगर मनोरंजन का तड़का थोड़ा सा लग जाए तो लोग रिफ्रेश हो जाते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत, और वापस हम नीरा जी वापस अपने विषय पर आ जाते हैं जो कि आज का विषय है हमारा, संरचित कृषि में इंजीनियरिंग तकनीकों की भूमिका और अनुप्रयोग। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो डॉक्टर साहब सबसे जो वापस लौटने के बाद पहला सवाल हमारा ये होगा कि तकनीकें जो है उपयोग कैसे करें किसान भाई, प्रशिक्षण कहाँ से लें, क्या प्रक्रिया है?
1: एक तो हमारा जो संस्थान है यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारे विभिन्न संभाग है और ग्रीन हाउस के ऊपर या पॉली हाउस में जो भी किसान एक तरीके से उत्पादन लेना चाहते हैं, संरक्षित खेती में कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण किया दिया जाता है। और साथ साथ में उनमें कुछ आधुनिक तकनीकें अगर इस्तेमाल करने चाहते हैं या कुछ मशीन्स के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो हमारा कृषि अभियांत्रिकी संभाग है, यहाँ आके आप मिल सकते हैं। नहीं तो आप आपके आसपास में जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उनके पास जाइएगा, उनके यहाँ भी साल भर में प्रोग्राम्स डिसाइड होते हैं कि कौन से समय पे हम संरक्षित खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षित किया जा सके और उनको उसके बारे में जानकारी दी जा सके।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज और जो सवाल आ रहा है मेरे जहन में, जैसे मशीनों की बात कर रहे हैं हम लोग, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरे जहन में आ रहा है ड्रोन। तो ड्रोन थोड़ा महंगा मतलब सामान इक्विपमेंट है बोल सकते हैं, तो कहाँ से खरीदें, अधिकृत

0: कोई केंद्र आप सुझाव दे सकते हैं तो?
1: देखिए, एक बहुत आधुनिक मशीन है
0: जी
1: और खास करके इसको हम छिड़काव के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे जो भारत सरकार है और हमारा संस्थान भी इसके ऊपर काफी काम कर रहा है।
0: बिल्कुल
1: तो ड्रोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल हमें करना चाहिए।
2: जी
1: शुरुआत में लगता है कि एक महंगी मशीन है,
0: जी
1: लेकिन आज के समय में कस्टमाइजिंग बेसिस पे, मतलब एक घंटे के हिसाब से, या आपको अगर कितना एरिया आपको छिड़काव करना है, किस किस क्रॉप में उसको छिड़काव करना है, इसके दर फिक्स की गई है। इसकी एक प्रणाली, जो एक तरीके से प्रोसेस है, ये सबको पता है
0: जी
1: और हम लोग भी इसके बारे में काफी जगह पे मतलब प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं, किसानों को अवगत कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ये हानिकारक रासायनिक जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स का छिड़काव अगर आप किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो उसका हमारे या जो किसान इसको इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ उसका एक तरीके से उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है, दुष्परिणाम होता है। तो ड्रोन का इस्तेमाल करने से हम उससे बच जाते हैं और बड़े आसानी से और कम समय में, कम लागत में इसे हम पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। और नजदीकी आप बहुत सारे ड्रोन्स, आजकल ड्रोन दीदी प्रोग्राम जो है, हमारी महिलाएं जो है वो ड्रोन्स को ऑपरेट करती है, उनको रिपेयर भी करती है, और जो ये छिड़काव करना है या और भी कोई कार्य करना है तो
2: जी
1: उसका उनके पास जाके, उनको आप अगर उससे जानकारी चाहते हैं तो जानकारी लेके छिड़काव वगैरह कार्य कर सकते हैं।
2: जी
0: बिल्कुल
2: डॉक्टर साहब, जब भी हम मैनुअल से मशीनरी की ओर मुड़ते हैं तो सबसे पहले जो जहन में आता है या जो चीज अट्रैक्ट करती है वो है लाभ, कि उससे हमें फायदा क्या होगा। तो फायदा आते ही, लाभ समझ में आते ही अपने आप हम मैनुअल से मशीनरी की ओर मुड़ते हैं, जैसे आपने अभी ड्रोन के फायदे बताए। इस तरह से अगर हम और कृषि इंजीनियरिंग के फायदों की बात करें तो क्या क्या है?
1: देखिए, जैसे हम आज के समय में 47% ही मशीनीकरण है और बहुत बड़ा भारत में मशीनीकरण है और काफी मशीनों की जरूरत भी है किसानों के लिए, और संरक्षित खेती में भी काफी मशीनों की जरूरत है। तो जो कृषि में लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर की निर्भरता कम करने के लिए और काम बहुत आसानी से करने के लिए कृषि यंत्रों को इस्तेमाल करना ही पड़ता है, और सही समय पे हमें एक तरीके से काम करना है, कम लागत में काम करना है तो हमें कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज और मेरा प्रश्न ये है किसान भाइयों की तरफ से, कि हम लोग मशीनरी की बात कर रहे हैं, मशीन खरीदने की बात कर रहे हैं या किराए पे लेके किसान भाई इस्तेमाल करेंगे, तो कई बार किसानों को ये लगता है कि महंगी पड़ जाएगी, मतलब जो लागत है हमारा वो ज्यादा हो जाएगा, मुनाफा कम हो जाएगा, तो इसके लिए किसानों को क्या आप कहना चाहेंगे?
1: देखिए, अभी अगर आप एक तरीके से बात करेंगे तो हर किसी किसान को सभी मशीन्स खरीदने की जरूरत नहीं है।
0: जी
1: कुछ किसान के जैसे गुट बना के, चार पांच किसान मिलके, या गांव में अगर आप एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से अगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एक सेट ऑफ मशीन्स आप खरीद सकते हैं और सभी कार्य बहुत आसानी से सभी समय पर कर सकते हैं। तो इसलिए कस्टमाइजिंग का वो है, मशीनों की कीमत बहुत ज्यादा होती है
0: जी
1: और साल भर में अगर हमें उस मशीन का अगर इस्तेमाल देखे किसी एक किसान के पास तो बहुत कम होता है,
0: बिल्कुल
1: और मशीन जो एक तरीके से हम बनाते हैं तो 10 साल तक मशीन चलनी चाहिए और सालाना उसकी एक घंटे होते हैं, उतने घंटे उसके पूरे होने चाहिए,
0: बिल्कुल
1: 200 घंटे पूरे होने चाहिए, 400 घंटे पूरे होने चाहिए, लेकिन किसान जो है इतना नहीं इस्तेमाल करता, छह
0: खासतौर पे
1: घंटे
0: छोटे
1: दस
0: हो,
1: घंटे
0: बिल्कुल
1: तो उसको एक तरीके से वो लॉस में जाता है अगर आप ज्यादातर मशीनें खुद खरीदने की
2: खरीदते
1: कोशिश
2: हैं
1: करें। तो
2: जी
1: इसलिए हमें किराए पे लेना एक बड़ा अच्छा, और भारत सरकार जैसे कस्टमाइजिंग सेंटर्स
2: जी
1: ओपन किए हैं, तो जब जरूरत है तब आप उसको एक तरीके से बताइए और उसका फायदा लीजिए। अन्यथा अगर आपको मशीन की सही में, कभी कभी मशीन मिलती भी नहीं है, तो आपको फिर एक तरीके से समूह बना के अगर आप मशीन खरीदते हैं तो आप पूरे जो समूह के किसान है उस मशीन का इस्तेमाल करके एक तरीके से लागत या उसकी कीमत जो है उसको एक तरीके से उससे फायदा उठा सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा आप जमीन को तैयार कर सकते हैं, पौधों की कटाई कर फसलों की कटाई कर सकते हैं और लागत में कमी आ सकती है।
2: जी डॉक्टर साहब, आधुनिक तकनीकी की बात हो रही है तो आने वाले समय में क्या क्या बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे?
1: देखिए, जैसे हम बीच में बात किए कि ड्रोन की बात की,
2: जी
1: तो छिड़का

0: फॉलो करना एक बहुत वो है, हमारे जो किसान खेत में काम कर रहे उनको बचाना इन सब केमिकल्स के दुष्प्रभाव से। तो आने वाले समय में हमें मिट्टी को ध्यान में रखते हुए या उसमें नमी को ध्यान में रखते हुए पौधों को पानी देना, या जैसे मैं बात करूंगा कि रोग नियंत्रण, अगर हमें जिस पौधों में रोग है उसी
1: जी
0: को अगर हमें अगर हम उसे पहचान पाते हैं, तो आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर काफी काम हो रहा है, और हमारे यहाँ संभाग में भी काफी इस तरीके से रोबोट्स के ऊपर काम करने की हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जिससे पौधों को समझा जाए, जहां जरूरत है वहीं पे छिड़काव किया जाए, जहां पे खरपतवार है उसको ही निकाला जाए। तो इस तरीके से आधुनिक तरीके से हम खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, और आने
1: जी
0: वाले समय में हम इस तरीके की तकनीक बना लेंगे और काफी अच्छी तरीके से एक खेती को स्मार्ट खेती के रूप में, जहाँ श्रम कम लगे और जहाँ इस तरीके के दुष्परिणाम जो बात किया मैंने कि हमारे यहाँ पे जैसे एक रोबोटिक एप्लीकेटर बना है, पेस्टिसाइड एप्लीकेटर बना है, वो हम ग्रीन हाउस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिमोटली कंट्रोल व्हीकल है कि आपको उसका लगभग 100 मीटर से ज्यादा दूर रह के भी आप बड़े आसानी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका दुष्परिणाम होगा नहीं। जहां जरूरत है, जहां जहां पौधों का पत्ता है, जहां
1: जी
0: पे कीट का प्रभाव है या रोग का प्रभाव है, वहीं पे छिड़काव कर सकते हैं। या अगर खरपतवार नियंत्रण करना है, जहां पे खरपतवार है वहीं पे ही हमें अगर छिड़काव करना है, तो हमारी आने वाले समय में मशीनें होगी, उसको देखते हुए हम उसका नियंत्रण आराम से कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, आप इस स्टूडियो में आए और आपने इतनी विस्तार से अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी दी, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान भाई, जो हमारे श्रोता हैं, जो सुन रहे थे, वो बहुत ही लाभान्वित होंगे और अपने खेती में अपनी उन्नत, मतलब जो उन्नत कृषि है या फिर कृषि यांत्रिकी का प्रयोग करेंगे और अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे और अपनी आमदनी को भी बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप उसे किराए पर लेकर के एक तरह से वो ट्रायल बेसिस पे आप उसे लेते हैं, और या फिर 4-5-6 किसान जो हैं वो, या एक समूह बना करके आप कुछ मशीनरी अगर खरीदते हैं तो उसका लाभ भी ले सकते हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: और इसी के साथ अब कार्यक्रम समापन की ओर चल पड़ा है और समय हो गया है
2: बिल्कुल
1: इजाजत लेने का।
2: बिल्कुल, कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमरीका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22 ओवर में 2 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका लेकर कार्यक्रम मन भावन, जहां आपके मनपसंद गीत हम सुनाते हैं आपको और आप हमें भेजते हैं प्यार भरे मैसेजेस। जैसा कि मैं देख सकती हूं कि कई श्रोताओं ने तो ऑलरेडी हमें बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए हैं और जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप अपना फेवरेट गाना, मनपसंद गाना सुनना चाहते हैं तो आपको बस करना इतना है कि व्हाट्सएप पर जाइए और अपना नाम और जिस फिल्म से आप जो गाना सुनना चाहते हैं वो हमें टाइप करके भेज दीजिए। नंबर है 9868868753। मैं दोहरा देती हूँ, 9868868753। और गाना शुरू करने से पहले मैं कुछ श्रोताओं के मैसेजेस भी पढ़ लेती हूँ। तो हमें जलालाबाद वेस्ट से लिखा है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा ने ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अभी हमें मैसेज आया है ऋतु बत्रा, जुगल बत्रा, हर्षिता बत्रा और क्रिश दिल्ली के गोपाल पार्क से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये हमें भेजा है बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा ने ये हमें भेजते हैं पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और कई दूर दूर से हमें जो है मैसेज आ रहे हैं, आपके प्यार जो है भेज रहे हैं आप हमें इन मैसेजेस के द्वारा। गांव फरा से, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ये हमें मैसेज भेज रहे हैं और ये मैं बता दूं कि मैसेज नहीं, ये आपका प्यार है। सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायार, प्रथमेश देशमुख, सर्वे देशमुख, प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख, इन्होंने हमें मैसेज भेजा है जाफराबाद से। और देखिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अभी आप सभी के मैसेजेस जो है वो शामिल करूं और आपके जो गाने हैं जो आप हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फरमाइश भेज रहे हैं, उसको मैं जरूर जो है कार्यक्रम में शामिल करूं। पर पहला गाना मेरी पसंद का आपके लिए पेश है लता जी की आवाज में और आप अपना प्यार भरा मैसेज हमें भेजते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

तो ये प्यार भरा गीत आपके लिए मेरी तरफ से आपको, और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे श्रोता हमें कई सारे मैसेज भेज रहे हैं, जिनमें से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबर राही, महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने जो है अपना प्यार भेजा है। अगला जो मैसेज है ये आया है हमें लता और नितेन मुकेश का, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। और ये है जी, हेलो, मैं रितु बाथरा दिल्ली के गोपाल पार्क से। जी मैंने आपका मैसेज पहले भी शामिल किया था। अगला जो मैसेज है ये हमें लिखा है राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार ख्याला, विष्णु गार्डन से ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज आया है हमें ये आया है जी उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी, इन्होंने हमें अपना प्यार भेजा है। और अगला जो मैसेज है ये है कुमकुम गुड़िया, विजय सुरलकर, रतन माला, मोताला, महाराष्ट्र से हमें मैसेज किया है इन्होंने। मेरठ से हमें लिखते हैं ये इनका नाम है कहाँ, कृपया हमारी प्लेलिस्ट में से एक गाना या कोई सदाबहार गाना जरूर सुनवाएं। जी हाँ, बस मुझे आपका नाम मिल जाए। मिल गया। दिग्दर्शन कविता, अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई, आपके इस प्यार के लिए बेहद धन्यवाद। और अगला जो मैसेज आया है ये हमें हिमाचल से आया है, हर्ष, विनय, विनीत और राजेश भाई, चंडीगढ़ सिटी से शिफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा, इन्होंने हमें अपना प्यार भेजा है। और अगला जो मैसेज है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, इन्होंने जो है हमें मैसेज भेजा है। मोहम्मद अफरोज, ये हमें बिहार से अपना प्यार भेज रहे हैं मैसेजेस के थ्रू। और ये मोरटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, ये हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। अगला जो हमें मैसेज आया है ये है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान का, ऊपरकोट बुंदेल शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। राजेश कुमार चौहान जालंधर से हमें जो है अपना प्यार भेज रहे हैं। अगला जो मैसेज है ये आया है हमें राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, और गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये है संजय पाटिल, उषा पाटिल, निवृत्ति क्षीर सागर, संजय चौहान, नसवाला चौक मिल्कापुर से। और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूं ये इसकी फरमाइश की थी दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने छत्तीसगढ़ से, और ये जो फिल्म है वो है खिलौना और गीत गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और आप अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि तभी तो मैं आपकी फरमाइश पूरी कर पाऊंगी और आपका प्यार हम तक पहुंचता रहेगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कार्यक्रम चल रहा है मन भावन, जहां हम सुनाते हैं आपको आपके पसंदीदा गीत और आप हम तक पहुंचा रहे हैं आपके प्यार भरे मैसेजेस। और जी हां, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप सभी के मैसेजेस को मैं शामिल करूं, पर आप ये भी समझिए कि हमारे पास वक्त की जो है थोड़ी सी पाबंदी है। तो अगर मैं किसी का मैसेज नहीं शामिल कर पा रही हूं या आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर पा रही हूं, तो मैं आपसे बहुत बहुत जो है माफी चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी कि अगली बार जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका गीत सुना दूं या आपके मैसेज को शामिल करूं। तो चलिए हम जो है मैसेजेस का ये सिलसिला जारी रखते हैं। हमें जो मैसेज किया है अभी रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिर नूर, ये हमें लिखते हैं उत्तराखंड से। अभी हमें मैसेज आया है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। अगला जो मैसेज पढ़ रही हूं मैं, ये है हमें भेजा विजय मोहिबिया, कविता मोहिबिया, सोनू मोनू और पेंटर बाबू, ये हमें लिखते हैं शिवपुरम कॉलोनी से। अगला जो हमें प्यार भरा मैसेज आया है ये है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है वो है मोनू पराशर अलीपुर दिल्ली से, और व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला जो मैसेज पढ़ने जा रही हूं मैं ये है उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार ख्याला से, इन्होंने हमें मैसेज किया है। और संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं और अपना प्यार भरा नमस्कार भी। आप सभी को मेरा भी प्यार, आप तक मैं पहुंचा रही हूं गानों के थ्रू, और हां आपको बता भी रही हूं कि कितना जरूरी है ये मिलन हमारा, कितना ज्यादा जो है अच्छा लगता है जब आप लोग हमें अपने प्यार भरे मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं ना, तो मैं उस खुशी को जाहिर नहीं कर पाती हूं। अगला जो मैसेज है वो है सोंगा मगर लॉर्ड छत्तीसगढ़ से, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, ये हमें भेज रहे हैं मैसेज। और अगला जो मैसेज आया है हमें ये आया है राम शरवण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ये हमें बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं। अगला जो हमें मैसेज आया है ये है पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का, और उत्तम नगर भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। मौताला महाराष्ट्र से हमें मैसेज आया है विजय सुरलकर, रत्नामाला, आरती सुरलकर का, और दिल्ली के उत्तम नगर से आनंद जो है वो भी हमें सुन रहे हैं। और अगला जो मैसेज आया है वो है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से। और अगला मैसेज जो है हमें वो आया है प्यार भरा आदाब, आपको भी प्यार भरा आदाब, और ये भेजा है हमें शेख मूसा मोहसिन ने, आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो गीत है ये है मैं आपको सुनाने जा रही हूं दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से, और इसकी फरमाइश की थी किशन वंजनी नीलम स्वाति किशु रेलवे कॉलोनी से। तो चलिए सुनते हैं ये प्यार भरा गीत लता जी की आवाज में।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका, लेकर कार्यक्रम मन भावन। और आपके प्यार भरे मैसेजेस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमें अगला मैसेज भेजा है पूरी खान फैमिली और अब्बासी फैमिली, ये हमें सुन रहे हैं। ये जब पूरी फैमिली बैठकर हमें सुनती है ना, तो हमें लगता है हम भी आपकी फैमिली का ही हिस्सा हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? और अगला मैसेज हमें आया है जिला खरगोन सनादेव मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजा, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, ये हमें जो है मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है हमें मोहम्मद यूनस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, मोहम्मद अयूब मुलाजी, छिपा कॉलोनी खंडवा से। और अगला जो मैसेज है ये हमें उत्तम नगर दिल्ली, जॉन सीना, बी आर टेलर, सुमन सरिता, इन्होंने अपना मैसेज भेजा है। और ये हमें मैसेज आया है पता नहीं इनका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है, पर इन्होंने कहा है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। अगला जो हमें मैसेज आया है सतीश अनेजा बिमला अनेजा चंडीगढ़ से। और हमें अगला मैसेज भेजा है सरोज बंसल, अनूप कौर गुरुग्राम से, ये हमें लिखते हैं। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, माधुरी किरण, अनुराग मोहन, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है हर्षा रोमकर, दिलीप रोमकर, अक्षय रोमकर, रुद्रा रोमकर, रोमकर परिवार अपना प्यार भेज रहे हैं हमें अमरावती महाराष्ट्र से। और एक बड़ी ही दूर से हमें मैसेज आया है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से भी हमें सुना जा रहा है। प्रतिति घोष जो है वो हमें लिख रही हैं कि वो भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन राजा, गोसिया फातिमा, ये हमें लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। और अगला जो मैसेज है ये है बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खां अजलान, ये हमें मोताला बाजार से जो है मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है ये है मोहम्मद अफरोज का, आपका मैसेज मैंने पहले भी शामिल किया था और फिर से शामिल कर दिया, कोई बात नहीं, है ना? अगला मैसेज है रेणु का बेटा राम राम, राम राम अंकल।

मेरा अगला जो मैसेज है ये हमें आया है महाराष्ट्र से, किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर और पुन्नू वड़तकर ये हमें भेज रहे हैं अपना प्यार मैसेजेस के थ्रू। और अगला जो मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहाना अरजान और अब्बान अब्बासी, ये हमें बुलंदशहर से जो है मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है ये हमें भेजा है, ये आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, ये हमें जो है लिख रहे हैं जमशेदपुर से हमें मैसेज आया है। अगला मैसेज हमें भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू सुभाष योगी, ये हमें जो है मैसेज कर रहे हैं। और सूरत गुजरात से भी जो है नीलेश टेलर और प्रिया और उषा ने हमें मैसेज किया है। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से भी हमें मैसेज आया है। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का। और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसकी हमें फरमाइश भेजी थी चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, फिल्म है हीरा पन्ना। और चलिए सुनते हैं, आप हमें मैसेजेस करना बिल्कुल मत भूलिए। नंबर मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9868868753। आपका प्यार भेजते रहिए तभी तो पता चलेगा कि आप FM गोल्ड और हमारे कार्यक्रम से कितना प्यार करते हैं।

छोटी बलिया कर्जत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डरलाइन दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, रबिया मंता शाह, आशु अहमद फूलवाले, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। विष्णु गार्डन नई दिल्ली से नईम खां, अकरम निसार, सरून ने हमें अपना मैसेज भेजा है। और अगला मैसेज जो है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां, ये भी हमें सुन रहे हैं। और भवानीगढ़ जिला संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरेंद्र कौर, हरप्रीत कौर, इन्होंने भी हमें जो है मैसेज भेजा है। आदिल कमर गुन्नौर से ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है वो है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार। और अगला मैसेज हमें आया है तवार वाली गली खांडवा एमपी से नशरी खां, वासिम खां और मुबीना खान, ये भी हमें सुन रहे हैं। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति, पौरुष व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से ये हमें सुन रहे हैं। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढीगिया, नमन ढीगिया, इनका भी हमें मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है अनीता वर्मा पीतमपुरा दिल्ली से हमें लिख रही हैं, ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं मैसेज के थ्रू। छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, ये भी हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा इनका। और अगला जो मैसेज है वो है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, ये भी हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, और ये हमें दादरी गेट भिवानी से इन्होंने जो है हमें मैसेज किया है। आपका जो ये प्यार आप भेज रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और जिन लोगों के मैसेज में नहीं शामिल कर पा रही हूं मुझे माफ कर दीजिए, पर जैसा मैंने आपको कहा कि समय की पाबंदी है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो है ये भूल चूक हुई है हमसे। वरना जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा तो मन है कि बस मैं यहां बैठूं और आपके मैसेजेस बस पढ़ती रहूं। अगला मैसेज मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमें जो है भेजा है। और अगला मैसेज है कस्बा गुन्नौर वालों की तरफ से पसंदीदा गीत सुनवा दीजिए, जरूर जरूर मेरी कोशिश यही है। अगला गीत जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूं वो है बड़ी बहन फिल्म से, जिसकी फरमाइश हमें की थी गंज दुंदवारा से शमसुल शाहिन, अनु खान, अदनान खान और फैजान ने। तो चलिए सुनते हैं ये गीत सुरैया जी की आवाज में।

अगला मैसेज हमें आया है प्रकाश चंद्र जोशी केराला घाटी चंपावत उत्तराखंड से राज और ये भी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज नईम खान निसार सरुन अकरम ये हमें उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं और रविंद्र फ्रॉम सिरसा हरियाणा नैरा पनिहार पूजा पनिहार यश पनिहार ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये लिखा है इन्होंने कि इस वक्त हम सुन रहे हैं किचन में मन भावन रेणुका दीदी के साथ सबरा शबाना और रईसा जो है ये हमें मैसेज कर रही हैं। आप किचन से सुनिए या हॉल से या फिर बेडरूम से हमें तो बस इस बात की खुशी है कि आपके घर का एक सदस्य बनकर हमें रहना बहुत अच्छा लगता है और आप जो ऐसे मैसेज कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज है ये हमें आया है महेंद्र मोदी ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से ये हमें भेज रहे हैं अपना मैसेज और अगला जो मैसेज आया है वो है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि अश्विनी मंगला बैन शाह राजेंद्र जी शाह ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है दिल्ली से और ज्योति मक्कर हमें मैसेज कर रही हैं। अगला मैसेज हमें मध्य प्रदेश से आया है हुकुम करमकर सुनीता करमकर हार्दिक करमकर प्राची तनु ये हमें भेज रहे हैं और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो है लता जी की आवाज में और फिल्म है तलाश जिसकी फरमाइश हमें की थी सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से।

अगला हमें मैसेज भेजा है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से ये हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये हमें आया है नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहन अहमद भारती, सूफिया नवाब, बल्ली मारा से इन्होंने हमें मैसेज किया है। कोहका भिलाई, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बचेली से बंजारन फिल्म का गाना सुनाने को बोल रहे हैं और ये है सुभाष। खैर मैं गाना तो नहीं चला सकती पर हाँ मैंने आपका मैसेज जो है वो जरूर शामिल कर लिया है। अगला जो हमें मैसेज भेजा है वो है विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, इन्होंने हमें मैसेज किया है। नारायण हो गए, कमल हो गए, दिव्या हो गए, जय हो गए, इन्होंने भी जो है बुल्ढाना से हमें मैसेज किया है। श्रोताओं आपके इन प्यार भरे मैसेजेस के लिए आपका बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि गाना क्यों नहीं चलाया, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी पाबंदी है, मेरे पास भी समय कम रहता है, पर आप जो है नाराज मत होइए और गुस्सा मत होइए, माफ कर दीजिए अगर मैं आपके मैसेजेस को शामिल नहीं कर पाई, पर हाँ आप हमेशा इसी तरीके से अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ ही देर में मैं आपके लिए लेके आऊंगी समाचार और 5 बजे मैं आपसे मिलूंगी प्रोग्राम गाते गुनगुनाते के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में भाग ले रहे हैं। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की आज शाम को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। बैठक के दौरान परस्पर सहयोग को मजबूत करने संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हो सकता है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में मुलाकात हुई थी। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल बढ़ाने और तस्करी रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री

0: मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ गया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्यभर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 34 ओवर में 2 विकेट पर 276 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन शतक लगाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: गांधीधाम, गुवाहाटी, हुबली, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, सूरत एंड विजयवाड़ा. एलिजिबल एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग सर्विंग ऑफिसर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडीज आर एलिजिबल टू अप्लाई. द रिक्रूटमेंट इज एम्ड एट एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल फेमिलियर विद गवर्नमेंट प्रोसीजर्स एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. द लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 45 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज. And complete details including eligibility criteria and application format is available on the BIS official website. That is at www.bis.gov.in. I repeat, it is www.bis.gov.in. The Central Drug Standard Control Organization, CDSCO, under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, invites applications for the post of a head clerk, non-caseted, non-ministerial, in the drugs section on deputation basis. There are 4 vacancies at the CDSCO headquarters located in FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi. The post carries pay scale of level 6 as per the 7 CPC pay matrix. Eligible candidates from central, state government departments or similar organizations may apply as per deputation rules. The applications must be forwarded within 60 days from the release of this advertisement in the employment news. For details, kindly visit the official website at www.cdsco.gov.in. I repeat, it is www.cdsco.gov.in. The Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, has invited applications for the post of Controller of Stationery in the Government of India Stationery Office, Kolkata, on deputation basis, including short-term contract basis. The post is in level 12 as per the 7 CPC pay matrix and serves as the head of department overseeing finance, administration, legal matters, procurement, storage and supply of stationery to various government ministries and departments. Eligible officers may apply within 60 days from the date of publication of the vacancy notice in the employment news. Detailed eligibility conditions and application format is available on the official website. Kindly visit www.mohua.gov.in or you could also go on to www.giso.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार. नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा. आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक बैलिस्टिक्स, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन विज्ञान, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्टिंग, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक दस्तावेज, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक फोरेंसिक विज्ञान, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक फोटो, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अपराध स्थल जिला मोबाइल फोरेंसिक इकाई, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक फिंगरप्रिंट, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, तकनीकी सहायक हिंदी, सहायक अभिलेखागार पाल ग्रेड 1, आईटी सहायक फिटर ग्रेड 2, लिफ्ट ऑपरेटर, सहायक ऑपरेटर सह मैकेनिक, सबस्टेशन अप्रेंटिस, डेटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड ए, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान, घरेलू विज्ञान शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान, विशेष शिक्षक प्राथमिक और विद्युत ओवर सीयर. इन रिक्तियों के लिए आवश्यक नियमों, शर्तों और योग्यताओं आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट dssbonline.nic.in. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2026. सैनिक स्कूल कलिकिरी, अन्नमया जिला, आंध्र प्रदेश राज्य. इन पदों के लिए

इधर आमंत्रित करता है आर्ट मास्टर एक रिक्ति, पीटीआई का मैट्रन महिला एक रिक्ति। अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताओं, पात्रता और अन्य विवरणों सहित विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए सैनिक स्कूल कलिकिरी की वेबसाइट sskal.ac.in। केंद्रीय सतर्कता आयोग आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन, तकनीकी परीक्षक, सहायक तकनीकी परीक्षक और सहायक तकनीकी परीक्षक बागवानी। पात्रता संबंधी शर्तों, योग्यता इत्यादि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट cvc.gov.in। महानिदेशक मौसम विज्ञान।

0: वैज्ञानिक परामर्शदाता के लिए आयु 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वैज्ञानिक परामर्शदाता के लिए भी आयु 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट internal.imd.gov.in। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। विशेषज्ञ ग्रेड 2 यानम परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पुदुचेरी परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर करैक्कल परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानम परिसर के लिए और बाल मनोवैज्ञानिक पुदुचेरी परिसर के लिए। यानम परिसर के लिए कुल पद 8 हैं, पुदुचेरी के लिए 1, करैक्कल के लिए 5, बाल मनोवैज्ञानिक पुदुचेरी के लिए 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.jipmer.edu.in। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का ईमेल का पता भी आप नोट कर सकते हैं, group.anf@jipmer.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड व्हाइल आई वाज कमिंग टू द स्टूडियो करिश्मा, आई वाज जस्ट थिंकिंग, इमेजिन 2026 के अभी तो लग रहा है हम लोगों ने पहला शो किया था परिक्रमा का और 6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, 6वें महीने का भी आधा महीना निकल चुका है
0: मार्च को छोड़कर। मार्च जितना लंबा था कि हर कोई इंतजार कर रहा था कब खत्म होगा।
1: राइट, बट सी वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू एंड आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव मेड प्लान्स फॉर दिस ईयर, सो टाइम फॉर अ वेक अप कॉल बिकॉज हाफ ऑफ द ईयर हैज ऑलरेडी पास्ड। बट हाफ एन आवर जो अगला होगा उसमें हम आपके लिए लाएंगे ताजा तरीन खबरें एंड ऑफकोर्स सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर correspondents have from there, all of that in our show, but first let's start with the headlines, Karishma.
0: G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया।
1: Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France.
0: Raksha Mantri Rajnath Singh ne surgical strike Balakot aur Operation Sindoor ka udharan dete hue kaha, Bharat ki samprabhuta se koi samjhauta nahi kiya ja sakta.
1: India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21.
0: सुरक्षा बलों ने मणिपुर में परिवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट।
1: And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow.

0: Well, Karishma, this beautiful song in the voice of Kailash Khed, the imagery that it was evoking, you know, of lush greenery around and of rivers with sparkling water, I think that itself was probably filling the heart with joy. But all of that is, of course, at a danger of desertification because of humans' ruthless and exploitative, you can say, attitude towards nature. So today we join the people around the globe in observing World Day to combat desertification and drought. This important day is observed every year on 17th of June to raise awareness about the growing challenges of desertification and drought and to encourage international cooperation in tackling them.
1: और 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को मरुस्थलीयकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस घोषित किया था। इसका मकसद उन देशों में, खासकर अफ्रीका में जहां गंभीर सूखा होता है या मरुस्थलीयकरण की समस्या सबसे ज्यादा है, वहां लोगों में जागरूकता बढ़ाना और मरुस्थलीयकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को लागू करना था।
0: And now when people hear the word desertification, they often imagine deserts expanding rapidly, but it's actually a process where fertile land gradually loses its productivity due to factors like climate change, unsustainable land use and prolonged droughts.
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और अच्छी बात यह है कि जमीन के रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है, यानी कि अभी से भी इसमें सुधार किया जा सकता है। सही कदमों, लोगों की भागीदारी और जमीन के टिकाऊ प्रबंधन के तरीकों से खराब हो चुकी जमीन को फिर से ठीक किया जा सकता है।
0: एब्सोल्युटली करिश्मा, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस ईयर्स थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज Respect, restore. It's a powerful message that shines a spotlight on one of the most overlooked ecosystems on our planet, rangelands.
1: कई सुनने वालों के मन में अब जरूर ये सवाल आ गया होगा कि आखिर rangelands क्या होते हैं, तो इसे भी समझ लेते हैं.
0: Right, great question. Rangelands are vast natural landscapes such as grasslands, shrublands, savannas, and open grazing areas where livestock and wildlife thrive. In fact, they cover more than half of the Earth's land surface.
1: और ये बहुत बड़ी बात है, फिर भी इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद चारागाहों को अक्सर वह ध्यान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं।
0: एब्सोल्युटली करिश्मा, दीज इकोसिस्टम्स दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन फूड सिक्योरिटी बाय सपोर्टिंग लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर। दे ऑल्सो हेल्प मेंटेन बायोडायवर्सिटी, रेगुलेट वाटर साइकिल्स एंड बिल्ड रिजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज।
1: और दुनिया भर के उन लाखों लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी संस्कृति, परंपराएं और आजीविका इन इलाकों में गहराई से जुड़ी हुई हैं।
0: Very true. That's why this year's theme emphasizes three important actions: recognize, respect and restore.
1: और आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हैं।
0: That's right. That's taken care of the recognize aspect of the theme. And the second word is respect. Yes, we should respect the communities and traditional stewards who have protected and managed these lands for generations.
1: और तीसरा, टिकाऊ तरीकों, संरक्षण की कोशिशों और बेहतर निवेश के जरिए खराब हो चुकी चारागाह जमीनों को फिर से ठीक करना है।
0: सो यस, जैसा हम दोनों ने बताया कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर, व्हाट दे मीन एंड हाउ वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट इन प्रोबेबली यू नो लिविंग देम टू द फुलेस्ट। एंड यू नो कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन इज इन जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड

0: एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बल्कि हम सबको उसमें जो है अपना ये जो है कह सकते हैं साथ देना चाहिए।
1: बिल्कुल सायरा, और हर कोई इसमें योगदान दे भी सकता है, जैसे कि पानी बचाना, टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाना, स्थानीय पेड़ पौधे लगाना और जागरूकता फैलाना, इन सभी से फर्क पड़ सकता है।
0: एंड perhaps द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन टूडे इज दैट solutions आर पॉसिबल when पीपल वर्क टूगेदर।
1: और इस आयोजन के पीछे यही भावना है कि हर स्तर पे भागीदारी और सहयोग स्थानीय समुदाय से भी मिल सके।
0: Yes, indeed. And as we mark this day, let's remember that healthy land means healthy ecosystems, secure livelihoods and a more resilient future.
1: तो आइए हम अपने चारागाहों की अहमियत को समझें, उनकी देखभाल करने वालों का सम्मान करें और जो खो गया है उसे फिर से बहाल करें।
0: And Karishma, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today said that India has already brought 21.76 million hectares of land under restoration efforts against its target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi.
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: As we conclude, it's important to remember that desertification and climate change are deeply connected. Rising temperatures and changing weather patterns are putting increasing pressure on our land and soil.
1: बिल्कुल सही, और जब जमीन खराब हो जाती है तो समुदायों को गरीबी, पलायन और सीमित संसाधनों के लिए उनकी लड़ाई झगड़े जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है।
0: That's right, as we all know that in today's world the biggest fight will be for resources. And we are already witnessing that. But there is hope. Restoring degraded land, preventing soil erosion, and bringing back vegetation can help reduce greenhouse gas emissions and strengthen climate resilience.
1: और दूसरे शब्दों में अपनी जमीन की सुरक्षा करके हम अपने भविष्य की भी सुरक्षा कर रहे हैं। हर कोशिश, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, एक बेहतर और स्वस्थ ग्रह बनाने में योगदान दे सकती है।
0: So, on this World Day to Combat Desertification and Drought, let's recognize that sustainable land management is not just an environmental responsibility. It's a pathway to sustainable development, stronger communities, and a more climate resilient world.
1: और इसी के साथ श्रोताओं, हम सब मिलकर खराब हो चुकी जमीन को फलते फूलते इकोसिस्टम में बदल सकते हैं और हम सब मिलकर सभी के लिए एक हरा भरा और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं।
0: So let's play our part to protect and restore our planet.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है, और सबसे पहले बात रायपुर की करेंगे। पानी जीवन की सबसे अनमोल जरूरत है, और इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है मोर गांव मोर पानी महाभियान, जो अब जनभागीदारी से एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: मोर गांव मोर पानी अभियान का उद्देश्य है वर्षा जल का संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और आने वाले समय के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ के गांवों में ग्रामीण खुद आगे बढ़कर जल संरक्षण की संरचनाएं तैयार कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड में इस अभियान ने एक नया उदाहरण पेश किया है। यहां ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और पंचायत कर्मियों ने मिलकर एक ही दिन में 2000 जल संरक्षण मॉडल संरचनाओं का निर्माण किया। इस काम में लोगों ने श्रमदान कर अपनी भागीदारी निभाई।

0: राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है।
1: एंड ऑफ कोर्स इंडियाज हाई स्पोर्टिंग ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वॉज ऑल्सो गिवन टू हिम इन द ईयर 1996। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सोना महापात्रा ऑन हर बर्थडे टूडे। वी ऑल नो दैट शी इज अ वेरी फाइन सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड इन एडिशन टू हर ओन यू कैन से कॉम्पोजिशंस शी हैज रिकॉर्डेड रीमिक्सेज ऑफ सॉन्ग्स एंड देर आर मेनी मेनी ऑफ देम। सिंस वी हैव वेरी लेस टाइम सो वाई नॉट लिसन टू वन ऑफ हर सॉन्ग्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की

0: तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और ये है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका और कार्यक्रम शुरू हो गया है गाते गुनगुनाते, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं 80 और 90 के दशक के प्यारे प्यारे और सुहावने गीत। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले चलिए एक शायरी सुन लेते हैं निदा फाजली की। ये कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जी हाँ, ये तो है। ये दुनिया एक ऐसी चीज है, किसी के लिए ये मिट्टी है तो किसी के लिए ये सोना है। और जो पहला गीत हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं वो भी फिल्म है आदमी खिलौना है से। और इस फिल्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रीना रॉय का जो किरदार है इस फिल्म में, वो पहले डिंपल कपाड़िया अदा करने वाली थी, पर किन्हीं कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया। और जो इस फिल्म का शीर्षक है उसे खिलौना रखा जाना था, पर राइट्स ना मिलने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और ये आखिरी मूवी थी जिसमें जितेंद्र और रीना रॉय एक साथ देखे गए थे। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म से ये गीत आपके लिए।

उबैदुल्ला आलम कहते हैं, ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं, ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं, काश तुझको भी एक झलक देखूं। अगला जो गीत हम सुनने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही कहा गया है, और ये जो गीत है फिल्म है गुप्त से। और गुप्त के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मनीषा कोइराला और काजोल का अभिनय जो है काफी सराहनीय था, और मनीषा कोइराला के रोल के लिए करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को भी जो है अप्रोच किया गया था, पर आखिर में उसे मनीषा कोइराला ने ही किया और काफी अच्छा किया। और जो सॉन्ग है मेरे ख्वाबों में तू, इसका जो है रिमिक्स भी काफी फेमस हुआ फॉरेन कंट्रीज में, और साल 2000 में ये काफी प्रचलित था बाहर। इंडिया में तो ये गाने चले ही चले थे, काफी हिट थे इसके गाने, और बाहर भी इन्होंने अपना जलवा दिखाया। तो हम भी देरी न करते हुए चलिए सुनते हैं ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स

0: क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: यह है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है गाते गुनगुनाते, आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेकर आते हैं आपके लिए 80 और 90 के दशक के गीत। और जब हम 90s की बात करें तो कैसे कोई भूल सकता है हीरो हीरो नंबर 1 गोविंदा को। जी हाँ, और अगला गीत भी जो है मैं आपको हीरो नंबर मूवी से ही सुनाने वाली हूँ। और इस फिल्म के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो ये हम सभी को पता है कि ये फिल्म जो है आधारित है बावर्ची फिल्म से। जी हाँ, राजेश खन्ना जी की जो पुरानी फिल्म है बावर्ची, उसी से ये प्रेरित है। और डेविड धवन जो हीरो नंबर 1 के डायरेक्टर हैं, वो चाहते थे कि फिल्म का जो टाइटल हो वो हीरो हो, पर क्योंकि वो सुभाष घई के नाम पे रजिस्टर्ड था तो उन्होंने हीरो नंबर 1 जो है उसे चुना। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोविंदा की फिल्मों के साथ नंबर 1 तो अपने आप ही जुड़ जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए सुनते हैं विनोद राठौड़ और पूर्णिमा की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और मैं हूँ रेडियो सखी रेणुका लेकर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। किसी ने कितना सही कहा है ना, तुम्हारी सीधी नजर ने तो कोई बात न की, तुम्हारी सीधी नजर ने तो कोई बात न की, तुम्हारी तिरछी नजर का सवाल अच्छा था। अब वो सवाल क्या था नजर का पता नहीं पर अगला जो गीत हम सुनाने जा रहे हैं आपको, वो भी कुछ सवाल जवाब कर रहा है, नजरों की बात कर रहा है। और ये जो गीत है ये है फिल्म आशिकी से। जी हाँ, 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म आशिकी। और आपको पता है टी सीरीज ने कैसेट की जो सेल्स है ना उसको गिनना ही छोड़ दिया था 1 करोड़ सेल्स रीच होने के बाद, क्योंकि उतनी बिक्री हो रही थी, इतने हिट थे इस फिल्म के गाने। और सलून जो है जहां पे बार बार बाल काटा करते थे राहुल रॉय कट, उनकी भी भाई चांदी ही चांदी हो गई, क्योंकि हर कोई शख्स जो है वो राहुल रॉय जैसा दिखना चाहता था और राहुल रॉय का जो हेयर स्टाइल है उसे कॉपी करना चाहता था। आदित्य पंचोली जो है उन्होंने आवाज दी थी अपनी राहुल रॉय के किरदार के लिए। जी हाँ, और पंचोली जो है उन्होंने महेश भट्ट जी की फिल्म साथी में भी काम किया था। और गानों का तो मैं क्या ही बताऊं, कुमार सानू जो है वो तो रातों रात इतने फेमस हुए, इतने हिट हुए कि हम जानते हैं कि 90 के दशक में जो गीत रिलीज हुए थे, जो फिल्म्स आई थी, उनमें कुमार सानू का एक बहुत बड़ा रोल था। तो देरी ना करते हुए चलिए सुनते हैं इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

अगला जो गीत है वो है फिल्म नमक हलाल से। जी हाँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में से है। और आपको पता है कि विनोद खन्ना जी जो हैं वो शशि कपूर जी का रोल निभाने वाले थे, पर ऐसा हुआ नहीं। और शशि कपूर की पत्नी जेनिफर केंडल फिल्म के लिए कपूर के कपड़े डिजाइन किए गए थे, उन्होंने ही जो है उनकी कपड़े और कॉस्ट्यूम उनकी जो है डिजाइनिंग की। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अशोक कुमार जी जो हैं वो ओम प्रकाश जी का रोल प्ले करने वाले थे, पर आखिर में दद्दू का रोल ओम प्रकाश जी ने भी काफी अच्छी तरीके से निभाया। और आज भी जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म के सभी किरदार जो हैं काफी अच्छे लगते हैं, मतलब सबने अपनी अपनी भूमिकाएं बहुत बढ़िया तरीके से निभाई हैं। और हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, इस फिल्म का गाना सुनेंगे किशोर दा की आवाज में।

सुदर्शन फाकिर कहते हैं, सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। जी हाँ, खुदा के मायने तो अपने अपने हैं, अलग अलग हैं। और अगली जो फिल्म हम बात करेंगे जिसके बारे में, वो भी है खुदा गवाह। जी हाँ, खुदा गवाह के बारे में अगर मैं कहूँ आपको, तो इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, उसको कंपोज करने के लिए पहले ये प्लान किया गया था कि अफगानिस्तान से ही म्यूजिशियंस को बुलाया जाए, पर वो किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया। और जब अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं वो वहां इकट्ठा हो गए थे। और एक बार को ये भी सोचा गया कि इस फिल्म का शीर्षक बादशाह खान रखा जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो चलिए सुनते हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत।

ये दुनिया बड़ी निराली है, बड़ी ही रंगीली है, और अगला जो गीत हम आपके लिए पेश करेंगे वो भी है फिल्म रंगीला से। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं कुछ बता दूं। रंगीला फिल्म में आमिर खान ने जो कपड़े पहने हैं वो मोस्टली उन्हीं के हैं, ज्यादातर कपड़े वो उन्हीं के कपड़े उन्होंने जो हैं फिल्म में यूज किए हैं, और कुछ कपड़े अपने दोस्तों से भी लिए हैं, और जो उसमें वो टोपी पहनते हैं वही सेम टोपी जो है उन्होंने अंदाज अपना अपना फिल्म में भी इस्तेमाल की थी। और म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान की ये डेब्यू हिंदी फिल्म थी जिसमें उनका ओरिजिनल स्कोर था, मतलब कि इससे पहले जो भी फिल्में आई थी A.R. रहमान के म्यूजिक में वो तमिल से कॉपी हुई थी, डब हुई थी, तो ये पहली फिल्म थी जब उन्होंने ओरिजिनल स्कोर किया था। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत स्वर्णलता और हरिहरन की आवाज में।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम समाप्त करते हैं अपना कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आप हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर। और आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753 पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर भी आप अपनी राय और प्यार भेज सकते हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और सुनते रहिए FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit in Avion, France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
1: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America, and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent, and Global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people, and spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
2: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. This meeting brought together G7 member countries, partner nations, and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership, with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany intergovernmental consultations scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Now all eyes are firmly set on the Prime Minister, Mr. Modi's highly anticipated bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the functioning of the National Cybercrime Helpline 1930 at a meeting in New Delhi and instructed the officials to revamp it. Mr. Shah also directed the officials to use artificial intelligence and multilingual support to facilitate ease of reporting. He directed the agencies to work closely with the states to pivot each call to its logical end and also asked to address the grievances arising out of freezing of bank accounts. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupinder Yadav today said that India has already brought about 22 million hectares of land under restoration efforts

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सदाबहार गीतों का ये सफर आपके लिए। स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। जिंदगी सुस्ताती है सुकून से मिलके गले, कोई हुक सी उठती है दिल में सांझ ढले। दिन भर की जद्दोजहद के बाद जैसे ही शाम उफुक के दामन पर उतरती है ना, तो सीने में कोई मीठा सा ख्याल अंगड़ाई लेने लगता है, कोई प्यार का राग होठों पर मचलने लगता है। कुछ कुछ फिल्म तेरे घर के सामने के उस गीत की तरह, जिसमें मोहम्मद रफी की आवाज हवा की ताजगी की तरह बहती है और दो दिलों के बीच एक मीठा सा प्यार का राग बहने लगता है।

देखिए, प्यार का राग अपनी जगह है। प्यार तो दीवाना होता है, मगर रिश्ते दिल्लगी से नहीं चलते, दीवानगी से नहीं चलते, बल्कि एतबार से चलते हैं। मोहब्बत के सफर पर निकल पड़ने के बाद कहीं किसी मोड़ पर ऐसा ना हो कि वो शेर याद आए, मेरी जबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूं, मेरा एतबार मत करना। प्यार बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे यकीनों में बसता है, जो दिल को यह एहसास दिलाते हैं कि चाहे वक्त कितना ही क्यों ना बदल जाए, कोई है जो आपका हाथ, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो किसी हमनवा का मुस्कुरा के ये कहना कि मैं हूं ना, शायद यही इश्क हो, है ना। फिलहाल फिल्म जुर्म का ये गीत आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये सफर यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है संस्कृत में समाचार।

0: it's expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across major forums. Earlier today, Prime Minister Narendra Modi addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the G7 Summit in Evian, France. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries, and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD.
1: Larima, बहुत अहम खबर है और सारी दुनिया की नजरें अभी टिकी हुई हैं इन घटनाओं पर, इन मीटिंग्स पर, और दुनिया के कई अहम नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं. तो आई मीन अभी काफी कुछ लग रहा है कि बनने वाला है. उदयन के पास चलते हैं हम कि देखें अभी.
0: यस, वी आर नाउ कनेक्टेड लाइव विथ अंकित. अंकित इज ऑनलाइन फ्रॉम ही इज एट द G7 समिट. हेलो अंकित.
2: Yes, Laliba.
0: Yeah, Ankit, what is the significance of the meeting between the two leaders, our Prime Minister and President Trump?
2: Yes, Lalima, the meeting is very, very significant.
0: Mm-hmm.
2: As you are aware that the bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President carries immense diplomatic weight. And although both leaders met briefly yesterday during the group photograph and the working session, but now all eyes are on the formal bilateral meetings. It is going to be, under the process. Since the two leaders are holding talks after a long time, it is naturally drawing widespread global attention. Lalima, the meeting is also significant because both the leaders are holding talks at a moment where the conflict in West Asia, the U.S. and U.S. and Iran has recently announced to finalize a deal.
0: Uh-huh.
2: So that is very crucial. And you know that during the meeting, it is very important that India and U.S. have already done substantial work on trade deal. So during the meeting, trade deal is very crucial aspect which can be discussed. Apart from this, highly significant discussions are expected regarding the West Asia crisis, and energy security is another key issue that the two nations are likely to discuss. Because Lalima, as you know, when any type of crisis like West Asia crisis any type of geopolitical problem arises,
0: mm-hmm.
2: The energy crisis is something which concerns everyone.
0: Right.
2: So, Lalima, this is the latest update from here.
0: Right. Thank you, Ankit, for that update from France.
1: अभी ताजा जानकारियां भी आ ही गई हैं, तो उदयन के पास चलते हैं और इस पर चर्चा हम शुरू कर ही रहे थे. उदयन, अभी हमने अपडेट्स भी सुने और पीएम कई अहम नेताओं से मिल रहे हैं. अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा जर्मनी के चांसलर से मुलाकात है. जो भारत के लिए अभी आने वाले वक्त में क्या ये शेप ले सकता है इन मुलाकातों से, अगर हम देखें तो?
3: देखिए, जर्मन चांसलर के साथ तो पहले वो आए थे, वहां पे बातचीत भी हुई थी, तो वहां पे मेरे हिसाब से दो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो बिंदुएं हैं, एरियाज हैं, वो एक तो हमारा उनके साथ पनडुब्बी सबमरीन को लेके एक बहुत बड़ा डील हो रहा है, और ये बहुत एडवांस सबमरीन्स हैं और ये इनके डिजाइन्स जर्मनी में होंगे और भारत में अंडर मेड इन इंडिया इनका प्रोडक्शन होगा. तो ये एक बिल्कुल कटिंग एज डिफेंस प्रोडक्शन का हैंडशेक है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि जर्मनी कभी भी अपने टेक्नोलॉजी छोड़ता नहीं था और हमारे जो एक सबमरीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक टारगेट है, वो उसके हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं. तो उस प्रगति और हमारी जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वहां पे उसके लिए इम्पोर्टेंट है. दूसरा है ईयू के साथ हमने डील करके रखा हुआ है एफटीए, जो कि आगे चल के अब प्रोसेस हो रहा है
1: जी.
3: तो वहां पे भारत से एजुकेटेड स्किल्ड लेबर का जाने का एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी. तो भारत हर जगह जहां पे भी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है.

0: वहां पे ये चीज हो रही है, तो शायद उसका ही फॉलो अप रहा होगा प्लस दूसरी चीजें रही होंगी। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में के साथ मीटिंग है, बातचीत तो बहुत सारी होंगी, पर हम जैसे लोगों की नजर दो चीजों पे होंगी। जैसे ही ये ईरान का के साथ जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी डिटेल्स अभी आई नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसकी एक हल्की सी या सब्सटैंशियल ब्रीफिंग इन कॉन्फिडेंस यूएस प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री को करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। 2018 के आसपास हम आयात करते थे और ईरानी जो क्रूड है हमारे रिफाइनरीज के लिए बहुत बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए हमारे कॉस्ट कम हो सकता है। तो अगर वो फ्री फ्लो होगा तो ना केवल सबको फायदा होगा विश्व को, हमारे लिए बहुत
1: हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट
0: जी। दूसरी बात यह है, कई लोगों का मानना है कि वहां पे G7 में क्योंकि यूरोपीय देश ज्यादा हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर दोबारा सारा जो अटेंशन है वो यूक्रेन युद्ध के ऊपर आए और रशिया के ऊपर फिर से कुछ प्रतिबंध लगे। तो जैसे कि हम जान रहे थे कि पीछे जो जनवरी तक हमारे ऊपर दबाव था कि हम रशिया से तेल ना लें, तो वो एक दोबारा बैकडोर से एंट्री आ सकती है। और फाइनली हमारे अगले हफ्ते ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो ट्रेड हमारा जो डील है उसका फर्स्ट ट्रांच होने वाला है, तो वो राष्ट्रपति ट्रंप के आशीर्वाद के बगैर वो हो नहीं सकता, जैसे कि हम देख चुके हैं। तो ये दो बातें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है।
2: वेल, जर्मन्स आर नोन टू बी परफेक्शनिस्ट, बी टाइमिंग और बी मशीनरी। ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन।
1: चले हम शेयर बाजार पर नजर डालें। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में आज थोड़े उतार चढ़ाव के बाद लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंकों ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। एनएसई के मिड कैप 100 इंडेक्स में आधा प्रतिशत और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.8% की बढ़त देखी गई। ब्रेंट क्रूड के दाम $80 प्रति बैरल के नीचे आने की वजह से बाजार में उत्साह दिख रहा है और रुपए में हाल में आई मजबूती से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। और नतीजा है कि लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार में बढ़त दिखाई दी।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड टुडेज चॉपी ट्रेडिंग सेशन विद गेन्स ऑफ ऑलमोस्ट 0.5%। द सेंसेक्स रोज 347 पॉइंट्स टू क्लोज एट 77,156, व्हाइल द निफ्टी एडवांस्ड 97 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,086। इन द ब्रॉडर मार्केट ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द मिड कैप 100 इंडेक्स गेन्ड 0.5%, while the small cap 100 index climbed 0.8%. Investor sentiment remained upbeat as Brent crude oil prices fell below the $80 per barrel mark, and the recovery in the rupee boosted confidence, helping the market extend gains for the fourth consecutive trading session.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर फायदे में रहे। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें। ट्रेंड के शेयर 7.1% बढ़ गए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 3.1% और इटर्नल के 2% ऊपर आ गए। इसके उलट बजाज फिनसर्व के शेयर 1.2%, एक्सिस बैंक के 1.1% और कोटक महिंद्रा बैंक के 0.9% नीचे आ गए।
2: अमंग द सेक्टरल इंडेक्सेस ऑन द बीएससी, 20 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन पॉजिटिव जोन। कैपिटल गुड्स सोर्ड 2.8%, इंडस्ट्रियल्स एज वेल एज पीएसयू बैंक रोज 1.8% एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गेन्ड 1.4%। इन कॉन्ट्रास्ट, रियल्टी एंड ऑटो बोथ स्लिप्ड बाय 0.5%, एफएमसीजी लॉस्ट 0.2% एंड यूटिलिटीज एज वेल एज हॉस्पिटल dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,404 companies advanced, 1,876 declined and 163 remained unchanged.
1: और रुपए का हाल यह है कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 99.65 पर कारोबार कर रहा था। उदयन, हमने बाजार का हाल देख लिया है और जो आज उतार चढ़ाव हमने देखा है, जिस तरह से लग रहा था कि शायद थोड़ी मुनाफा वसूली का असर दिखाई देगा, लेकिन कुल मिलाकर पॉजिटिव रहा।

0: उनके जो चेयरमैन है फेड चेयरमैन, उनकी पहली ये मीटिंग हो रही है केविन वॉट्स की, तो सब नजरें वहीं टिकी हुई हैं कि उनकी कमेंट्री क्या रहेगी। ये उम्मीद किया जा रहा है कि वहां पे ब्याज दरों को छेड़ा नहीं जाएगा, पर वो कमेंट्री क्या करेंगे, और उनका एक विजन है, उनकी एक सोच है, तो उससे अवगत होने वाली है मार्केट। और क्योंकि अमरीकी मार्केट दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है, इकोनॉमी भी सबसे बड़ी है, तो ये उसका एक इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द ग्लोब होने वाला है, तो उसकी तरफ वो एक बहुत आगे का जो मूवमेंट है मार्केट का वो उसको डिटरमिन करता रहेगा।
1: एंड द यूएस ईरान डील ऑल्सो इज कास्टिंग इट्स पॉजिटिव शैडो ऑन द मार्केट्स।
0: या एक्चुअली लालिमा, द एवरीबडी इज नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, सो नो, बट ब्रॉडली पीपल आर, इट्स अ रिलीफ, इट्स नॉट एग्ज्यूबरेंस, सो दैट्स नंबर वन। नाउ पीपल आर will now be seeking the details, and possibly those details, if and when they come, they're supposed to come out on Friday. People are going to spend the weekends trying to understand, try to go through the letter and spirit, and then figure out what it means for a slightly, why slightly a high risk investment, whether stocks and other things, where you have to weigh in the kind of risk, so that you know you try to understand whether you stay invested, where your fresh investments would be. Uh-huh. So that is a key part. First, the Fed commentary that's going to come out. Yeah. Second is, what is going to be the text of the agreement? And right now, nobody knows what has been agreed upon, as leaks and statements, but what is there in the draft? When it's going to be shared, then people will know. For the first time, we'll get a sense of what's in store.
1: Right.
2: जी उदयन, जो फैक्टर्स हम देख रहे थे अभी तक, तो सारे बाजारों पर पश्चिम एशिया हावी था जिस तरह से चल रहा था, और उसके पहले कुछ समय पहले की बात करें तो हम रूस और यूक्रेन जिस तरह से चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि अब पश्चिम एशिया का संकट समाधान की तरफ पहुंच चुका है लगभग, तो इसके बाद ये फैक्टर्स अगर खत्म हो जाते हैं तो अब हम नॉर्मल कोर्स में हमारे बाजार को प्रभावित करने वाले कौन से कारक सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे?
0: ये सुबोध जी, दिक्कत ये है, मतलब चैलेंज ये है कि भारत को बताने वाले लोग तब भी होंगे कि यहां से तेल खरीदो, वहां से मत खरीदो, यहां से इतना करो, वो वहां से लो, तो ये जो ज्ञान आता है विद ड्यू अपोलॉजीज, वो हमेशा दिक्कत होती है। वैसे तो हमें लेक्चर दिया जाता है कि फ्री मार्केट्स है, आपको फ्री प्ले करना चाहिए, पर ये जो नियम है ना, अंतर्राष्ट्रीय नियम, ये ना जाने क्यों हमारे लिए लागू नहीं होती, दूसरों के लिए होती है, खुद के लिए नहीं होती जो हमें भाषण दिया जाता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात आपको थोड़ी सख्त लग रही होगी, क्योंकि हमारे भारत में, भारत के आम नागरिकों के ऊपर ये असर पड़ रहा है। तो अगर आकाशवाणी से एक प्रोग्राम जा रहा है, वो वहां पे उनकी उनके उनकी तरफ से ये आवाज होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हमें महंगी तेल कहीं से खरीदनी पड़ रही है तो आम आदमी को असर तो पड़ ही रहा है ना, तो ये वो बात फिर भी रहेगी और वो चैलेंज फिर भी बना रहेगा, पर उसको हमने अभी स्मार्टली हैंडल करना सीख लिया, दैट्स अ गुड न्यूज। तो वो तेल वाला जो है, कहां से सप्लाई लेना है, कितने में खरीदना है, उसको उसके ऊपर जो काम है वो चलता रहेगा। पर अगर हमें, मान लीजिए, ईरान और जैसे दूसरे देशों से फ्री सप्लाई मिल जाता है, देन तो मैं ये कहूंगा सुबोध जी कि मार्च 2027 ऑनवर्ड्स आप एक बहुत जबरदस्त बाउंस की तरफ देख रहे हैं, और वो जो ग्रोथ आप, मैं और हर भारतीय चाहते हैं, प्रगति, वो हमें वो दर हमें मिल जाएगा।
1: ऑल्सो आई थिंक द फैक्ट दैट वी बीन गोइंग ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ साइनिंग FTAs विद वेरियस कंट्रीज, दैट मे गिव अस अ सॉफ्ट एज।
0: Oh, absolutely. And that's when you will start getting the benefits. All the things will be processed. You'll be seeing those new markets coming up.
1: Right.
2: जी, और अब नजर डाले एशियाई बाजारों पर। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख बना रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.6%, जापान का निक्के 0.7%, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.4%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 1.2%, और ताइवान का ताइक सूचकांक लगभग 0.1% ऊपर बंद हुआ। इसके उलट हांगकांग का हैंगसेंग 0.7% नीचे आ गया। जापान के मई महीने के आर्थिक आंकड़ों पर गौर करें।

0: सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों और वाहनों की भारी मांग की वजह से मई में एक साल पहले के मुकाबले जापान का निर्यात 17% बढ़ गया है, लेकिन संचार उपकरणों की ज्यादा खरीद की वजह से आयात भी 12.5% बढ़ गया। कारोबार में मजबूती के बाद भी मई में जापान ने 2.34 अरब अमेरिकी डॉलर्स का व्यापार घाटा दर्ज किया, जो 4 महीनों में पहला व्यापार घाटा है। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज शुरुआती कारोबार में बढ़त का रुख है। समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डैक्स 0.2% ऊपर चल रहा था। लंदन के फुटसी में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। उदयन, ये एशियाई बाजारों में नॉर्मल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है रुख, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो वहां के आर्थिक आंकड़े जो दिख रहे हैं मई के जापान के, उस पर सचमुच गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जो जापान ने अभी रेट बढ़ाने की बात की है, खैर ये तो उसके पहले की बात है, जापान की गतिविधियां अब सचमुच पूरी दुनिया को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली है।
1: एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि वहां, क्योंकि वहां येन की प्राइसिंग ऐसी होती थी, लोग येन उठाते थे, कैरी ट्रेड जिसे बोला जाता, वहां से उठा के फिर दूसरे देशों में येन में निवेश करते, तो कैरी ट्रेड अगर आप रेट बढ़ा रहे हैं तो वो कैरी ट्रेड वाला रूट तो बिल्कुल चैलेंज जोन में आ गया। दूसरी बात है सुबोध जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उनका निर्यात तो बढ़ा है क्योंकि उनका वैल्यू एडेड जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं, पर बाकी लिविंग कॉस्ट में बड़ा जबरदस्त चैलेंज चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज में भी एक चैलेंज है और वो उनके पॉलिटिक्स में भी, उनकी सोशल इकोनॉमिक उसमें दिख रहा है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अग्री करता हूं आपसे कि आने वाले वक्त में वहां पे जो घटनाएं होंगी वो असर करेंगी सबको।
2: All right, a look at the US markets now. US equities ended on a mixed note yesterday. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index declined more than 1.1%, while the S&P 500 slipped nearly 0.6%. In contrast, the Dow Jones Industrial Average advanced over 0.6% to close at a record high of 52,000 as investors shifted from chip stocks to cyclical sectors amid easing oil prices. Meanwhile, the market participants are now looking ahead to the outcome of the Federal Reserve's policy meeting, which is scheduled to be announced tonight under the leadership of the new chairman, Kevin Warsh. Which way will it go? Will the meeting go? You any guesses?
1: Well, I think most of the market participants think that the rates will remain untouched. Mm-hmm. But like everywhere in the world, there is going to be a challenge for all the central bankers at some point. And by the end of this year, they will be, it will be on the table. A rate hike or some kind of a tightening will be there, because especially in the US, the inflation has gone above 4%. Mm-hmm. That is beyond their comfort zone. Mm. And they won't do anything right now, but maybe, down the line, some kind of a move. But the other part, Lalima, a quick sentence here. Kevin Warsh doesn't believe in telegraphing the way the guidance, Jerome Powell used to constantly give guidance. This is what we are going to do. This is what we are going to do. Kevin Warsh doesn't like that. Mm-hmm. So that means you're going to get that much less information and that much more uncertainty, and that much more will get reflected in stock market movement. Right. So that is something the markets will have to get used to, this new Fed chairman, and they'll figure it out.
2: That's an interesting observation.
0: देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में वर्तमान में 2 सेमीकंडक्टर संयंत्र निर्माणाधीन हैं और इस वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी।
2: And now moving on to another news on defense production. Defense Minister Rajnath Singh has highlighted that

0: India's annual defense production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21. When the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in financial year 2013-14, and he underlined that this upward trajectory is a clear indicator of the country's expanding defence industrial base.
1: Ji. हाँ लालिमा, ये रक्षा क्षेत्र सचमुच काफी उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है अब भारत के लिए.
0: जी जी जी
1: उदयन, आपकी
0: और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं.
1: जी
2: जी बिल्कुल. और जैसे कि हमने पीछे जब पिछले साल संघर्ष हुआ तो हमने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास खुद के जो डिफेंस रक्षा से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं वो आपके देश में अगर हों, आपको पर्याप्त मात्रा में आपको मिलता है. और सबसे अच्छी बात सुबोध जी ये है कि हमारे अब इंक्रीजिंगली निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में लाया जा रहा है. उसमें एक एफिशिएंसी, एक स्केल, एक कोलैबोरेशन, कई चीजें जो हैं एक ही जगह में अगर कंसंट्रेटेड रहती थी तो वहां पे एक इश्यू आ जाता है. तो विश्व में भी आप अमेरिका देखें, दूसरी जगह देखें जहां पे कामयाबी के साथ एक्सीलेंस लाया गया है डिफेंस प्रोडक्शन में, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन रही है और उनके रिजल्ट्स क्योंकि बेहतर हो रहे हैं और ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसलिए आप पाएंगे कि डिफेंस स्टॉक्स में भी आपका एक असर. कई जगह तो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो सिर्फ सोली डिफेंस में नहीं है पर फिर भी उसका एक असर वो वाला जो बिजनेस है एक बेनिफिशियल इफेक्ट उन स्टॉक्स पे डाल रहा है.
1: जी, और निवेशकों की भी रुचि बढ़ी है.
2: जी बिल्कुल
1: जी.
0: राइट, वी हैव लॉट्स ऑफ कोलैबोरेशंस ऑन द पीपीपी मोड विद द गवर्नमेंट एंड आई थिंक आत्मनिर्भर भारत टू फॉर आत्मनिर्भर भारत डिफेंस प्रोडक्शन वॉज क्वाइट सेंट्रल
2: एब्सोल्युटली
0: एज एन आइडिया एज अ थीम
2: एंड देयर आर सक्सेस स्टोरीज बट वी ऑब्वियसली नीड मेनी मेनी मोर सच सक्सेस स्टोरीज.
0: यस, let's move on to oil now. Well, global crude oil prices rose today but remained near their three-month low as investors assessed the impact of US-Iran peace deal. Brent crude gained nearly 1% to $79.71 per barrel, while West Texas Intermediate crude added 0.8% to $76.70 per barrel at the time of the last report. Let's talk about the Indian bullion market, where 24-carat gold was trading 0.3% down at 1,52,920 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.6% lower at 2,50,160 rupees per kilogram a short while ago.
1: जी, और एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.3% गिरकर 1,52,657 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 0.4% नीचे 2,49,002 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उदयन, सोने और चांदी में जो थोड़ी सी अब लगातार हम देख रहे हैं गिरावट आती जा रही है, थोड़ी चमक कम होती जा रही है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये अच्छा लग रहा है.
2: बिल्कुल. और सुबोध जी, क्योंकि केंद्रीय बैंक निवेश कर रहे थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे थे, तो उससे ग्लोबली, ये सिर्फ भारत में नहीं दूसरे देशों में, जो खुदरा आप और हम और दूसरे लोग जो उसको खरीदते निवेश के लिए या एज अ कंज्यूमर उपभोक्ता के हिसाब से, वो पुश आउट हो रहे थे. अब शायद वो ट्रेंड पुशिंग आउट जो था वो शायद अरेस्ट हो जाए, पर ये रिवर्स नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है. अब अभी भी आप रिपोर्ट्स पा रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे कि कैसे लोग रिसाइकिल कर रहे हैं पुराने गहनों को, आभूषणों को इस्तेमाल कर रहे हैं.
1: जी
2: तो वो कुछ वक्त तक मुझे लगता है कि ऐसा चलता रहेगा. और दूसरा, हमें हमारे जैसे कि हम जानते हैं कि इम्पोर्ट करना हमारे देश के लिए अभी भी कोई अच्छी बात नहीं है इस वक्त जो स्थिति है, तो वो ऐसा रहे तो बेहतर ही है। पर जहां तक निवेश की बात है, 10% 5 से 10% ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वहीं तक ही सीमित रखना जरूरी है।
1: हाँ, अब इससे बेहतर की उम्मीद अब देखें आने वाले दिनों में हम कितना कर सकते हैं।

0: सकते हैं। उदयन, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: Hi, thank you, Udayan, for being there. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in a short while. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight day. Sensex adds over 300 points. Nifty settles above 24,000. And global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor सुबोध मिश्र साइनिंग ऑफ। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
4: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान 2026 की शुरुआत की। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज, सफाई अभियान में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया, और दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोप को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महीने की 22 तारीख से एक पेड़ मां के नाम दिल्ली विशाल वृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत की घोषणा की। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 70 लाख पौधे लगाने के साथ इस पहल का लक्ष्य दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ग्रीन वॉरियर्स के रूप में इस पहल से जुड़े और हरित दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई गौरव गाथा लिखी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि विश्वास, विकास और जन कल्याण के संकल्प ने देश को तेजी से विकसित भारत की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ नियंत्रण और जल जमाव को रोकने की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026 जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉनसून के दौरान दिल्ली के निवासियों को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि जलजमाव वाले इलाकों में पंपों की संख्या बढ़ा दी गई है और जलजमाव की आशंका वाले हर चिन्हित स्थान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नालियों की समय पर सफाई, मोबाइल पंपिंग सिस्टम की उपलब्धता और सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे सातों दिन निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिये। इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह नीति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम, जहां कोई भी नागरिक नारकीय जीवन नहीं जिएगा झुग्गियों में। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वो पॉलिसी तय कर दी है, जहां झुग्गी में रहने वाले मेरे बहन भाई अपने बच्चों को सुंदर मकान में रहते हुए बढ़ते हुए देखेंगे और हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए अपना योगदान देंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: दिल्ली में कल से इस महीने की 20 तारीख तक शहर भर में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में किया जा रहा है। शिविरों में नागरिकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी, सेवाएं तथा सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज किया गया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज मॉडल टाउन क्षेत्र में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। श्री सिरसा ने लोगों के साथ मिलकर पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता जरूरी है और इसे जन आंदोलन का रूप दिया गया है। श्री सिरसा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
3: जब से प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस सेवा को संभाला है, तब से स्वच्छता के ऊपर उनका बहुत जोर। जन कल्याण के कामों के साथ साथ स्वच्छता पे बड़ा फोकस है इस सरकार। तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार आज पूरी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चल रहा है। हमारी सारी पार्टी के संगठन के लोग और हम सबने मिलकर, निगम पार्षद, एमएलए, सभी लोगों ने मिलकर एक बड़े स्वच्छता अभियान को यहाँ पे किया।
0: वहीं दिल्ली में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी के साथ कालकाजी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ भारत का संकल्प आज जन आंदोलन बन चुका है और इसी दिशा में दिल्ली भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की।
4: भारत को महाशक्ति बनाने का जो दौर था प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, वो संभव होना शुरू हुआ और उसमें जो उन्होंने एक संदेश दिया स्वच्छता का, उसी संदेश पे अमल लाते हुए आज पूरी दिल्ली भर में, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण, संगठन के लोग, सरकार के लोग सब मिलकर ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हम यहाँ पर आए हुए हैं।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आज राजधानी के सभी 256 मंडलों में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि राजधानी को स्वच्छ रखने के लिए सभी नागरिकों को कूड़ा इधर उधर न फेंकने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने नगर निगम के सफाई कर्मियों के कार्य की सराहना की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने अभियान के माध्यम से सेवा ही संगठन के संदेश को दोहराते हुए नागरिकों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की। अभियान में विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिदुड़ी सहित अन्य सांसद और मंत्री शामिल हुए। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज नजफगढ़ स्थित साईं बाबा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। श्री सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन आज जन आंदोलन बन चुका है और जो नागरिकों को स्वच्छता और जन भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की पहचान मजबूत की है। श्री सिंह ने दिल्लीवासियों से अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान देने की अपील की।
5: स्वच्छता तो प्रधानमंत्री जी का एक दिख है कि सुंदर भारत, साफ भारत, स्वच्छ भारत।

0: रहे उसी के प्रयास उसी मार्गदर्शन में हम अपने प्रधानमंत्री जी के आज इस मंदिर के प्रांगण में आके स्वच्छता का काम कर।
1: केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कल नई दिल्ली में खाद्य प्रबंधन के लिए स्मार्ट भंडारण प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। तकनीक आधारित इस प्रणाली का उद्देश्य भंडारण प्रबंधन पद्धतियों और कार्य प्रणालियों को मजबूत करना है। इस प्रणाली के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया भारत एआई मिशन पीएम गतिशक्ति और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े 8 सदस्यों वाले एक अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के दौरान इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने, पोस्टर के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स का महिमामंडन करने और आईएसआई समर्थित संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार प्रसार करने का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों से जुड़े पोस्टर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों के सीधे संपर्क में थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने राजधानी में पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव तथा शिक्षा निदेशक शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने बताया कि बैठक में दिल्ली के सभी स्कूलों का व्यापक ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। श्री संधू ने शिक्षा विभाग के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापन। यह विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की और संकेत करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: लैंड रेस्टोरेशन इतना इम्पोर्टेंट काम है कि लोगों के जीवन में नई आशा, समृद्धि और जीवन की नई संभावनाएं लेकर के आता है और इसलिए आज इस समय की आवश्यकता है कि हम विकास और इन चीजों को, जैव विविधता के संरक्षण को, पशुधन आधारित आजीविकाओं को, जल चक्र के विनियमन को, कार्बन के संचयन को और जलवायु में फ्लेक्सीबिलिटी को लाकर हम एक भूमिका को निभाएं।
1: राजधानी में आज धूप रही और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा धूप रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान 2026 की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज, सफाई अभियान में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया और दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े अंतर्राज्यीय

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त मकानों को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास दिए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एजेंसियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्येक कॉल को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके और बैंक खातों के फ्रीज होने से उत्पन्न शिकायतों का समाधान किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। गुजरात में वडोदरा में आज एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 29वें ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम मधुरी माँ आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राग झिंझोटी के गाने। पहला गीत फिल्म नदिया के पार से, ये रहा आपके लिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है मधुरिमा और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरक्षा है हयात, तेरा गम है

तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फैज अहमद फैज की लिखी ये नज्म राज खोसला साहब ने कहीं सुन ली, उनके जहनो दिल में इसकी एक लाइन अटक गई। वो लाइन थी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कहते हैं कि इस लाइन ने राज खोसला साहब को उनके पुराने प्यार की याद दिला दी। उन्हीं दिनों फिल्म चिराग का संगीत तैयार हो रहा था, तो उन्होंने फिल्म चिराग के संगीतकार मदन मोहन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी से कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए ऐसा गाना चाहिए जिसके बोल हो, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मजरूह इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे कि किसी और शायर की लिखी लाइन को वो अपने कलाम का हिस्सा बनाए, लेकिन राज खोसला के दिलो दिमाग पर वो लाइनें चढ़ चुकी थी, लिहाजा उन्हें कोई और गीत पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, अंततः मजरूह सुल्तानपुरी ने फैज अहमद फैज से उस लाइन को इस्तेमाल करने की इजाजत ली और लिखा ये नगमा। ये नगमा भी राग जीजोटी पर ही आ

तो ये था राग झिझोटी का कमाल। राग झिझोटी कहीं दिल के फफोले फोड़कर बहा देता है तो कहीं दिल की आह को जुबान दे देता है। झिझोटी शब्द झांझती से निकला है जिसका अर्थ है वायु देवता या आंधी की आवाज। इसीलिए ये राग पवन की तरह चंचल भी माना गया है। ये राग मूल रूप से देर राग का राग होने की वजह से इस पर आधारित जो गाने हैं वो बहुत भावपूर्ण आत्मदया और कोमलता से भरे हुए हैं। 50, 60 और 70 के दशक में संगीतकारों ने इस राग को अपनी कंपोजिशन में जमकर इस्तेमाल किया। राग झिझोटी की मिठास में लोक गीतों का जो रंग है वो घुला हुआ है। इसके कुछ गीत तो दिलों की धड़कनों पर अपना एक मकाम रखते हैं, जैसे फिल्म तीसरी कसम का गीत सजनवा बैरी हो गए हमार, फिल्म छोटी बहन का गीत जाऊं कहां बताए दिल, फिल्म झुमरू का गीत कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, और फिल्म जहां आरा का गीत तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी तो मेरी तकदीर कहां। एक और गीत जो नरगिसी आंखों का सहारा मांगता है, प्रेम निवेदन जैसा महसूस होता है, फिल्म मेरे महबूब से। ये गीत भी राग झिझोटी पर है।

इसी गीत के साथ ही मधुरिमा यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के फंगोल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है स्पोर्ट्स स्कैन।

0: नाइजीरिया, नॉर्वे ने इराक और फ्रांस ने सेनेगल को हराया। मकाओ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशारानी बरुआ, थारुन मनेपल्ली और अनमोल खरब ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एफआईएच हॉकी नेशंस कप में भारतीय महिला टीम कल आखिरी लीग मैच में उरुग्वे से मुकाबला करेगी। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मुंबई में फिट इंडिया साइक्लोथॉन साइकिलिंग बाय द सी का नेतृत्व किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विश्व कप के अहम मुकाबले से, जहां भारत और नीदरलैंड्स प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 190 रन बना लिए हैं। स्मृति मानधना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। इससे पहले नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस वक्त ऋचा घोष 8 गेंद पर 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है और कप्तान हरमनप्रीत कौर 5 गेंद पर 4 रन बनाकर अभी भी खेल रही हैं, बल्लेबाजी कर रही हैं। भारत ने इससे पहले विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। और अब बात कर लेते हैं मेंस क्रिकेट की। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 35वें ओवर में 7 विकेट पर 194 रन बनाए। इससे पहले कप्तान शुभमन गिल ने 110 गेंद पर 154 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं ईशान किशन ने 89 गेंद पर 125 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 48 रन का योगदान दिया। नांगियाल खरोटी ने सर्वाधिक 4 और राशिद खान ने 3 विकेट अपने नाम किए। अभी रहमत शाह 53 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अब बात जूनियर टीम की। भारत ए ने आज दांबुला में अफगानिस्तान ए को 101 रन के बड़े अंतर से हराकर त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत बेहतरीन रही। पहले विकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने 75 रन की साझेदारी की। वैभव ने 38 और प्रियांश ने 58 रन बनाए। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने 59 और कुमार कुशार्ग ने 58 रन की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 30 रन का योगदान दिया। लोअर ऑर्डर में निशांत सिद्धू के 21 और विपराज निगम के 30 रन के सहारे भारत ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर 319 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 218 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। बाहिर शाह ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। निशांत सिद्धू ने सर्वाधिक 4 और यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत बेहतर रन रेट के आधार पर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए फाइनल में पहुंच गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात फीफा फुटबॉल विश्व कप के महामुकाबलों की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप के मुकाबले में आज पुर्तगाल का सामना डीआर कांगो से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं अन्य मुकाबलों में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को, नॉर्वे ने इराक को और फ्रांस ने सेनेगल को हराया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
2: प्रतियोगिता में 28 साल में अपना पहला मैच खेलने उतरी ऑस्ट्रिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जॉर्डन को रोमांचक मुकाबले में 3-1 से हराया। ऑस्ट्रिया ने 20वें मिनट में मैच का पहला गोल करके बढ़त हासिल कर ली। रोमानो श्मिट ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम को आगे कर दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही अली ओलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑस्ट्रियाई डिफेंडरों को छकाते हुए बेहतरीन गोल किया। ओलवान वर्ल्ड कप में गोल करने वाले जॉर्डन के पहले खिलाड़ी बने। इस गोल से स्कोर 1-1 हो गया। इसके बाद जॉर्डन के डिफेंडर याजान अल अरब ने दुर्भाग्यवश अपने ही गोल पोस्ट में हेडर मार दिया, जिससे ऑस्ट्रिया 2-1 से आगे हो गया। अनुभवी स्ट्राइकर मार्को अर्नोटोविक ने कोई गलती नहीं की और पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम की 3-1 से जीत सुनिश्चित कर दी। ग्रुप जे के मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 3-0 से हराया। टीम की इस जीत के नायक रहे कप्तान लियोनेल लियोनेल मेसी। डिफेंडिंग चैंपियन के स्ट्राइकर्स ने अल्जीरिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और टीम को पहली सफलता मैच के 17वें मिनट में मिली। कप्तान मेसी ने

0: बॉक्स के बाहर से ही बेहतरीन शूट लिया जो अल्जीरिया के गोलकीपर लुका जिदान को छकाते हुए गोल पोस्ट में पहुंच गया। दूसरे हाफ में लियोनेल मेसी ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए 60वें मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना की बढ़त को दोगुना कर दिया। 16 मिनट बाद मेसी ने इस मुकाबले में गोल की हैट्रिक पूरी की। मेसी ने 3 गोल दागते हुए अपने 200वें इंटरनेशनल मुकाबले को यादगार बनाया। इसके साथ ही मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल की बराबरी कर ली।
1: Lionel Messi, there's your goal. There's more history. It's clear it's only as far as Alexis McAllister, the decks and all the save. The rebound is Messi's second goal. He might end the night as the World Cup's all-time top.
2: Nico Gonzalez, Lionel Messi, Lionel Messi!
1: First career World Cup.
0: ग्रुप आई के मुकाबले में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। नॉर्वे की ओर से फीफा विश्व कप में अपना डेब्यू कर रहे एर्लिंग हॉलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए, जबकि लियो ऑस्टीगार्ड ने भी 1 गोल दागा। 14वें मिनट में गोलकीपर ओरजान नाइलैंड की शुरुआत किए गए मूव पर डेविड मोलर वोल्फ ने बाएं छोर से शानदार क्रॉस दिया, जिसे हॉलैंड ने गोल में बदलकर नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन इराक ने मैच में जल्द ही वापसी की और 10 मिनट बाद ही इस टूर्नामेंट का अपना पहला गोल दागा। हाफ टाइम से पहले हॉलैंड ने अपना दूसरा गोल किया और नॉर्वे को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में आए लियो ऑस्टीगार्ड ने कॉर्नर किक पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर 3-1 कर दिया। इसके बाद नॉर्वे ने एक और गोल करके मुकाबले को 4-1 से अपने नाम कर लिया। वहीं फ्रांस ने रोमांचक मुकाबले में सेनेगल को 3-1 से मात दी। टीम की इस जीत के हीरो काइलियन एम्बाप्पे रहे, जिन्होंने मैच में 2 गोल दागे। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो सका। दूसरे हाफ में एम्बाप्पे ने गोल करके फ्रांस को मैच में 1-0 की बढ़त दिला दी। मैच के 82वें मिनट में फ्रांस के लिए सब्स्टिट्यूट ब्रेडली बारकोला ने एड्रियन रेबियोट से मिले पास को गोल पोस्ट में पहुंचाकर फ्रांस को 2-0 से आगे कर दिया। स्टॉपेज टाइम में इब्राहिम एम्बाई का शॉट डिफ्लेक्ट होकर गोल पोस्ट में पहुंचा और स्कोर 2-1 हो गया। इस गोल के बाद ऐसा लगा कि सेनेगल की टीम मैच में वापसी कर लेगी। हालांकि एम्बाप्पे ने एक शानदार लॉन्ग रेंज स्ट्राइक से गोल करते हुए फ्रांस को मुकाबले में निर्णायक बढ़त दिला दी और फिर 3-1 के स्कोर से मुकाबले को जीत लिया।
1: Mbappe, the superstar shine, who finishes with style.
0: विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
3: तो रोमांचक फीफा फुटबॉल विश्व कप में हर एक मुकाबला एक नई दास्तां लिख रहा है। और अब बात हॉकी की, हॉकी नेशंस कप की, जहां अब भारतीय महिला टीम ने पहले ही टॉप 4 में जगह पक्की कर ली है। एफआईएच हॉकी नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम कल आखिरी लीग मैच में उरुग्वे से मुकाबला करेगी। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: भारतीय टीम पूल ए में 2 मैचों में 6 अंक के साथ शीर्ष पर है और अंतिम 4 में पहुंच चुकी है। भारत ने अमेरिका को 3-2 और जापान को 2-1 से हराया। एफआईएच प्रो लीग के अगले सत्र में जगह बनाने के लिए भारत को नेशंस कप हर हाल में जीतना है। पिछले साल भारतीय टीम प्रो लीग से बाहर होने के कारण एफआईएच नेशंस कप में आ गई थी। पिछले सत्र में 16 मैचों में सिर्फ 10 अंक लेकर भारत प्रो लीग में आखिरी स्थान पर रहा था। 8 देशों के एफआईएच नेशंस कप की विजेता टीम अगले साल प्रो लीग में जगह बनाएगी। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज भारत का पलड़ा 17वीं रैंकिंग वाले उरुग्वे पर भारी होगा, जिसे पहले दोनों मैचों में पराजय का सामना करना पड़ा है। भारत ने 2 मैचों में 5 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए। दीपिका 2 गोल कर चुकी है, जबकि नवनीत कौर, सलीमा टेटे और लाल रिमसियामी ने 1-1 गोल किया है। भारत के कोच शोड मारिन को अपने सभी स्ट्राइकर से मैदानी गोल की उम्मीद होगी और यह मैच अच्छा अवसर है। इस साल होने वाले विश्व कप और एशियाई खेलों को देखते हुए कोच नया संयोजन भी आजमाना चाहेंगे। 2 मैचों में 3 गोल गवा चुके भारतीय डिफेंस को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
3: और अब रुक कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। मकाओ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशा रानी बरुआ, थारून मनेपल्ली और अनमोल खरब ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में ईशा ने यू हुंग को 21-16, 19-21, 21-14 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसी वर्ग के सिंगल्स में अनमोल खरब ने इंडोनेशिया की मुतियारा आयु पुष्पिता सारी को महज 42 मिनट में 21-13, 21-16 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली।

0: वहीं पुरुष सिंगल्स में थारून मनिपल्ली ने अपने ही देश के आर संजीवी को 15-21, 21-17, 21-14 से मात दी। आर चौहान ने भी वू जे यिंग को 18-21, 21-15, 21-19 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बात पिकल बॉल पर, इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन ने आगामी पिकल बॉल विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन ने हाल ही में 12 से 14 जून तक अहमदाबाद में हुए आधिकारिक चयन प्रक्रिया के बाद यह फैसला लिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन ने बेहद प्रतियोगी चयन प्रक्रिया के बाद युवा पिकल बॉल और जूनियर वर्ग में भारतीय टीम की घोषणा की है। युवा वर्ग में 14 और उससे कम तथा जूनियर वर्ग में 18 और उससे कम आयु के खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। अर्जुन सिंह अंडर 18 श्रेणी में विजेता रहे। उन्होंने जूनियर पिकल बॉल चैंपियनशिप में सिंगल्स, पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स जीते। उन्होंने अपने भाई आदित्य सिंह के साथ पुरुष डबल्स और नाओमी अमल सदीवाला के साथ मिक्स डबल्स जीता। दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिली है। अर्जुन और आदित्य सिंह ने इस साल की शुरुआत में डबल श्रेणी में अमरीकी ओपन भी जीता था। टीम में देवशाह, पूर्वांश पटेल, विवान पटेल, आश्रिता राजू और दिया मट्टीपति शामिल हैं। वहीं अंडर 14 में भारतीय टीम का नेतृत्व वीर शाह कर रहे हैं। टीम में विरांश चोपड़ा, आरएन बल्लानी, माहिका राठौर, मानसी कार्तिक और आश्रिता एस शामिल हैं। कप्तान वीर शाह ने अहमदाबाद में हुई जूनियर पिकल बॉल चैंपियनशिप में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 14 श्रेणी में सिंगल्स, पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स का खिताब जीता। आरएन बल्लानी ने अंडर 12 श्रेणी में जीत हासिल की और अंडर 14 लड़कों के डबल्स में रजत पदक जीता। माहिका राठौर ने डबल्स श्रेणी में अपनी क्षमता दिखाई और मानसी कार्तिक डबल्स तथा वीर शाह मिक्स डबल्स जीती। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैंस।
0: और अब बात फिट इंडिया साइक्लोथॉन पर। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज मुंबई के वर्ली तटीय साइकिल ट्रैक पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन साइकिलिंग बाय द सी का नेतृत्व किया। ये साइक्लोथॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के माध्यम से एक फिट, स्वस्थ और सक्रिय देश बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। डॉक्टर मांडविया ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई और साइकिल रैली में हिस्सा लेने वालों के साथ शामिल हुए। साइकिलिंग के महत्व पर बल देते हुए श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग को परिवहन के माध्यम तरीके के तौर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। साइकिलिंग न सिर्फ निजी सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण और ऊर्जा का संरक्षण करने में भी मदद करती है।
2: इस साइकिलिंग एक ऐसा निशाना है, साइकिलिंग फिटनेस का मंत्र है, साइकिलिंग पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है, साइकिलिंग फ्यूल बचाता है यानी कि देश का उद्यम बचाता है और साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान करता है। एक ही साइकिलिंग से चार समाधान मिलता है।
0: डॉक्टर मांडविया ने कहा कि एक फिट नागरिक स्वस्थ समाज में योगदान देता है।
2: हम सब लोग अपने घर से अपना कामकाज का स्थान दूर न हो तो साइकिल लेके जाए। हम महिला है, सब्जी मंडी जाना है, साइकिल लेके जाए। हमारा छोटा छोटा प्रयास देश को बहुत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
6: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 1 डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रूपये पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉ कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रूपये से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ

0: जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद। जय हिंद।
0: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
2: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर्स का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाइयां है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने में बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना, ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ एन ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, और उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 crores, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crores है, प्राइवेट प्रोडक्शन। यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का contribution है, that's almost about the same as what was the total defense production of 2014.
0: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
1: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास है, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, पिनाका रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे, इम्पोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कम्प्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे, हम इम्पोर्टर रहेंगे, ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा

0: प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10 साल 15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं कि स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
2: देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए तो जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्रीज बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्रीज चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, एलएनटी हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इट इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने ही बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई स्पेयर उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, भारत के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो आगे आते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम बिहार, जैसे आप कह रहे हैं बिहार वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट नॉट सो इजी, ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा हो 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए, क्यों? हमने उनके भरोसे, उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे, इसमें लगे। पर अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बैनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
0: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बना

0: टेरिगन। ठीक है, पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है आईएनएस विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी एसएसबीएन जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, आईएनएस अरिहंतर, उसके तीन आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी यूएवी बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इम्पोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में तीन कंपनियों को, तीन कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि आप अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की दो श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पर पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल।

0: और यूजर का उसके साथ इंटरफेस, यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी आप तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इसलिए आत्मनिर्भरता भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस बात का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशन है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAV को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जो जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए, और इसको दे शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है दे शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बैनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर है। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा, मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रो करेंगे, तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेंड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी, जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है, और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा वो, जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको, MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे, साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके, तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
0: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे

0: धीरे करके उस पायदान पे जहां पहुंचा है वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन जीडीपी वाला अगर 22 ट्रिलियन डॉलर का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 ट्रिलियन डॉलर का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए। लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है निंदा गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन से जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया 4.5 जनरेशन, 5th, 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब अब भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया, इसको किस पे, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, एंडमैन निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है। जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब ट्रेंड वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इसे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कूल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवार्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मीनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है, USSR यानी अब सोवियत रशिया के साथ, और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन की, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यहीं इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहां बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है। और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करने दें, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर। आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कोई सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो तो

0: लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी, बिल्कुल लगते हैं। तेजस को 33 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं। परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं इतने। हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D, वेरी स्ट्रांग R&D, अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम। नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है। नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई। रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा। नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है। जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है, लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
2: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है, तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोम ताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। स्मृति मांदना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Naresh Mago. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump in Avignon, France, on the sidelines of the G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन के अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,

0: और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई की निंदा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईओ में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने तीन महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। भारत ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का समर्थन किया। G7 देशों ने लिथियम, निकल और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए एक नए G7 संगठन की गठबंधन की स्थापना की भी घोषणा की। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनाम्ट ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच चौथी साइबर वार्ता आज नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने साइबर खतरों के बदलते परिदृश्य, राष्ट्रीय रणनीतियों और नीतियों, डेटा संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और कानून प्रवर्तन पर विचार विमर्श किया। कल शुरू हुई इस वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय में साइबर मामलों के राजदूत अंसर्ट नूरमैन ने की। बैठक के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इन मुद्दों पर हुए नवीनतम घटनाक्रमों, जिनमें साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और AI गवर्नेंस शामिल हैं, के सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर चर्चा की। बैठक में साइबर मामलों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहलों पर निरंतर सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी प्रशासकों की हिंसक कार्रवाई की निंदा की है। खबरों के अनुसार इस महीने की 8 से 16 तारीख के बीच हुई इस कार्रवाई में 32 से अधिक नागरिक मारे गए। एक रिपोर्ट।
3: मानवाधिकार संस्था ने कहा कि इस कार्रवाई के

0: बाद पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद कर दिए गए। इसके अतिरिक्त संघीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और 100 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। साथ ही पाकिस्तानी प्रशासकों से इस हिंसक कार्रवाई को तुरंत रोकने का आह्वान किया है। घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच करने को भी कहा गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हिजबुल्ला पर सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाई में जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते का प्रारूप जल्द ही जारी किया जाएगा। अमेरिका के टेक्सास के लॉरेडो में कल हुई एक विमान दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विमान पर 6 लोग सवार थे। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 17 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शैफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 45वें ओवर में 232 रन पर सिमट गई। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज पुर्तगाल का सामना डीआर कांगो से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन के अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई की निंदा की। इसके साथ ही समाचार विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम किरण झा विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence, and

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान और दोस्तों प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार। दोस्तों प्रेम की दुनिया बड़ी अनोखी होती है, यहां शिकायतें भी होती हैं और अपनापन भी। कभी मन में नाराजगी की हल्की सी लहर उठती है तो कभी वही नाराजगी रिश्तों की मिठास को और गहरा बना देती है। रूठना यदि प्रेम की भाषा है तो मनाना उसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। आज हम बात करेंगे उन्हीं भावनाओं की जब किसी की खामोशी बेचैन कर देती है, जब एक मुस्कान सारे गिले शिकवे मिटा देती है और जब एक सच्चा रिश्ता हर दूरी को प्रेम में बदल देता है। तो आइए इस मधुर यात्रा का शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ।

दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में नाराजगी किसी बड़ी वजह से नहीं आती, बल्कि एक अनकहा शब्द, एक अधूरी मुलाकात या फिर किसी का देर से आना भी मन को खिन्न कर देता है, मन को परेशान कर देता है। लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि वो नाराजगी के पीछे छिपे मोहब्बत को, प्रेम को पहचान लेता है। जो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी बातों का असर भी हमारे मन पर बिल्कुल नहीं होता। इसलिए अक्सर हमें सबसे ज्यादा शिकायतें भी उसी से होती हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है।

दोस्तों, क्या आपको पता है कि रूठना अपने आप में एक कला है। कुछ लोग शब्दों से रूठते हैं तो कुछ खामोश होकर, कोई नजरें फेर लेता है तो कोई बातचीत को कम कर देता है। लेकिन सच तो ये है कि मोहब्बत में, प्रेम में रूठने वाला व्यक्ति दूर जाना नहीं चाहता। वो केवल ये चाहता है कि उसकी अहमियत को महसूस किया जाए। किसी शायर ने भी क्या खूब लिखा है कि नाराजगी में भी मोहब्बत छिपी होती है, वरना कोई अपनों से इतनी उम्मीद नहीं रखता। लीजिए, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है यार सिंगार और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, क्या आपको वो लम्हा याद है जब आपके पसंदीदा इंसान ने आपको मनाने के लिए कोई अनोखा प्रयास किया हो, जैसे कि एक फूल, एक प्रेम पत्र, एक मधुर संदेश या फिर केवल एक सादी सी मुस्कान। इन सभी को अपने मन में संजोकर रखिए और सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, आज की संगीतमय महफिल से विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले इतना कहना चाहेंगे कि रिश्तों में मतभेद हो सकता है, लेकिन ये मतभेद होने नहीं चाहिए। कभी आप रूठ जाइए तो कभी किसी को मना लीजिए, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती इसी में है कि वो हर नाराजगी को मुस्कान में बदल देता है। एक अंतिम पंक्ति, थोड़ी सी नाराजगी भी रिश्तों के लिए जरूरी है, क्योंकि यही बताती है कि आज भी आपकी कोई परवाह करता है। और इसी भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के

0: शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। भारत ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल से जुड़ी घोषणा का समर्थन किया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनाफ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump in Avignon, France, on the sidelines of G7 summit. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi condemned President Donald Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance of India. On the margins of the G7 summit in Avignon, Prime Minister Modi and the German Chancellor Friedrich Merz exchanged the views on regional and global development, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. PM Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not on the power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. However, he underlined that the technology must be guided

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ। मेरी मोहब्बत की हद मत पूछो, मेरी मोहब्बत की हद मत पूछो, मैं अपनी सांसों से भी ज्यादा तुमको प्यार करती हूँ।

नींद आती है तो ख्वाबों का कारवां भी आता है। जाने क्यों हर रात सपनों में तेरा नाम आता है। ढूंढती हैं मेरी आंखें उस चेहरे को हर पल, जो सुबह होते ही सिर्फ यादों में रह जाता है।

जिंदगी भर का है तेरा मेरा साथ, अब कभी छूटे ना ये अपने हाथ। लाख रूठे जमाना, लाख बदले जहां, हर कदम से तेरा दामन नहीं छूटेगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चली है बात फिजाओं में फिर महकने की, चली है बात फिजाओं में फिर महकने की, जरा सी देर ही सही तुम पास तो आ जाओ।

तेरे माथे की बिंदी चमकती है कुछ इस कदर, तेरे माथे की बिंदी चमकती है कुछ इस कदर, जैसे अंधेरी रात में कोई सितारा आसमां से उतर आया हो।

काली जुल्फों के साये में छुपा है वो समंदर, काली जुल्फों के साये में छुपा है वो समंदर कि डूब जाते हैं लोग देखकर तेरी ये नशीली आंखें।

0: मेरी आंखों में छुपी मोहब्बत को कभी तो पढ़ लो, मेरी आंखों में छुपी मोहब्बत को कभी तो पढ़ लो। हर बात जुबां से कहना हर बार मुमकिन नहीं होता।
1: यूं ही तुम मुझसे

0: क्या कहें इस चिलमन की रुसवाई को, क्या कहें इस चिलमन की रुसवाई को कि सामने महबूब है और दीदार की इजाजत नहीं।
1: ये जो चिलमन है

दोस्तों, ये समय हुआ है समाचारों का। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात की। पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सुरक्षित, समावेशी और मानव हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि AI शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बच्चों को गलत सूचना, डीप फेक और साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकी

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू, एक बार फिर से आपके साथ, और कार्यक्रम है गीत सुहाने। और शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ। लफ्ज में कहां समाती है ये मोहब्बत हमारी, लफ्ज में कहां समाती है ये मोहब्बत हमारी, तेरी मेरी कहानी तो सांसों की रवानी है।

एक प्यारा सा आंगन हो और उसमें तेरा बसेरा हो, एक प्यारा सा आंगन हो और उसमें तेरा बसेरा हो, हर शाम तेरी बाहों में हो और तेरे ही नाम से सवेरा हो।

वक्त गुजर रहा है मगर यादें ठहर गई हैं। वक्त गुजर रहा है मगर यादें ठहर गई हैं। अब चले भी आओ कि सांसें आवाज देती हैं तुम्हें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आज घटाओं ने आसमाओं को कुछ इस तरह घेरा है, आज घटाओं ने आसमाओं को कुछ इस तरह से घेरा है। तुम चलो मेरे संग वहां जहां सिर्फ तेरा और मेरा बसेरा है।

मेरी तो हर एक दुआ में बस तुम्हारा ही नाम है। मेरी तो हर एक दुआ में बस तुम्हारा ही नाम है। तुम्हें मिले हर वो खुशी, यही इस दिल का पैगाम है।

क्षमा भी जल उठी है और महफिल भी जगमगाई है। क्षमा भी जल उठी है और महफिल भी जगमगाई है। झूम उठो कि आज ये रात खुशी की रात लाई है।

कभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में वीवा टेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिये। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत

समय हुआ है 2:11 और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमे का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, और चलेंगे इस सफर में बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ। रहिए इस घंटे मेरे साथ, और पहला गीत बहुत ही खूबसूरत महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में।

तू हवा की तरह आती है और जुल्फ बिखेर जाती है, तू हवा की तरह आती है और जुल्फ बिखेर जाती है, सोचता हूँ तुझे रोक लूँ पर तू हाथ कहाँ आती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ना कुछ उन्होंने कहा ना कुछ हमने कहा, ना कुछ उन्होंने कहा ना कुछ हमने कहा, राहों में हुई हमारी मुलाकात कि हमारी आंखें सब कुछ कह गईं।

बरसात में खिड़की पर बैठकर जब हाथ बाहर फैलाती हूँ, बरसात में खिड़की पर बैठकर जब हाथ बाहर फैलाती हूँ तो सब भूलकर मैं इन ठंडी बूंदों से बातें करती हूँ।

समय है समाचारों का, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द ही आपसे मिलूंगी किसी न किसी मौके पर। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और अगला कार्यक्रम आपके साथ बढ़ाएंगी वंदना, कार्यक्रम हमराही 3:10 पर। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो क्रोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा

हमराही कार्यक्रम में सब साथियों का स्वागत करते हुए गीतों के साथ और गीतों की हम सफर में आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

साथी फिल्म से ये गीत आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की कलम से निकला गीत था और सुरों से सजाया नौशाद ने। अगला गीत परदेसी फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और चित्रगुप्त का संगीत।

तुझसे मुलाकात का हर पल खास लगता है, तुझसे मुलाकात का हर पल खास लगता है, जैसे दिन को कोई नया एहसास लगता है।

0: महबूब की मेहंदी। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हमारे दोस्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। बादल ने फिर से आसमान में ली है अंगड़ाई, ठंडी हवाओं के संग फुहारों की बारात है आई। मौसम की खुशखबरी ने दिल में जैसे कोई पुरानी दास्तान दोहराई।

दोस्तों, प्रकृति के संरक्षण में अगर आप खड़े हो और तेज हवाएं चल रही हो तो उस छटा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मेरा गांव मेरा देश फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। खुश नसीब होते हैं जिन्हें अपनों का प्यार मिलता है।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी टावर हाउस। गीत की रचना की थी असद भोपाली ने और संगीत रवि का था। दोस्तों, पहले के गीत भी कितने गजब के हुआ करते थे। कोई बात भी पूछनी होती थी तो गीत का अंदाज ही अलग होता था और गीत में कहते थे,
1: इजाजत हो तो एक बात कहूँ, जो इजाजत

बात एक रात की, इस फिल्म से भी आपने गीत सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। गीत की रचयिता थी मजरू सुल्तानपुरी और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने।

101 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से हम राही कार्यक्रम, और हम राही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक। दोस्तों, दोस्ती में कोई भी आपका दोस्त ये बात बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसे धोखा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो विश्वास करने वाला होता है उसे कोई भी बात अपने दोस्त से गवारा नहीं होती। इसलिए जैसे आप बाहर से देखते हैं, दिल से भी

बल्कि सुख दुख साझा करने के लिए, बिना कहे जज्बात समझने के लिए और एक दूसरे की खुशी में खुश होने का खूबसूरत एहसास भी होता है दोस्ती। तो ये गीत आपको जरूर पसंद आया होगा। बता देती हूँ, बिन फेरे हम तेरे इस फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफी और उषा खन्ना का गाया हुआ। असद भोपाली ने गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था उषा खन्ना ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ अभिमान फिल्म से, लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और सचिन देव बर्मन की बनाई हुई धुन है। दोस्तों, इन गीतों के लिए कहना पड़ेगा कि ओल्ड इज गोल्ड। जब ऐसे गीत बजते हैं ना, तो आज भी उस दौर की हमें याद तरोताजा हो जाती है।

दोस्तों, दोस्ती ही एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है ना, जिसे हम खुद चुनते हैं, और केवल साथ रहने के लिए नहीं,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवा टैंक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली को आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केन्द्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। श्री वैष्णव ने पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की भी घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एजेंसियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्येक कॉल को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले

अरुणिमा कार्यक्रम में दोस्तों के साथ गीतों का आनंद लेते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपकी दोस्त वंदना चुग सुप्रभात।

लाजवंती फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मजरूह सुल्तानपुर की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। दोस्तों, अगले गीत को सुनकर आपको एहसास होगा कि आप किसी के लिए कितने अनमोल हैं।

दोस्तों, जिंदगी में खट्टी मीठी यादें तो सब रिश्तों में चलती रहती हैं, लेकिन अगर रिश्ता बरकरार रहता है तो फिर सही है। मेरे सनम फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत था मचो सुल्तानपुरी का, और संगीत ओपी नैयर का। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खुशियां

अच्छा लगता है, तब लगता है कि किसी की दी हुई दुआओं का असर ही है। इसलिए हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और उन्हें दिल से दुआएं दें।

आई मिलन की बेला। इस फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ, लेकिन दोस्तों एक बात कहनी पड़ेगी कि अगर आपको जीत किसी भी फील्ड में मिल जाए या आपको चाहिए तो पहले खिलाड़ी बनना पड़ेगा, फिर मुकद्दर आजमा कर देख लेना।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत था दूर की आवाज फिल्म से। शकील बदायूं के बोल थे और रवि का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ गीत आपने सुना छोटी सी मुलाकात फिल्म से। गीत हसरत जयपुरी का था और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नीला आकाश फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। राजा मेहती अली खान की रचना है और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

दोस्तों, आपके कुछ रिश्ते या कुछ दोस्त बहुत खास होते हैं और उनके ना होने पर आपको उनकी कमी खलती है और होने पर पूरी दुनिया का एहसास होता है ना। आपके साथ भी ऐसा

आवाज में साहिर लुधियानवी ने अपनी कलम से शब्दों में पिरोया था और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। नीलकमल इस फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और रवि का संगीत।

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम के अंतर्गत गीत आप सुन रहे हैं अपने दोस्त वंदना चौक के साथ। अगला गीत मल्हार फिल्म से आपको सुनवा रही हूं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हिंदी वर्ण गीत को लिखा है और रोशन का संगीत।

दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अरुणिमा कार्यक्रम में आपने जितने गाने सुने आपको सभी गाने पसंद आए होंगे। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ मुनीम जी फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। लेकिन चलते चलते कहना पड़ेगा कि बिछोड़ने के बाद साथ बिताया गया हर पल आपको तब याद आता है जब आप तन्हाई में होते हैं। फिर हंसी मजाक की बातें, छोटी छोटी बातें और अनकहे वादे यादों में कैद होकर रह जाते हैं। और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत मुनीम जी फिल्म से साहिल लुधियानवी का गीत है और एसटी बर्मन का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवा टेक शिखर सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि पहले दिन राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। वे कल मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। बाद में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करेंगी। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुजखंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from members of the Indian community gathered at his hotel. Enthusiastic supporters greeted the Prime Minister with cheers and expressions of support as he began his engagements in Paris. In Paris, PM Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. India will have the largest national pavilion at this edition of VivaTech Summit, a fitting symbol of the enormous potential for partnership between the Indian and European innovation ecosystem. The Prime Minister is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora.

भोर सुहानी इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों को मेरा यानी वंदना चुक का प्यार भरा नमस्कार।

और एक और हमें साथ ही साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिल जाती है। दोस्तों, ये जीवन बस यूं ही चलता रहेगा, हम आपस में भी एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें।

सच में कहते हैं ना, इंसान अपने व्यवहार से ही पहचाना जाता है। चितचोर फिल्म से ये रचना आपने सुनी, हेमलता और येसुदास की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। आया सावन झूम के। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, बहुत बार इंसान के मन में बहुत सी उलझने पैदा हो जाती हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं होता, क्योंकि उसके अपने ही उसे समझ नहीं पाते।